0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाने वाला।
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: माँ कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे।
2: और फिर जशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
1: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा शाह बता हम कहां जाएं।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

से बोलो, आवाज नहीं आई।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपियो जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: सागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों

0: के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 7 0112371 7 0 6 और 0112341 4 4 4 4। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, छह आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
7: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, and Prime Minister of Mauritius Naveen Chandra Ramgoolam were also present at the event. According to the Ministry of External Affairs, India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and a commitment to the Global South. The MEA said Mr. Modi's visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: क्या मेरी कसम,
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय,
9: बिंदास मॉर्निंग
6: सुनिए। बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

दोस्तों कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आप अपने मन में संकल्प ले लें कि आपको जिंदगी में सिर्फ जीत को हासिल करना है, सिर्फ आपको सफलता ही हासिल करनी है, तो यकीन मानिए आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। हेलो जी, नमस्कार, हम सुप्रभात, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है जी। एक सोमवार की नई सुबह है, एक नया हफ्ता है और एक नई एनर्जी के साथ आज की सफर की शुरुआत हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत अभिनंदन। 8:22 हो गए स्टेशन क्लॉक में। 29 जून की सुबह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है आपका रेडियो वाला दोस्त आनंद। हाँ जी, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, एक ब्रांड न्यू वीक है और एक साथ ही साथ एक एनर्जी से भर देने वाला मंडे। मंडे यानी कि मन का डे। मंडे वो दिन जब आप जो है वो सब कुछ प्लान करते हो जो पूरे हफ्ते आपको पॉजिटिविटी देता है, पूरे हफ्ते आपको एनर्जी देता है। श्रोताओं, आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप। अभी तो बहुत सारी बातें हैं, अभी तो सिर्फ हमने जो है दस्तक दी है और अब से लेकर 10 बजे तक आप मेरे साथ रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होंगी ढेर सारी मजेदार वाली। हां जी, तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो फटाफट से मुझे मैसेज कर सकते हो 9837896896 पे, व्हाट्सएप करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। आज की सुबह में इंतजार रहेगा आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस का, तो व्हाट्सएप कीजिए ना मुझे 9837896896। अब आ गए हैं तो भैया चलिए एक बेहतरीन गाने के साथ करते हैं आज के सफर की शुरुआत। लेडीज एंड जेंटलमैन, मंडे की सुबह है, आप जुड़ चुके हैं आरजी आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुरादाबाद शहर के लिए बहुत सारी चीजें खास होने वाली है। अपने शहर में कौन दस्तक दे रहा है बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आइए शुरू करते हैं मंडे का ये ब्यूटीफुल डोज ऑफ द डे। एक अच्छे से गाने के साथ करेंगे आज के सफर की शुरुआत। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का थॉट ऑफ द डे अभी लेकर आता हूँ थोड़ी सी देर में। गुड मॉर्निंग।

0: सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

दोस्तों कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बात मैं भी पढ़ रहा था और उसमें बड़ी सुंदर बात लिखी थी कि जो है हमारे पास वो किसी से कम नहीं है, जो नहीं है हमारे पास उसमें हमें कोई गम नहीं है, और जो हमारे पास अभी नहीं है वो सिर्फ एक हमारा ख्वाब है, लेकिन जो हमारे पास है वो किसी से कम नहीं है। तो आपके पास जो है उसके लिए शुक्राना कीजिए उस परमपिता परमात्मा को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, खुदा को, जिस भी धर्म से आप मानते हैं उनको शुक्राना कीजिए, उनका परमपिता परमात्मा का देखिए धन्यवाद जब हम करते हैं ना ईश्वर का, जब हम उनको बार बार बारंबार करते हैं, उनका थैंक यू बोलते हैं, तो यकीन मानिए वो भी प्रसन्न होते हैं और वो सब कुछ आपको देते हैं जो आपकी इच्छाएं होती हैं। लेकिन बस मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आपके पास है आप उसमें खुश रहिए, उसमें हैप्पी रहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ लोगों का तो जो आपके पास है ना वो उनका एक सपना है। तो अपनी चीजों में ना आप सेटिस्फेक्शन ढूंढना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है, एंड ऐसी अच्छी बातों के लिए आरजे आनंद को सुनना भी जरूरी है। दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक, एंड इस वक्त मेरे साथ ढेर सारे श्रोता साथी जुड़ चुके हैं। एक मंडे की ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग आपको बोल रहा हूं मैं, एंड स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:38, और अभी फिलहाल हमारे साथ ढेर सारे साथी जुड़ चुके हैं। हमारे पास मैसेज आया है आलम भाई का, लिखते हैं आनंद जी हेलो गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, सुबह सुबह आपका प्रोग्राम सुन के मॉर्निंग वाकई बिंदास हो जाती है। थैंक यू सो मच। चमनलाल साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह पुतली घर रोड से, गुड मॉर्निंग आनंद जी पहुंचा रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर आपको भी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक मैसेज पहुंचा है हमारे प्यारे मित्र जुल्फी भाई का, लिखते हैं हेलो आनंद जी कल करे सो आज, आज करे सो अब, तो बेटा जो आपने करना है कल उसको कल नहीं आज ही कर डालो, आज के काम को कल पर बिल्कुल मत टालो, क्योंकि आज का समय जो है ना वो कल नहीं मिलने वाला। एब्सोल्युटली सही कहा है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी भाई इस मैसेज को मुझ तक पहुंचाने के लिए। एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है शिखा मैम का, मानसरोवर से मुझे मैसेज करती हैं, लिखती हैं हेलो आनंद गुड मॉर्निंग, ऑफिस के लिए निकल रही हूं एंड बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, बट आपका शो भी चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, सुबह सुबह आपको सुनकर अच्छा लगता है जी, थैंक यू सो मच मैम। एक संदेश और पहुंच गया है मेरे पास, हेलो जी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, मंडे मॉर्निंग में आपका स्वागत है आरजे आनंद, थैंक यू सो मच, आपका भी इट मींस अ लॉट, आपका भी स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। एंड एक मैसेज और पहुंच गया है मेरे पास, गुड मॉर्निंग हाय माय नेम इज प्रीतम, हाय प्रीतम गुड मॉर्निंग। चलो एक अच्छे से गाना निकालते हैं, उसके बाद एक छोटा सा सवाल होगा मेरा यहाँ पर, और आज मुरादाबाद शहर में आप देखो भैया बड़ी साफ सफाई चल रही है जोरों शोरों से, इनफैक्ट पूरा शहर चमक चुका है यार, तो लोकल फूड वोकल पे ढेर सारी बातचीत करेंगे अभी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
8: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
10: कॉल 8826213131।
11: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
12: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
13: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर आपको मजेदार गाने मिल रहे होंगे। आज की सुबह एक और अमेजिंग ट्रैक निकाल दिया है मैंने, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज, एब्सोल्युटली फैबुलस ट्रैक। आज की मॉर्निंग इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, अलका याग्निक एंड साथ में सोनू निगम, ये खूबसूरत आवाजों में

सॉन्ग यार, हम तो है तेरे दोस्तों में, हम तो है। सुनो सुनो, मैं स्टोरी बना रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, जाके फटाफट चेक कर लेना यार। क्या है इंस्टा आईडी बताता हूँ।

गुड मॉर्निंग है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुराया। सुप्रभात, वेलकम बैक है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आप जुड़ चुके हैं एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग पे आरजे आनंद के साथ। हे वेलकम बैक। चलिए आज के दिन के बारे में बात करेंगे ना, आज का दिन क्यों खास है, आज का दिन क्यों स्पेशल है, आज की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मेरा आज का एक सवाल है आप सभी मुरादाबादी से, मंडे की सुबह जितने भी लोग सुन रहे हैं, कसम है आपको, आपने अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगेगा यार। सो प्लीज है ना, डोंट डू दिस, आपको ये नहीं करना है, आपको आंसर करना है, पार्टिसिपेट करना है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मंडे की सुबह है यार, तो ऑफकोर्स एक सवाल तो बनता है यार, ठीक है। तो मेरा आज का क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है फटाफट से कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, है ना। ये आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, उसे क्या कहते हैं, कितने लोगों को पता है इसके बारे में। आई वांट टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, मंडे मॉर्निंग है, दिमाग की थोड़ी कसरत करो बच्चा पार्टी। आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या आप मुझे फोन भी कर सकते हो, क्या लगता है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। डोंट डू दिस, आपने अभी ना ये नहीं करना है कि आप गूगल पे जा रहे हो फिर अपना दिमाग लगा रहे हो, ना ना ना, दिमाग लगाओ यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं बहुत भारी वाला नहीं लेकर आया, बस सुबह सुबह थोड़ा सा आपके दिमाग को ऐसे यू नो तेज करने वाला एक सवाल छोटा सा। आप मुझे मैसेज करके डेफिनेटली बताइएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आज 29 जून हो गई है, आज का दिन क्यों स्पेशल है, इतिहास के पन्नों के लिए क्यों खास है, लेडीज एंड जेंटलमैन इस पे अभी बात करते हैं। चलिए अभी फिलहाल बता देते हैं आज के दिन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, 29 जून क्यों स्पेशल है। एंड मैं आपको बता दूं, हर दिन की तारीख बहुत ही स्पेशल होती है और आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके विषय पे हम बात करेंगे तो शायद हमारा समय भी कम पड़ जाएगा। श्रोताओं आपको बताते चले, आज ही का दिन था जब सन 2002 में चीन में जबरदस्त भूकंप आया था श्रोताओं, आज ही के दिन। और पूर्वी एशिया सम्मेलन जाकर्ता में एशियन के प्रमुख ताकत पर सहमति जो है बनाए रखने के लिए आज ही के दिन एक खूबसूरत सम्मेलन की शुरुआत हुई श्रोताओं। और आपको बता दें, आज ही के दिन सन 2004 में पूर्वी एशिया सम्मेलन जाकर्ता में एशियान को प्रमुख ताकत बनाने पर सहमति मिली श्रोताओं, आज ही के दिन। और भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौते हुए आज ही के दिन सन 2005 में। आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम जो है आपके साथ बातचीत कर रहे थे साथियों, बिकॉज हर दिन का इतिहास बहुत ही खास होता है। आपको बता दें, सन 2014 में आज ही के दिन साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती थी श्रोताओं, आज ही के दिन। तो ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और आज ही के दिन जन्मे कुछ खास कलाकारों के, कुछ खास महान हस्तियों का नाम ना ले ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें, आज ही के दिन जन्म हुआ था अमल कुमार सरकार, जो भारत के भूतपूर्व 8वें मुख्य न्यायाधीश रहे श्रोताओं। 1901 में उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आज ही के दिन पीसी जी का भी जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है। आज ही के दिन जन्म हुआ था सन 1893 में इनका। तो श्रोताओं, ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आपके साथ साझा करी। इसके अलावा आज और क्या कुछ विशेष मनाया जाता है, इस पे भी हम जरूर चर्चा करेंगे आपके साथ। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे श्रोता साथी लगातार मुझे अपने संदेश पहुंचा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे संदेशों के लिए। हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं और थैंक यू भी करना चाहते हैं श्रोताओं। आपको बता दें, 1951 में आज ही के दिन भारत के जाने माने गजल गायक पंकज उदास जी का भी जन्म हुआ था श्रोताओं, आज ही के दिन। बहुत सारी विशेष बातें हैं आज के दिन के बारे में, जो अभी और आपको हौले हौले आगे हम बताते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की इस कड़ी में, मंडे की सुबह है, आप भी हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेज करके पहुंचा सकते हैं अपने प्यारे प्यारे जवाब। हमने आपसे पूछा एक सवाल, बताइए सबसे बड़ा जो एक जिसे कह सकते हैं कि
पर्वत मैं पूछ रहा हूं आज आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसका आंसर आपने मेरे को करना है कि भैया आप मुझे मैसेज करके बताना है, आपने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत सिंपल सवाल है, आपको क्या लगता है दुनिया का आपसे आपके हिसाब से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, आपको मुझे उसका नाम बताना है 9837896896 पे व्हाट्सएप कीजिएगा अपने नाम के साथ अपना जवाब, इंतजार रहेगा मुझे आपके मैसेजेस का। लेडीज एंड जेंटलमैन आप आनंद के साथ हैं। अभी बात करते हैं मुरादाबाद शहर की, मुरादाबाद में क्या स्पेशल चल रहा है उस पे जरूर हम चर्चा करेंगे अभी, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। मेरे साथ बोलेंगे आप भी, बजाते रहिए, हाँ जी साथ में गुनगुनाते रहिए, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पे, इसी को सुनेंगे मैं और आप मिलकर, एंड बस इस गाने को एंजॉय करेंगे साथ में। मंडे की सुबह है, अभी लौट कर आ रहे हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे जहां आपसे और भी बातचीत करनी है मुझे। बहुत प्यारा ट्रैक है निकाल दिया मैंने आपके लिए आज की मॉर्निंग, लता मंगेशकर एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज, बहुत ही प्यारा ट्रैक। एक टाइम था बॉस जब कबूतर हर घर के आंगन में नजर आता था, लेकिन आजकल तो कबूतर देखने को भी नहीं मिलते बॉस। फिलहाल ही कबूतर वाला गाना सुनो, जो मैसेंजर का काम करते थे पहले के कबूतर, है ना, ऐसे कुछ दिखाया इस मूवी के अंदर, ये गाना सुनते हैं फिलहाल।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग। आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
7: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
6: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: कॉल 9045912348।
8: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
9: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
10: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

वेलकम बैक है, मंडे की सुबह है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माई लास्ट आवर। 9:05 शुरू हो गया है, एक और नया घंटा, जी हाँ, मंडे मॉर्निंग का। कैसा हाल चाल है जी, कहाँ निकल रहे हैं आप अपने ऑफिस के लिए? चलो ऑल द वे बेस्ट, आप जहाँ भी जा रहे हैं पहुंच जाइए अपने ऑफिस के लिए, अगर निकल रहे हैं तो फुल ऑफ एनर्जी के साथ, क्योंकि मैं हूँ ना आपकी डोज को डबल सुपर डुपर हाई करने के लिए। आपका रेडियो वाला आनंद आपके साथ मौजूद है लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ जी, चलो अब काम की बात कर लेते हैं जरा। आज शहर जो है बहुत अच्छे से चमक गया है यार, क्योंकि आज हमारे प्रदेश के, जी हाँ, मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी जो है पधारने वाले हैं मुरादाबाद में। आज 29 को जो है मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका वेलकम करने के लिए जो है पूरा मुरादाबाद तैयार है। इनफैक्ट बहुत अच्छे से जो है जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, जो प्रशासन है वो भी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। हमारी प्रशासन पुलिस लगातार जो है पूरी कड़ी सुरक्षा बनाए हुए है, नगर निगम की पूरी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है, चारों तरफ साफ सफाई चल रही है, मुरादाबाद एकदम चमक रहा है। बॉस फैबुलस यार, जोरदार तालियां। ये बात तो है कि यार जब कोई गवर्नमेंट बढ़िया पॉलिटिशियन जब शहर के अंदर एंटर करते हैं ना, स्पेशली हमारे सीएम साहब हो गए या कोई बड़ी हस्ती आती है, तो अपने आप ही शहर चमक जाता है। वेलकम बैक है लेडीज एंड जेंटलमैन वंस अगेन, ये मंडे मॉर्निंग है, आनंद के साथ हैं आप, और आज ढेर सारी बातें करनी है मुझे आपके साथ। इनफैक्ट देखिए बात ऐसी है, छोटे छोटे आर में हम बहुत कुछ डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपसे ढेर सारी बातचीत होती है। हाँ जी, तो आपको बता दें भैया, आज जो है ना बहुत कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले तो मेजर ध्यानचंद खेल पार्क जो है वो एकदम पुराने जमाने की याद दिला देगा आपको। हाँ जी, ये आपके आवास विकास के जो फीस दूबुद्धि बिहार के अंदर बना हुआ है भाई साहब, इसके अंदर जो है आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, एंड दिस इज एब्सोल्युटली अल्टीमेट। तो आज जो है इसका भी शुभारंभ होने वाला है, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका आज वेलकम होने वाला है। मुरादाबाद की जनता तो देखिए पूरी अच्छी तरीके से तैयार है। वहीं अगर बात करें वॉर मेमोरियल म्यूजियम की, तो आज उसका भी तो शुभारंभ होने वाला है। देखिए मुरादाबाद के अंदर तमाम सारी चीजें जो है आज होने वाली हैं। आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड होंगे, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। आपको बता दें भैया, देखिए श्रीराम वाटिका एंड साथ ही साथ मेजर ध्यानचंद पार्क, एंड इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया वॉर मेमोरियल म्यूजियम, इसकी भी जो है आज शुरुआत होने वाली है, मतलब उद्घाटन जो है आज उद्घाटन होने वाला है, एंड अपने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा आज उद्घाटन होगा। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज है, वो पहुंचने आज जो है पहुंच जाएंगे मुरादाबाद, और इसकी

जो तैयारियां हैं बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं भाई साहब। तो भैया आज जो है शहर के लिए एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। अपने देखिए सीएम साहब आज दस्तक दे रहे हैं मुरादाबाद में, तो ऑफकोर्स मुरादाबाद जो है बहुत अच्छे तरीके से चमक गया है। नो डाउट चारों तरफ जो है एकदम लहर दौड़ गई है साफ सफाई की हो या फिर मुरादाबाद को चमकाने की। वैसे तो ऑलरेडी अपना शहर बहुत चमकता है लेकिन आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है मेरे भाई। वैसे आज अपने सीएम साहब एंटर कर रहे हैं मुरादाबाद में, कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली आप भी मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो 9837896896। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9837896896। अगर आप में से कोई वहां जा रहा है या पहुंच चुका है या आपको कोई वहां पर पहुंचा हुआ बंदा है तो मुझे डेफिनेटली बताएं ताकि हम भी उनसे पूछ सकें क्या कुछ खास चल रहा है वहां पर, या अगर आप खुद वहां जा रहे हैं तो भी आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं 9837896896 पर व्हाट्सएप करके या मुझे कॉल करके। क्या कड़क अपडेट है डेफिनेटली अपडेट आप मुझे देंगे, और कहीं कहीं ट्रैफिक तो नहीं लगा हुआ है, कभी कोई जाम वाम लगा हो कहीं पे तो वो खबर भी आप मुझे पहुंचा सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से। ये वो स्टेशन है जो बातें करता है दिल से दिल तक वाली। फिलहाल आगे बढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, बातचीत तो चलती रहेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। जरा अभी काम की बात कर लेते हैं फटाफट से भैया। 29 और 30 जून को जो है ट्रैफिक को लेकर भी कुछ डायवर्जन है, उस पे भी हम अभी बात करेंगे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। आनंद के साथ हैं आप। मंडे की सुबह जमाना लगे, मतलब जमाना तो लग ही रहा है, खैर जमाने की बात करूं ना करूं लेकिन मुरादाबाद बहुत सुहाना लग रहा है आज। वेदर क्या कहते हैं इस पे बात करेंगे। अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस घंटे की अमेजिंग ट्रैक के साथ, मेट्रो उन दिनों का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।

क्या बात है यार, इस गाने में इतना दिलबर दिलबर बोला गया है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं यार। मैं गिनने बैठूंगा तो शायद मेरा शो का समय कम पड़ जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ यार। वेलकम बैक हियर वंस अगेन। 9:16 हो गए स्टेशन क्लॉक में। आनंद के साथ ही आप लेडीज एंड जेंटलमैन सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। ढेर सारे व्हाट्सएप मेरे पास पहुंच रहे हैं आप सभी के, उसके लिए दिल से थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। आई एम सो हैप्पी गाइज, आई एम सो हैप्पी इतने ब्यूटीफुल मैसेज करने के लिए। अभी जरा बात कर लेते हैं उस उत्तर प्रदेश के उस शहर की जो यूपी का सबसे गर्म शहर बना है, यानी कि 43.2 जो है वहां का टेम्परेचर था, एंड मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इनफैक्ट टेम्परेचर बहुत गर्म था वहां पे, मौसम बहुत गर्म था, और इनफैक्ट इसने जो है भाई साहब ताबड़तोड़ तरीके से जो है ना वहां पे तहलका मचा दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आगरा। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक का इंतजार अभी भी जारी है, लेकिन उससे पहले भीषण गर्मी ने जो है लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है भाई साहब। वहीं अगर मैं बात करूं आगरा की, तो सैटरडे को वहां का पारा 43.2 डिग्री सेल्सियस वहां का वेदर था। मतलब इतना भारी भरकम गर्मी वाला एरिया था वहां पर, और वो मतलब जो है प्रदेश का सबसे गर्म शहर बताया जा रहा है कि बन गया है। सोचो आप 43 डिग्री 44 डिग्री 45 डिग्री अपने आप में एक बहुत अलग है। खैर इनी भी यार, ये तो फिलहाल बन गया है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश का इस शहर माना गया है आगरा। वही बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद शहर भी भैया कुछ कम नहीं हो रहा है। मुरादाबाद में बड़ी भयंकर और बड़ी गंदी वाली गर्मी हो रखी है, मतलब क्या ही मैं बताऊं। ये तो खैर मुरादाबादी बहुत अच्छे से जानते हैं। फिलहाल मुझे अभी फोन यहाँ पर आया था शुभम जी का, जो भी दिल्ली रूट की तरफ है। उन्होंने लिखा है आनंद जी ट्रैफिक तो कहीं नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है एंड एवरीथिंग इज ओके, और बाकी आपके गाने हमें बहुत एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे फोन करके ये बोला, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। ऑफकोर्स आप में से कई लोगों ने कल मन की बात सुनी होगी। आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महीने की हर आखिरी रविवार को मन की बात से जो है जनता को संबोधित करते हैं, और अपने मन की बात के थ्रू छोटे छोटे पॉइंट्स पर जो है वो बात करते हैं। एंड कल भी हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के जरिए लोगों के साथ ढेर सारी बातचीत करी। रविवार को देश के लोगों से उन्होंने मन की बात में, इसी दौरान उन्होंने देश के लोगों को सोना ना खरीदने को लेकर शुक्रिया कहा। वहीं पीएम हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने देशवासियों को सोना ना खरीदने की अपील की थी, और देश के लोगों ने उनकी बात सुनी, इससे जो है उन्हें बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट उन्होंने सभी को थैंक्स भी कहा कल, इस पे जो है बहुत सारी बातें भी हुई। मन की बात अगर ऑफ कोर्स आपने सुनी होगी, तो डेफिनेटली उन्होंने थैंक्स करा उन लोगों का जिन लोगों ने जो है मतलब सोना ना खरीदा और उनकी बात को इतना फॉलो किया, दैट्स वेरी ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, और अभी फिलहाल यहाँ पर ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं। मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा है, अगर आपने मेरा क्वेश्चन मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, आई रिपीट माय क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत सिंपल सवाल है, आपके दिमाग की बत्ती को मीटर चालू करने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है आपको दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कितने लोगों को पता है इसका राइट आंसर, फटाफट मुझे व्हाट्सएप करिएगा 9837896896 पे। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट्सएप करके बताइएगा मुझे जरा फटाफट से। यहाँ पर कुछ मैसेजेस मेरे पास पहुंचे हैं। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, दिस इज मी लिखा है, बस आपने नाम नहीं लिख देते यार, तुसी एक मिनट में इनका नाम चेक करता हूँ जरा। डॉली, हाय डॉली गुड मॉर्निंग, नीचे तो आपने नाम डाला ही नहीं अपना, वेल कोई बात नहीं स्टोके। डॉली जी सही जवाब के साथ जुड़ी है, साथ में प्रेरणा जी का मैसेज आ रहा है एंड शुभम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं राइट आंसर के साथ। एक मेरे पास मैसेज पहुंचा है लोकेश कुमार जी का, थैंक यू सो मच लोकेश जी एक सही जवाब देने के लिए। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है संभल से, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है, हाय माय नेम इज माथुर, गुड मॉर्निंग माथुर जी, थैंक यू सो मच एवरीबडी, आप लोग सच में बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो। एंड आई रिपीट माय क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, मंडे की सुबह है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, क्या लगता है आपको जरा बताओ मुझे मैसेज करके। एक अच्छा सा गाना प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, आपके इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जहाँ बातें होती है दिल से दिल तक, स्टीवन की आवाज, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ छोटे छोटे एड ब्रेक आएंगे, उसके बाद गाना वी कम बैक, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, लौट कर आते हैं ना अभी मुरादाबाद में, और क्या स्पेशल हो रहा है यार उसमें भी बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक राहत फतेह अली खान साहब की आवाज और ये गाना अनश्योर आपको फ्लैशबैक में ले गया होगा, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक था यार। वेलकम बैक, 9:29 हो गए स्टेशन क्लॉक में और जैसे कि मैंने कहा था वादे के मुताबिक हम यहाँ पर हाजिर हो गए हैं जानी। थोड़ी देर पहले हम आपको ट्रैफिक के बारे में बता रहे, तो भैया मुरादाबाद के जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए एक जरूरी ट्रैफिक अपडेट है कि भैया आपको पता है मुख्यमंत्री साहब जो हैं अपने आज मुरादाबाद में आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए पूरे मुरादाबादी तैयार हैं और आज सुबह 10 बजे से कल 30 जून तक शहर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान आपको बता दें डंपर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे भारी जो वाहन है वो शहर में उनकी प्रवेश पर रोक है, मतलब वो बाईपास और नेशनल हाईवे 9 जो है उधर की उसी मार्गों की तरफ से उनको भेजा जाएगा बेसिकली। वहीं बिजनौर धामपुर दिल्ली और अमरोहा की ओर जाने वाली रोडवेज बसें भी जो है निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से संचालित की जाएंगी। तो आपको बता दें भैया यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि जितने भी यात्री हैं वो जब यात्रा पर निकले तो उससे पहले ही अतिरिक्त समय का जो है अपने ध्यान रखना है और जो ट्रैफिक डायवर्जन है उसका आपने पालन करना है। तो भैया आज देखिए ये कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी मैंने आपको पहुंचा दी है और आज अभी 10 बजे से जो है ये ट्रैफिक डायवर्जन जो है वो लागू हो जाएगा, इसके रूल्स जो है लागू हो जाएंगे। तो भैया आप इनका पालन करना है, कल 30 जून तक ये रहने वाला है। वेल आगे बढ़ते हैं अभी और ढेर सारे संदेश हमारे पास आपके पहुंचे हैं उसके लिए हम आपका दिल से थैंक यू करना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेजेस के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, सुप्रभात, सुबह सुबह आपकी स्टेशन पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और इन इन्फॉर्मेशन से हमें पता लगता है कि हमारे आसपास के एरिया में क्या चीज चल रही है, क्या गतिविधियां हो रही हैं। और इन्होंने बताया कि आज योगी जी आने वाले हैं तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी को जो आज जो है योगी जी का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, उनका वेलकम है हमारे मुरादाबाद में, थैंक यू सो मच। सी आगे बढ़ते हैं और भी ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं मेरे पास, थैंक यू वेरी मच इतने अमेजिंग मैसेजेस के लिए। देखो हमारे पास अभी पिंकी का मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, आप कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया हूं। एंड साथ में इन्होंने लिखा है कि आज का जो शो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, तमाम आप लोकल जानकारियां दे रहे हैं जो कि हमें बहुत पसंद आ रही है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका पिंकी जी। मैसेज हमारे पास एक वॉइस नोट के जरिए पहुंचा है, जरा इनको भी सुनते हैं ये क्या पहुंचा रहे हैं आज की सुबह, इनकी आवाज सुन लेते हैं जरा। जी गुड मॉर्निंग,
1: राधे राधे, कैसे हैं आप, आशा है अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत बागबड़ा से बोल रहा हूं, जो आपके लिए डेली लाता है एक सुविचार। तो आज का सुविचार, आपकी बुराई करके किसी को खुशी मिलती है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आपका जिक्र किसी की खुशी का कारण बन सका। स्वयं के जीवन में अगर दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है और अगर स्वीकार कर लिया जाए तो वो प्रेरणा बन जाती है। नमस्कार, राधे राधे, आपका दिन मंगल में हो, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ और प्रोग्राम आ रहा है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, जो आपका सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुरादाबाद का पहला रेडियो स्टेशन है, इसको सुनते रहिए, इसको सुनने पर आपको खुशी मिलेगी। और
0: थैंक यू भूपी भाई,
1: मैं विदा लेता हूँ,
0: धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने आके जो है बहुत सारी जानकारियां थी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। गाइस आप भी ऐसी अपनी खूबसूरत आवाजें पहुंचाया करो यार, मजा आता है सुनने में। 9837896896 दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर जिसपे अपनी आवाज आपने पहुंचानी है। फिलहाल एक कड़क खबर जल्दी से आपको बताता हूँ, आपको बताया मुख्यमंत्री साहब आ जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी के दौरे को देखते हुए मुरादाबाद की कई फैक्ट्रियों में आज कर्मचारियों की छुट्टी 4 बजे तक कर दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो आज फैक्ट्रियों में जो कर्मचारी हैं, कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो आज शाम को 4 बजे तक छुट्टी कर देंगी। तो ये लेटेस्ट खबर आपको मिली आरजे आनंद की तरफ से। एक अमेजिंग ट्रैक मेरी रश के कमर, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे फ्रॉम द फिल्म बादशाह से, आई विल बी राइट बैक इस गाने के उस पार।

0: भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग।
9: बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, मेरी यानी आरजे आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। फिलहाल एक और अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद कुछ और खास बातें जो आप तक पहुंचती रहेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। ये है बिंदास मॉर्निंग, मैं हूं आपका दोस्त आनंद। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फिर क्या किया है यार, फटाफट से जरा जल्दी से फॉलो कर लो इस प्यारे से बच्चे को। रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो ना यार, वहाँ पर आपको सारी एक्टिविटी दिख जाएगी। FM मुरादाबाद को भी फॉलो कर सकते हैं आप, FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से हमारा ऑफिशियल पेज है वडेपरा, फॉलो कर लो यार, मजा आ जाएगा। फिलहाल गाना सुनते साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, सुनिधि चौहान की आवाज, हलकर जवानी साथ में।

भैया देखो सच बता रहा हूँ, ये जो गाना है ना अपने आप में इतना बेहतरीन गाना है, मतलब सुनिधि चौहान की आवाज इतनी प्यारी है, सच में यार बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आप एंजॉय कर रहे थे। 9:42 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आप आनंद के साथ हैं।

नहीं गाने आ रहे ना। बेटा सबर करो, रुको जरा, मम्मी ना सुन रही हो रेडियो। देखो यार, अगर अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे होते तो शायद आरजे ना होते, कहीं और बैठे होते, लेकिन पढ़ी अच्छी पढ़ाई नहीं करी ना, इसलिए यहाँ बैठ गए। तो ऐसे कुछ नहीं है भाई, यहाँ बैठने के लिए

सही सही जवाब भी दिए हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये आपने मेरे को बताना था मैसेज करके। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई कांट बिलीव दिस, सब लोगों ने बहुत ही अल्टीमेट मैसेजेस पहुंचाए हैं, अल्टीमेट। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, मैं बढ़िया हूँ। राजा कश्यप मेरे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। रिहाना जुड़ी है रानी नांगल से, गुड मॉर्निंग। नमस्कार आनंद जी, कैसे हैं आप? आपने जो दो गाने चलाए मजा आ गया। दिनेश मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की मॉर्निंग। साथ में मेरे पास मैसेज पहुंचा है प्रियंका जी का इंदौर से, जय माता दी। हाय गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। एकता फ्रॉम मंडी चौक, हेलो एकता जी, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गेश जी मुझे लिखते हैं, आनंद जी उसका राइट आंसर है ये, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, एब्सोल्युटली सही बता रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं एंड एक और मेरे पास मैसेज पहुंच गया है यहाँ पर। हाय हेलो हेलो हेलो, आप कैसे हैं आनंद जी? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार। ये मेरे पास रमन का मैसेज आया है, रमन ने एकदम सही जवाब दिया है। जय श्री राम आनंद भाई, बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से सही जवाब पहुंचा रहे हैं और मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रोग्राम में। विकी सागर जुड़ चुके हैं, रेडियो वाला आनंद वेरी गुड मॉर्निंग, आपके साथ है आपका दोस्त विकी सागर। गुड मॉर्निंग आरजी, कैसे हो? आई एम एब्सोल्युटली गुड यार। हेलो हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं? रणवीर जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर आपका शो सुन के बड़ा मजा आता है, लिखते हैं नींद पूरी हुई हो तो भैया ये जो लास्ट सोमवार है जून का, हाँ यार बात तो सही है, जून का लास्ट मंडे है ये, नेक्स्ट मंडे तो जुलाई आ जाएगा जब बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे। एंड इन्होंने लिखा है बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके लिए, लिखते हैं आनंद जी सुबह सुबह रेडियो सुनकर बहुत मजा आ जाता है और आपके लिए गुलाब का फूल। एंड आपके सुनने वालों को भी बस यही कहना चाहता हूँ कि इन फूलों की तरह उनकी सुबह भी महकती रहे। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इन्होंने लिखा है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, एब्सोल्युटली सही बताया आपने। मैं थोड़ा सस्पेंस लेके चल रहा हूं, हो सकता है कोई और भी बता दे यार। नॉनेश कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं दयानाथपुर से, गुड मॉर्निंग। हाय आनंद हाउ आर यू? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ नॉनेश, थैंक यू मेरे भाई ज्वाइन करने के लिए। ये बबली अनजान गीता कश्यप ने मेरे को सही जवाब दिया है। गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, कैसे हाल चाल है? उस्मान टेलर जी भी मेरे साथ जुड़े हैं आज की मॉर्निंग, एकदम कड़क वाला जवाब पहुंचा दिया है यार। ललिता कश्यप जुड़ी है मेरे साथ नवीन नगर से, लिखती हैं हेलो हाय गुड मॉर्निंग, आज पूर्णिमा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आज पूर्णिमा है, आज का चांद बहुत ही खूबसूरत है, जरूर देख लियो आज चांद। एनी लिखती हैं आज हमारे शहर में योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, आप लोग सच में बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग बातें हो जाती हैं कभी कभी तो आपके साथ, बड़ा मजा आता है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अभी मैं यहाँ पे एक आपसे अपना कड़क क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जो हमेशा आपसे मैं कड़क क्वेश्चन पूछता हूँ अपने मॉर्निंग शो पे, अभी तो बाकी मेरे दोस्त, तो अभी वही पूछने वाला हूँ। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। दिस इज बिंदास मॉर्निंग स्टेशन, क्लॉक में वक्त हुआ है

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
3: नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: एक मेरे पास आपके लिए कड़क क्वेश्चन है, अगर आप इसका जवाब देंगे तो अभी आप बनेंगे हमारे शो के सुपरस्टार।

वेलकम बैक है यार, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। बिल्कुल मेरे को नींद नहीं आई थी, बिल्कुल मैं नहीं सो रहा था, मैं बस पानी पी रहा था क्योंकि यार मुझे ना प्यास लग गई थी। मेरे को लगा यार बोलते बोलते भैया गला सूख जाता है, हमें भी पानी की जरूरत पड़ती है। आप भी पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, बहुत जरूरी है। गर्मी तो भाई साहब देखिए हो ही रही है, इस गर्मी में जो है आपने अपना ख्याल, खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ एंड 2 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। एयर क्वालिटी कतई अच्छी नहीं हो रखी है आज, विजिबिलिटी ठीक है। ह्यूमिडिटी की बात करूं तो भैया 58% ह्यूमिडिटी है कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर अपने ऑफिस जाने का कर रहे हैं प्लान तो भैया पसीने पसीने हो जाएंगे, आपको बता रहे हैं हम आपको। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मेरे पास एक कड़क क्वेश्चन है। 9:56 हो गया है स्टेशन क्लॉक में, बहुत ज्यादा मैं बातें नहीं कर पाऊंगा बिकॉज टाइम इज ऑल्सो वेरी वेरी ऐसे शॉर्ट टर्म वाला टाइम है, बहुत कम टाइम है यार। ऑलरेडी आई एम वेरी लेट, अपना कड़क क्वेश्चन पूछने में हर बारी मेरा लेट हो जाता है, मैं क्या करूं यार। आपकी मोहब्बत इतनी प्यारी है कि इतनी सारी बातें होती हैं बताने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मेरे को आपने बताना है एक चुटकी सॉन्ग, एक छोटा सा गाना प्ले करो, मतलब म्यूजिक प्ले करो, कौन सा गाना है, आइडेंटिफाई करना है। 1 2 3 एंड स्टार्ट, गो बजाओ। Yes, ये जो भी आप म्यूजिक सुन रहे हैं कौन से गाने का है, बहुत ही पॉपुलर गाना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे को मेरा जवाब पहुंचाना है। एक चुटकी सॉन्ग सुनो जरा, व्हाट्सएप करना है अभी जो आप ये गाने का म्यूजिक सुन रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन सा ये गाना है, आपने अपना फोन उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पर। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, आप चाहो तो मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। जो अभी आप ये एक चुटकी सॉन्ग सुन रहे हो ना, छोटा सा जो सॉन्ग सुन रहे हो, ये कौन सा गाना है, आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है। चलो जी जरा पाजी लगा दो फिर से। व्हाट्सएप कीजिए अभी, इतना पैसा में इतने मिलेगा छोटू जी, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे हम आपको। भैया जी हमको जरा मैसेज कीजिएगा। अब भाभी जी आप भी कर सकती हैं वैसे मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है, उठा के अपना फोन टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और वो क्या कहते हैं अपना सही जवाब, कौन सा गाना चल रहा है बताइए हमको जरा। चलिए बहुत हो गया है, अब जल्दी से जो है हमको जवाब पहुंचा दीजिए। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा लेट होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल दिक्कत नहीं करेंगे अगला गाना सुनाने में आपको, बहुत अच्छा गाना लगा रहे हैं, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम आपके साथ। आप हमारे सवाल का हमको जवाब पहुंचा दीजिएगा, हमको बहुत खुशी होगी। चलिए गाड़ी में चलते चलते आप जो पड़ोसी को बोलिए वो करें मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया आप कर दीजिए ना मैसेज, कोई इशू नहीं, आप इनकी तरफ से आप मैसेज कर दीजिए, क्रेडिट हम उनको ही देंगे, आप चिंता ना कीजिए। चलिए फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर वापस मिलते हैं।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
8: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

ब्यूटीफुल ट्रैक, जितना गाना बढ़िया है उतनी मूवी भी बढ़िया ही है यार। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। आपको भैया बताते चले कि स्टेशन क्लॉक में 10:05 हो गए हैं और अब हमें जो है यहाँ से जाना पड़ेगा।

0: चलिए बॉस, फिलहाल मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब आपने मेरे को व्हाट्सएप करके बताना था एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। फटाफट से एक छोटी सी टिप ऑफ द डे में एक टिप देता हूँ। देखिए, कब्ज और पेट को जो है, अगर आपका पेट को आपको लग रहा है कि आपका पेट बहुत कड़क महसूस होता है, आपको कब्ज की समस्या है, तो ऐसे में आप उबला चना खाइए, जो ब्लैक वाला चना होता है ना। यस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उबला चना आप जो है खाइए, इससे आपका पेट बिल्कुल साफ होने लगेगा, भारीपन पेट का कम होगा और आप काफी हल्का हल्का महसूस करेंगे और आपको एनर्जी भी मिलेगी। तो जो ब्लैक चने हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही बढ़िया हेल्दी होते हैं। आप इनको डेफिनेटली अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं एंड अगर आप ब्लैक चने को इस्तेमाल करते हैं तो देखिए इससे बहुत सारे अल्टीमेट फायदे होते हैं, वो फिर कभी और गिनवाऊंगा आपको। अगर आपकी रसोई में आज ब्लैक चना बन रहा है तो बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त। अभी आगे बढ़ते हैं और आज कबीर दास जी की जयंती है तो हम उनको नमन करते हैं। कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है कबीर साहब को। बहुत ही खूबसूरत उनके दोहे जो जिंदगी को जीना सिखाते हैं। कबीर दास जी की जयंती है आज। चलिए श्रोताओं, मैंने आपसे कड़क क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा था एक बढ़िया सा गाना आपके सामने मैंने रखा था, एक चुटकी सॉन्ग मैंने बजाया था, बस उसको पकड़ना था यार आपको। बहुत ही पॉपुलर नंबर है ये एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे सही जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर। एक नंबर, कितनी बार तो बचता है यार। ओहो शिट, आनंद मिस कर दिया मैंने, ये कोई बात नहीं। पाजी बताओ जरा कौन सा गाना। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां, सभी लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं एंड बट सबसे पहले मेरे पास जवाब जो पहुंचा था यहाँ पर शेकी शेकी, वो पहुंचा था यहाँ पर नवीन नगर से ललिता जी का। थैंक यू सो मच, और लक्ष्मी जी का सूर्य नगर से। जोरदार तालियां, कंग्रेचुलेशन, मेरी मेरी कंग्रेचुलेशन। आज की सुबह आप दोनों बनती है सुपर स्टार, जीती है ढेर सारी तालियां। बाकी लोगों के लिए ये अमेजिंग गाना। वो जो मैंने पूछा था ना, दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा, भैया मैं पूछ रहा था ना आपके हिसाब से कौन सा पर्वत है दुनिया का सबसे बड़ा, एंड एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर। ये मैं नहीं बताऊंगा, इनकी आवाज में सुनते हैं क्या बता रही है। चलो मैम आप ही बताओ, चलो आपकी वॉइस नोट चला रहा हूँ मैं, ये बताएंगे सही जवाब। बताइए मैम।
1: राधे राधे। राधे राधे। आनंद जी, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट।
0: एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां। सारे जवाब पता होते हैं इनको, सब कुछ पता होता है।
1: राधे राधे, ये भी पता है इनको। जो आपने म्यूजिक चलाया उसका राइट आंसर है एक नंबर, कुछ कम भर। और आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है शहर में, जो भी एक्टिविटीज होती है आपके प्रोग्राम सुन के सब हम लोगों को मालूम चल जाता है कि क्या अपने शहर में प्रोग्राम हो रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका,
0: धन्यवाद।
1: आनंद जी के साथ सुन के आनंद आ जाता है।
0: थैंक यू मैम, ये बोल के आप मुझे रुला रहे हो।

0: चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग यू लव एवरीवन। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ छोड़ के आपको इसी गाने के साथ। फिर मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने मैसेज किए थे। यहाँ पर मेरे पास दुर्गेश जी का सही जवाब पहुंचा था, बबलू जी का मुंबई महाराष्ट्र से पहुंचा था। गुड मॉर्निंग आनंद भाई, बहुत ही सड़ी गर्मी है भाई आज तो। मैं गुजरात से आया हूँ, वहाँ पर जो है वहाँ से भी ज्यादा तो यहाँ गर्मी है। एब्सोल्युटली मेरे भाई, वेलकम है आपका भी। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने आते ही जो है रेडियो ट्यून इन कर लिया मेरे भाई। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने सही जवाब दिया था। हमारे साथ जुड़े थे सहारनपुर से जोन रोजी पल विलीस, लिखते हैं हैव अ ग्रेट मंडे मॉर्निंग आनंद, फैबुलस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। लिखते हैं बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, शुभ यार। चलिए गाइस, चलिए मैं लेता हूँ इजाजत।
1: जादू
0: हाय हाय, किसी का मैसेज रह तो नहीं गया यार, मैं वही चेक कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने सही सही जवाब दिए थे। आनंद जी गुड मॉर्निंग, हमें इसका जवाब नहीं पता था गाने का, कोई बात नहीं जी, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ यू, कैसे हाल चाल है? आई एम गुड, हाउ यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज आए, टेक्स्ट मैसेज पे भी हमारे पास कुछ मैसेज पहुंचे हैं। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग आनंद, गुड मॉर्निंग। एक मैसेज आया सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। एक और सही जवाब पहुंच गया था, एक नंबर, दिस इज राइट आंसर। बट आप लोग नाम क्यों नहीं लिखते हो? ये अब मुझे शिवम का मैसेज पहुंच रहा है, साथ में रमन जी जुड़े हैं टेक्स्ट मैसेज के साथ। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अब मैं निकलता हूँ, जो लोग अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं या जो पहुंच चुके हैं उनको ऑल द बेस्ट। अभी मैं भी यहाँ से निकलता हूँ और देखते हैं शहर में क्या चल रहा है, ये तो आपको बताना और दिखाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे ना, मुझे फॉलो करोगे, इमीडिएटली फॉलो करो, सोशली मिल जाता हूँ, रेडियो वाला आनंद 995 आप डालोगे तो भी मिल जाऊंगा। अगर नहीं भी डाल रहे हो, आप सिर्फ इतना डाल दो रेडियो वाला आनंद, आपको दिख जाएगा लड़का। अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा तो ऑफिशियल आईडी फॉलो करो, FM मुरादाबाद 89.6 या फॉलो कर लो, इस पे डेफिनेटली आपको मैं मिल जाऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वहां पर आपको सारी एक्टिविटीज दिख जाएंगी। ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6, इसको फॉलो कीजिए। आरजे आनंद की बातों को भी फॉलो कीजिए भाई, मस्त रहिए, झकास रहिए, पॉजिटिव रहिए और ऐसे ही हैपनिंग बातों के लिए प्लीज ट्यून इन रखिए FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। नेक्स्ट कंपनी एंजॉय करेंगे आप, अगली कंपनी खुशी के साथ एंजॉय कीजिए, खुशियों वाली बातें एंजॉय करेंगे आप खुशी के साथ। सो अभी के लिए मेरी तरफ से lots of love, have a beautiful and amazing Monday morning. आज मैं जा रहा हूँ कुछ स्पेशल बनाने, I love टिंडा, आज टिंडे की सब्जी बनाने वाला हूँ मैं जाके खुद अपने हाथों से। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, डेफिनेटली आप देखना टिंडे की सब्जी कितनी बेहतरीन होती है, आप मतलब मजा आ जाएगा। आप लोग बना रहे हो, बहुत ही बढ़िया, चलो बाय।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है दोस्तों। मंडे की सुबह है और वक्त हुआ है 10:18 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और हम भी घर बार छोड़ के फटाफट से अपने स्टूडियो पहुंच चुके हैं आप सभी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज तारीख है 29 जून की। जी हाँ, एक दिन और बचा है जून के महीने को जाने में। साल का सातवां महीना स्टार्ट हो जाएगा, कितनी जल्दी पता नहीं चल रहा है ना। 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। एंड आप सभी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं जानती हूँ कामों में भी व्यस्त हैं कुछ। अभी हमें ऑन द वे कार में भी सुन रहे हैं दोस्तों। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं संत कबीर दास जी की जयंती। कबीर दास जी ने अपने दोहे के माध्यम से हमें प्रेम, सादगी, सत्य और इंसानियत का संदेश दिया है। उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची और प्रेरणादायक हैं जितनी सदियों पहले थी। आज का उनका एक बेहद ही प्रसिद्ध दोहा सुनिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा है और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बहुत सारी चीजें सीखने को हमें मिलती हैं। अक्सर हम दूसरों में बुराइयां देखते हैं लेकिन हम खुद के मन में नहीं झांकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा दोहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यानी अगर हम दुनिया में बुराई ढूंढने निकलें तो शायद बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो समझ आता है कि सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना है, बनाना जरूरी है। यही आत्मचिंतन हमें एक अच्छी इंसान बनाता है दोस्तों। तो दूसरों को बुरा मत कहिए, एक्चुअली अपने आप को हम जब इम्प्रूव करते हैं, जब अपने आप को हम पॉजिटिव यू नो थिंकिंग अपने माइंड में लेकर आते हैं, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो वातावरण, इंसान, हर कोई अपने आप में बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो दूसरों को बुराई ढूंढने से बजाय अच्छा है कि आप अपने आप को अच्छे बनाने की कोशिश में लगे रहिए। और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए, बहुत कुछ खास है आपके लिए और खूबसूरत गाने भी मैं यहाँ पर चुनकर लेकर आई हूँ दोस्तों। आप भी मुझे मैसेज पहुँचा सकते हैं आज की मॉर्निंग। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। गुड मॉर्निंग मुरादाबाद। अब मैसेज पहुँचा भी दो, इतना आलस मत करो। माना कि सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, पूरे एनर्जेटिक हैं, फिर इतना आलस क्यों कर रहे हो मैसेज करने में। हाँ, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। चलो संदेश पहुँचाओ। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। मैं लौट कर आती हूँ एक खूबसूरत ट्रैक के उस पार। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। गुड मॉर्निंग श्रोताओं।

0: much is it? I want to buy this.
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
4: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों, हम भी दिल से यही दुआ करते हैं कि आप सभी हमेशा खुश रहें एंड हेल्दी रहें, एकदम फिट एंड फाइन रहें, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य स्वस्थ होगा तभी तो आप प्रसन्न भी रहेंगे ना, हैप्पी रहेंगे। और दुआओं में जब हम किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, तो उनमें असर जरूर होता है। ऊपर वाले उस दुआ को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। और ये अभी आपने ट्रैक सुना, बहुत ही खूबसूरत सा, फ्रॉम द मूवी दिलवाली सी। बहुत ही खूबसूरत थी आवाज अरिजीत सिंह, साथ में अंतरा मित्रा की बहुत ही अमेजिंग सी रही वॉइस। एंड दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, वक्त हुआ है 10:31। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जब नजरिया खूबसूरत हो तो पूरी दुनिया खूबसूरत नजर आने लगती है, कि जब नजरिया खूबसूरत हो तो पूरी दुनिया खूबसूरत नजर आने लगती है। संत कबीर दास जी भी हमें यही सीख देते हैं कि दूसरों की कमियां ढूंढने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। हमें ये अनमोल जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर हमारे एक छोटे से प्रयास से, एक प्यारी सी मुस्कान से, एक अच्छे शब्द से, या किसी की छोटी सी मदद से किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए, तो यकीन मानिए उससे बड़ा सुकून कोई नहीं होता। इसीलिए आज के दिन बस इतना याद रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और जहां भी मौका मिले किसी की मदद जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छाइयां कभी व्यर्थ नहीं जाती। एवरीवन, वहाँ किसी वह ना किसी न किसी रूप में लौटकर रिटर्न हमें मिल ही जाती है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि इतना खूबसूरत जीवन ऊपर वाले ने हमें दिया है, तो उसको बेवजह व्यर्थ ना करो यार, यूटिलाइज करो, क्योंकि जो जीवन मिला है पता नहीं दोबारा मिले या नहीं मिले, किसी को नहीं पता होता है। तो अच्छे कर्म कीजिए एंड खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और हमारे पास जो संदेश आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। जब खुशी बात करना शुरू करती है ना दोस्तों, तो ये चुप होने का नाम ही नहीं देती। क्या करूँ, मैं ऐसी सी चुलबुली सी लड़की हूँ। और हमारे पास जो मैसेज आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान जी का, साथ में साइमन नवाज है, हसन नवाज जी का मैसेज हमारे पास आया है। कहते हैं आरजे खुशी जी को हमारा आदाब, आपको भी आदाब, गुड मॉर्निंग सर। और इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है फ्रॉम द मूवी अंदाज से। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, किसी को नहीं मालूम होता है दोस्तों कि कल क्या होगा। अपने आज में खुश रहिए और गलती से भी किसी का दिल मत दुखाइए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, कहाँ से आया है जरा हम देख लेते हैं, कहाँ से हमें मैसेज पहुँचाते हैं सर। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है खुशी मैडम जी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी होंगी। एंड आपका प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं जामा मस्जिद इकबानपुर से मोहम्मद आरिफ खान जी, साथ में इनकी मिसेज है निखत परवीन, एंड इनका बेटा भी है मोहम्मद रूहान खान। और इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें भी लिखी हैं कि हर वक्त तेरे आने की आस रहती है, हर वक्त तेरे आने की आस रहती है, हर पल तुझसे मिलने की प्यास रहती है, सब कुछ है यहाँ बस तू नहीं, कि सब कुछ है यहाँ बस तू नहीं, इसीलिए शायद ये जिंदगी भी उदास रहती है। अरे बाबा, अब उदास मत होइए, खुश हो जाइए आप, आपका मैसेज हमने शामिल कर लिया है। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है खुशी जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दुर्गेश सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से। इन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है शोल्जर शोल्जर मीठी मीठी बातें बोलकर। ओ हो, देखिए मीठी मीठी बातों का जिक्र यहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों हम भी आपसे कहेंगे कि जब आप बोलते हैं ना तो अच्छा बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमेशा अच्छा बोलिए। जब भी आप कुछ बोलने की प्रयास करें, कोशिश करें, तो अच्छा बोलें, क्योंकि जो शब्द एक बार जुबान से निकल जाते हैं वो रिटर्न वापस नहीं आते हैं। बाकी इतनी प्यारी सी आवाज ईश्वर ने आपको दी है, तो उसको उसका भी अच्छा इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें। किसी की तारीफ आप कर सकते हैं,
किसी को अच्छा कॉम्प्लीमेंट आप दे सकते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, और साथ में इनके दोस्त भी हैं बबलू सैनी जी, सत्या प्रकाश सैनी जी। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है प्रियांशी का, और ये मैसेज हमें पहुँचाती है प्रकाश नगर से। कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए दोस्तों, अभी सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी अंदाज से, एंड किशोर कुमार जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक आपकी मॉर्निंग को बनाएगा और भी ज्यादा खूबसूरत। तो एंजॉय करते हैं सब मिलकर, फिर लौट कर आती हूँ मैं अभी।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
7: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। खुशी आपके साथ है और शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। दोस्तों, वक्त

है 10:49। जी हाँ 10:49 स्टूडियो क्लॉक हो चुके हैं। दोस्तों आज 29 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रॉपिक्स यानी उत्कृष्ट कटबंधीय क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों दरअसल पृथ्वी का वह हिस्सा जो कर्क रेखा ट्रॉपिक्स ऑफ इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये इलाका प्रकृति का अनमोल खजाना है। दुनिया के सबसे घने जंगल, रंग बिरंगे फूल, दुर्बल जीव जंतु, नदियाँ और जैविक विविधता का बड़ा हिस्सा यही पाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि क्षेत्र हमारी धरती के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये हमें ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा, भोजन, औषधियाँ और लाखों लोगों के लिए आजीविका प्रदान करते हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन की वजह से ये क्षेत्र खतरे में है। दोस्तों इसका उद्देश्य है कि एक पेड़ जरूर लगाएं, प्रकृति का सम्मान करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। जब प्रकृति मुस्कुराएगी तभी आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों आसपास पेड़ पौधे लगाइए, उनकी सुरक्षा भी कीजिए, समय समय पर पानी भी दीजिए और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें। जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप अपने घर के थैले बने हुए लेकर जा सकते हैं, बैग लेकर बनाए हुए लेकर जा सकते हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। पॉलिथीन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और कचरे को ऐसे भी इधर उधर कहीं ना डालें, उसको डस्टबिन में ही डालें ताकि आसपास का वातावरण साफ एकदम स्वच्छ रहे। और जब आपका आसपास का वातावरण साफ क्लीन रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो आपको बीमारियां भी नहीं होंगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इन चीजों का ख्याल रखिए और बाकी प्रकृति से प्यार कीजिए। और यहाँ पर जो संदेश आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। हमारे पास यहाँ पर संदेश आए हैं कश्मीर से। महराजुद्दीन जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं, कहते हैं आरजे खुशी जी को हमारा गुड मॉर्निंग। आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना संदेश हमें पहुंचाया है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकते हैं। मुस्कुराहट चाहे किसी की भी हो मनमोहक, प्यारी और बहुत ही आकर्षक होती है। हंसी एक ऐसी चीज है जो बताती है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। किसी को खुशी या हंसी देने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी में हर दम हंसते रहो, हंसाते रहो जिंदगी की। और उन्होंने लिखा है कि हंसना जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी को इसी अंदाज में जियो कि आपको देखकर लोग कहें देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अरे वाह, इतना प्यारा मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी। सच में आपका मैसेज पढ़कर हमारा जो दिल है वो खुश हो गया है। एंड साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं। लदावली जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, खुशी मैम को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं विकी सागर जी मुरादाबाद से।

और इन्होंने बड़ी प्यारी सी बात लिखी है कि जब इंसान का नजरिया खूबसूरत होता है ना, तो उसे हर चीज खूबसूरत नजर आती है। बिल्कुल सही कहा विक्की सागर जी आपने। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का, और ये कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहती हैं आज पूर्णिमा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो शाम को खीर बनने वाली है फिर। हाँ, एंड कहते हैं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी मुरादाबाद में आ रहे हैं, वेलकम टू मुरादाबाद, आपका भी वेलकम है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आज हमारे सीएम जी आ रहे हैं। एंड इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भी हमें भेजी है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। श्रोताओं, आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी मैं आपके लिए एक शानदार ट्रैक यहां पर प्ले कर रही हूं, डांस। जी हाँ, डांस बसंती, बहुत ही खूबसूरत थी ये प्यारा सा ट्रैक है, आप सुनिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।
6: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी। मंडे की सुबह है, वक्त हुआ है 11:08 और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना। इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी ललिता कश्यप जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से, तो मैंने कहा चलिए मैम की रिक्वेस्ट को भी पूरा किया जाए, उनका भी जो दिल है वो खुश हो जाए। नसीम मूवी का ये ट्रैक आपने सुना दोस्तों। दूसरों, ट्रेन का सफर अपने आप में एक अलग ही एहसास।

पास होते हैं ना, खिड़की के बाहर बदलते हुए खूबसूरत नज़ारे, स्टेशन की चहल पहल, चाय की खुशबू और सबसे खास बात, सफ़र के दौरान कई बार कुछ अनजान लोग भी मिल जाते हैं जो देखते ही देखते यादों का हिस्सा भी बन जाते हैं। ट्रेन हमें हमारी मंजिल तक तो पहुंचाती ही है दोस्तों, लेकिन रास्ते में जो छोटी छोटी यादें बनती हैं ना, वही इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना देती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप हाँ जी क्या आपको ट्रेन में सफर करना पसंद है? क्या आपको ट्रेन में सफर करना पसंद है? अगर हाँ तो ट्रेन से जुड़ा हुआ कोई प्यारा सा किस्सा, कोई यादगार पल या कोई मजेदार घटना मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा जो आपके साथ ट्रेन में हुआ हो और आपको आज भी याद हो, कोई यादगार पल या फिर कोई प्यारी सी बात जो आपको अभी भी याद है, आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। आपने अभी तक ट्रेन का सफर नहीं किया है? ओहो, बहुत सारे श्रोता ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रेन का सफर नहीं किया है, तो मुझे मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ जिन्होंने नहीं किया है ट्रेन का सफर, सबसे पहले आप ट्रेन में किस जगह की यात्रा ट्रेन से करना चाहेंगे? जी हाँ, आप मुझे बताइए। जिन्होंने ट्रेन का सफर अभी तक नहीं किया है, बस अभी वो सोच ही रहे हैं कि हम भी ट्रेन में बैठकर कहीं जाएंगे, तो मुझे बताइए कि सबसे पहले किस जगह की यात्रा आप ट्रेन से करना चाहेंगे। और जो ट्रेन में सफर करते हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ उनकी खूबसूरत छोटी छोटी यादें, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। वो ट्रेन में जाना, विंडो वाली सीट पर बैठना और बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखना, कभी रिमझिम बारिश आती है तो कभी बादल आ जाते हैं, कभी दूसरे स्टेशन जब हम देखते हैं, जैसे दूसरा स्टेशन आता है तो वहां पर इतनी चहल पहल होती है, इतने पैसेंजर वहां पर होते हैं, इतने लोग बैठे होते हैं, कोई उतरता है तो कोई चढ़ता है ना दोस्तों? आप भी अगर आपकी भी कोई ट्रेन से जुड़ी हुई यादें हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इतने प्यारे प्यारे संदेश हमें पहुँचाते हैं कि इनको पढ़कर हमारा दिन खूबसूरत हो जाता है। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है बबली अनजान जी का, गीता कश्यप जी का, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। अंशु का मैसेज हमारे पास आया है। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी परवलीस जी का, गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। श्रोताओं आप भी अपने संदेश हमें पहुंचा सकते हैं, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837786896। और क्या कुछ स्पेशल है अभी आकर मैं बताने वाली हूँ आपको, उससे पहले आप सुनिएगा ये खूबसूरत सा गाना।

हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. वक्त हुआ है 11:23 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में. एंड दोस्तों, अभी हमने आपसे जाना था, आपसे हमने क्वेश्चन किया था कि आप मुझे बताइए दोस्तों, आपने कभी ट्रेन से सफर किया है? जी हाँ, कभी आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है? और ट्रेन से जुड़ी हुई आपकी प्यारी सी कुछ यादें, कुछ छोटे मोटे खास पल जो आपके सफर को जिन यादों ने खूबसूरत बनाया हो, कुछ ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज, ब्यूटीफुल यादें आपकी अगर हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत बहुत प्यारे प्यारे संदेश आ गए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ. हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है रामपुर से सीमा जी का, और ये कहती हैं, खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. कहती हैं, मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत पसंद है. आज भी मुझे अपनी पहली दिल्ली यात्रा याद है. खिड़की वाली सीट मिली थी और पूरे रास्ते खेत, नदियां और छोटे छोटे स्टेशन देखते हुए कब मंजिल आ गई पता ही नहीं चला. ट्रेन का सफर हमेशा यादगार लगता है. थैंक यू सो मच सीमा, आपने अपना मैसेज हमें पहुंचाया. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से अमित जी का, और कहते हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. और आपका क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है. इन्होंने

हमारी इस क्वेश्चन ने हमारे पुरानी कुछ खूबसूरत यादों को फिर से ताजा कर दिया है और ये कहते हैं कि मैम एक बार ट्रेन में मेरे सामने वाले अंकल आंटी से बातचीत शुरू हुई, पूरा सफर हंसी मजाक में बीत गया और उतरते समय ऐसा लग रहा था अपने ही परिवार के लोगों से बिछड़ रहे हैं। ट्रेन सच में अनजान लोगों को भी अपना बना देती है और अभी भी उन आंटी अंकल जी से मेरी बातचीत होती है, लगता है कि हाँ एक अपनी ही फैमिली के हिस्सा हैं, परिवार हैं और अभी भी वो मुझे अपने बच्चे की तरह ही ब्लेसिंग्स प्यार देते हैं। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू अमित जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बुद्धि बिहार से और ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं रिया। कहती हैं हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कहती हैं कि हम एफएम मुरादाबाद रेगुलर सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है एंड मैसेज करने का कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं करते हैं, वरना हम कोशिश करते हैं कि हर शो में पार्टिसिपेट करें आपकी एंड मैसेज भी करते हैं जब हमें समय मिल जाता है। और आज आपने जो ट्रेन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा है मैम, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी सबसे खूबसूरत याद तब की है जब मैं अपने दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने निकली थी, रास्ते भर गाने गाए, चाय पी और ढेर सारी बातें की। वह ट्रेन का सफर आज भी याद आता है, ऐसा सफर जिंदगी भर दिल में बस जाते हैं। हाँ बिल्कुल यार, सही कहा है आपने। और हमने भी अक्सर, हमारी भी बहुत सारी यादें ट्रेन से जुड़ी हुई हैं एंड मैंने भी बचपन से ही ट्रेन का सफर किया है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप अपने लगातार मैसेज यहाँ पर हमें पहुँचा रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का और ये कहते हैं कि ऊपर वाला भी न जाने कैसे रिश्ते बना देता है, ऊपर वाला भी न जाने कैसे रिश्ते बना देता है, अनजानों को दिल में बसा देता है, जिनको हम जानते भी नहीं थे उन्हें एफएम मुरादाबाद अच्छा जान से भी प्यारा दोस्त बना देते हैं। ओ हो हो क्या बात है जी। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट में भेजी है, घटा छा गई बाहर आ गई। क्या बाहर बादल हो रहे हैं या गर्मी हो रही है बताइए, सो कैसा मौसम है अभी राइट नाउ मुरादाबाद का। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए खुशी जी, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से और सर ने भी एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की, सर थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, लेकिन उससे पहले एड ब्रेक भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग हो गई है। तो दोस्तों बस हम लौट कर आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश खुशी को पहुंचाइए क्योंकि खुशी को है बेसब्री से इंतजार आपके प्यारे संदेशों का, आपके दिल की बातों का।

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

लोग वेट करने लगे हैं इस बार महाराज जी के, प्रदेशवासियों को क्या पैगाम देंगे इस हफ्ते। योगी जी की पार्टी का फोकस है स्कूल चलो अभियान पर। गुरुकुल परंपरा की याद दिलाता है, सनातन में शिक्षा का महत्व बताया गया है योगी जी ने, और टीचर्स कम्युनिटी से अपील की है कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए इंस्पायर करें ताकि उनका स्कूल जाने में इंटरेस्ट डेवलप हो। और हाँ, पाती का सबसे मानवीय पक्ष, आप सभी लिसनर्स जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उनके नाम भी है दोस्तों। आपने अपने जो आस पड़ोस से बेखबर मत, हाँ जी दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने आस पड़ोस से बेखबर मत रहिए। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहा है तो ये इंश्योर कीजिए कि वो बच्चा भी स्कूल जा सके। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तभी देश निखरेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो श्रोताओं, यही तो है नया यूपी, सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते हैं। और मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी खुशी।

और अभी आपने खूबसूरत गानों का भी आनंद लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नागर से रिहाना जी का, और ये कहती हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे ही होंगे। अगला संदेश हमें मिला है यहाँ पर जिला मुरादाबाद ग्राम दूरा उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप जी का। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, एंड ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हाय खुशी मैम, और सब बढ़िया है? हां जी, माय नेम इज प्राची का मैसेज हमारे पास आया है फ्रॉम गायत्री नगर से। थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज मुझे मिला है यहाँ पर मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके मित्र भी हैं, इनके फ्रेंड्स भी हैं, इरशाद अंसारी जी, शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, आपका शो मॉर्निंग मसाला हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर ने एक रिक्वेस्ट भेजी है हमें गाने की, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। हाँ, गलती तब दिल करता है जब हम बाहर जाते हैं और पानी की बॉटल साथ लेकर नहीं जाते हैं, फिर हमें याद आता है, ओहो हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि पानी की बॉटल भूल गए। पर दोस्तों मैं आपको याद दिला देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ आपको वंस अगेन कि आप घर से अगर बाहर जा रहे हैं तो पानी की बॉटल अपने साथ रखें, छाता भी लेकर जाएं, एंड बाकी आप जूस वगैरह भी पी सकते हैं जो गर्मी में आपको शीतलता दे, ठंडक दे, और आपका ये सफर खूबसूरत रहे। बस हम तो यही आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बाकी आप एक प्यारा सा ट्रैक सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपने चेहरे पर ऐसे ही खूबसूरत स्माइल, प्यारी सी मुस्कुराहट बरकरार रखिएगा।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
8: वेलकम वेलकम टू द सक्सेस पार्टी ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड जुबिन नौटियाल।
9: क्या बात है जुबिन, फैक्ट में है या रियल लाइफ में भी?

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. आप सभी का वेलकम है. देखिए, दिल हमारा भी जो है ना वो कभी कभी गलतियां कर देता है. डोंट माइंड एवरीवन. देखिए, वक्त हुआ है 11:58 और अभी आपने जुबिन नौटियाल जी की आवाज में प्यारा सा ट्रैक एंजॉय किया. इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी इरशाद हुसैन अंसारी जी ने. दोस्तों, गर्मियों का मौसम हो और लू का असर, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चों का खास ख्याल रखने की. इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को लू से सुरक्षित रखने के लिए हीट एक्शन प्लान लागू किया जाएगा. इसके तहत शिक्षकों को हीट वेव और हीट स्ट्रोक के लक्षण पहचानने, जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार देने और बच्चों व अभिभावकों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है. स्कूलों में जागरूकता पोस्टर भी लगाए जाएंगे. बच्चों को समय समय पर पर्याप्त पानी पीने, तेज धूप से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और पानी से भरपूर फल खाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा. साथ ही अगर किसी बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो तुरंत शिक्षक को सूचना देने की सलाह दी जाएगी. दोस्तों, गर्मी के इस मौसम में छोटी छोटी सावधानियां बड़ी सुरक्षा बन जाती है. इसीलिए आप भी अपने बच्चों का खास ध्यान रखिए. उन्हें हाइड्रेट रखने और बिना जरूरत तेज धूप में बाहर ना निकलने दें. आप इन चीजों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और अभी मुझे दीजिए जाने की अनुमति, लेकिन मैं मिलूंगी आपको सी यू सून 3 से 5. तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल. टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग. सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. और जब आप हिम्मत से काम लेते हैं ना, तो जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए उन सब का आप सामना आसानी से कर पाते हैं. अभी मैं चलती हूँ. बाय बाय, टेक केयर.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
3: जन जन तक पहुंचा संदेश।
4: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बार की गर्मी वकाई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
1: बिल्कुल टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों को भी इसमें कोई भूमिका निभानी है। सच बताऊं तो अभी गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं हो रही है।
0: अरे आरजी आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
1: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
0: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
1: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
0: हाँ अजय आनंद, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
1: तो भाभी, अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
0: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो पसीना आना भी बंद हो सकता है, और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
1: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
0: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
0: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पियेंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
1: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ORS क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
0: बहुत अच्छा सवाल है RJ आनंद। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
1: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
0: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
1: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
0: बिल्कुल RJ आनंद, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों है जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
1: हाँ, ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
0: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए, और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
1: क्या बात है टीकन भाभी, और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाए, साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा ले जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
1: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
0: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है, ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले, कोशिश करे कि सुबह जल्दी काम शुरू करे और दोपहर की तेज धूप में आराम करे, बीच बीच में पानी पीते रहे और जहाँ भी हवा मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करे। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छाँव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
1: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
0: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
1: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
0: ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
1: भाभी एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
0: अरे आरजे आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
0: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
1: साथियों आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है, गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहाँ लापरवाही भारी पड़ गई हो?
0: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया, और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था, और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
1: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
0: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी पिला दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
1: सही कहा टीकन भाभी। साथियों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
0: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छांव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा, चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।

0: नहीं जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से। और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहां जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजस रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग टीडी का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो टीडी टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
1: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना ही बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो अभी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
0: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे, क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
0: जब भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1 हजार की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पर दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
0: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
1: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
0: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण

0: हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं, उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
0: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एनएम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास इंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
1: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए। उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं, तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए। पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं, तो उसके बाद हाथ धोए, बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
0: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख न लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कन्फर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
0: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
1: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
0: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
1: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
0: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
1: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
0: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
1: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रसार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
0: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
0: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
1: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
0: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
1: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता ये स्वास्थ्य की कुंजी है और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हिंदू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद। श्रोताओं, लेकर हाजिर हो गया हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, एक नई शुरुआत और एक नया सफर। जी हाँ श्रोताओं, एक और नए टॉपिक के साथ जुड़ गया हूँ आपके साथ इसी प्रोग्राम में, जहाँ पर हम ढेर सारी बातचीत करते हैं और आपको तमाम सारी जानकारियां भी देते हैं। आज के जमाने की सोच बदलना बहुत जरूरी है श्रोताओं। वेल, आज सोच बदलो में हमारा टॉपिक क्या होगा, आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं? देखिए, अगर इस विषय पर आपने अपनी सोच को नहीं बदला तो ये चीजें आपका फ्यूचर बदल सकती है श्रोताओं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज का जमाना ऑनलाइन का है, नौकरियां भी ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन इसी के साथ बढ़ रहा है एक छोटा सा ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। जी हाँ, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारा जो विषय है वो है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे इसके शिकार होते हैं लोग, और अगर जाने जाने में आप इसका शिकार हुए हैं तो कैसे आप इस चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, इस ऑनलाइन जॉब फ्रॉड की शिकायत आप कहां दर्ज कर सकते हैं, तमाम सारी जानकारियां आज आपको मिलेंगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो अभी तो सिर्फ सफर शुरू हुआ है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। चलिए श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, यानी कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, छोटा सा मतलब छोटा सा। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद जल्द ही आपसे पुनः मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जिसका नाम है सोच बदलो प्रोग्राम, जो आप सुनते हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन यानी कि अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। तो चलिए श्रोताओं, मिलते हैं जरा सी देर में एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना और इस गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम सोच बदलो में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में ऑनलाइन जॉब फ्रॉड जो हो जाता है अक्सर लोगों के साथ। इवन एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक छोटा सा वाक्य मैं जरूर साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले कल की बात बताता हूँ। कल ही एक मुरादाबाद के एक लड़के का मुझे मैसेज आया। उसने मुझे व्हाट्सएप पर मतलब जो है मैसेज किया। उसने लिखा, वर्क फ्रॉम होम है, आप डेली 2000 रुपए कमा सकते हो। सोचिए मुरादाबाद में भी ये चीज लोग कर रहे हैं, आप 2000 रुपए कमा सकते हो। उसने मुझे मतलब पूरी तरीके से ट्रस्ट दिलाया और धीरे धीरे उसने मेरे से एक रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी बोला। मतलब होता है ना कि जब आपको लोग कॉल करते हैं तो आपको ना मेन्यू प्लेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए दिल्ली, NCR या मुंबई जैसे शहरों में तो ये चीज बड़ी कॉमन है, लेकिन अगर मुरादाबाद में ऐसी चीज होती है तो यार थोड़ा सा मतलब दुख होता है कि अपने शहर में भी इस तरह की चीजें हो रही है। जी हाँ, खैर मैंने तो भाई साहब उसकी बातों में आके कोई भी ऑनलाइन फीस नहीं दी और ना ही मैंने कोई रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि मुझे पता था ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडबाजी है। क्योंकि देखिए, अगर कहीं पे भी कोई नौकरी होती है या जॉब के लिए आपको कॉल आता है तो एकदम से आपसे कोई फीस या पैसे नहीं मांगता। माना कि कुछ कंपनियों की पॉलिसी होती है, लेकिन आप तो खुद समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम तरह की जानकारियां आपके पास सुबह से शाम तक आपके फोन पर आती हैं। अब ऐसे में अगर आप ऑनलाइन जॉब इस फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं तो देखिए ये तो फिर बड़ी बेवकूफी हम कह सकते हैं हो जाएगी, है ना, आपके साथ हमारे साथ। तो हमें क्या करना है ना श्रोताओं, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये ऑनलाइन वाले लोग आपको कॉल करते हैं ना, जॉब को ऑफर देते हैं, आप जाने अनजाने में आके पे भी कर देते हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी दे देते हो कि शायद हमारी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि देखिए, जॉब की तो हर किसी को जरूरत है, हर दूसरे व्यक्ति को काम की जरूरत है, और एक सही काम अगर उसे मिल जाए, उसके सपनों का काम मिल जाए, तो फिर उससे बेहतर क्या ही हो सकता है उसके लिए श्रोताओं। तो बस मैं वही कहना चाहता हूं कि आप इमोशनली होकर, आप ज्यादा ख्याली फुलाव ना पकाकर पहले उसकी डिटेल्स निकालें, उसके बारे में चेकआउट करें, इंटरनेट पर सारी चीजें आज की डेट में उपलब्ध हैं, अच्छे से पहले जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही कोई शुल्क या कोई ऑनलाइन फीस आप जमा कराएं। अदरवाइज कोई भी पैसा अपनी मेहनत की कमाई का इधर उधर आप वेस्ट ना करें। इसी श्रृंखला में एक बड़ी प्यारी सी दोस्त है हमारी, उनको भी हम जोड़ेंगे। उनके साथ भी एक वाक्य रहा है ऑनलाइन फ्रॉड जॉब का, उनसे हम जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए, एक छोटा सा अंतराल का समय हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस मैं यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
0: एक बार फिर से इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, सोच आप बदलोगे तो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। वो कहते हैं ना, जब आपकी सोच बदलती है ना तो पूरी दुनिया आपकी बदल जाती है। और आज की जिंदगी को, आज की ये जो जनरेशन है, जो जेंजी है, उसका सोच का बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ना इतनी इंडिपेंडेंसी हमने बना ली है, हम हर चीज ऑनलाइन ही चाहते हैं, चाहे हमारा खान पान हो, हमारी शॉपिंग हो, हमारा मतलब चाहे जॉब का हो, कुछ भी व्हाटएवर, हर चीज में हमें लगता है कि यार सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, सब कुछ ऑनलाइन। इस ऑनलाइन के चक्कर में ना जो स्कैमर होते हैं, जो फ्रॉडबाजी करने वाले, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, उन्हें मौके का फायदा मिल जाता है। वो ये मौके का फायदा उठा के आप ही का बेवकूफ बना देते हैं, और कई बारी आप बेवकूफ बन जाते हैं, आप नहीं, इवन हम सब इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं, इसी बीच मैंने कहा था मैं आपको एक नई आवाज से रूबरू कराने वाला हूं, तो एक ऐसी लड़की जिसके साथ ये वाक्य हुआ था, आइए जरा सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ ऑनलाइन फ्रॉड और वो कैसे फिर इससे बाहर निकल पाए, जरा जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम
1: नमस्कार, मैं कुमकुम बोल रही हूँ मुरादाबाद से। मैं काशीराम की रहने वाली हूँ।
0: जी कुमकुम, आप मुझे बता रही थी कि आपके साथ भी कुछ ऑनलाइन धोखाधड़ी होते होते बची, शायद आप भी शिकार होने वाली थी इस चीज
1: की,
0: तो कैसे, मतलब बताएं थोड़ा।
1: जी, जब ये स्टडी पूरी हुई तो मैं भी ऑनलाइन जॉब्स देख रही थी कि हाँ, जब घर बैठे मैं भी कुछ कर सकूं, और हर बच्चा चाहता ही है कि कुछ कर सके।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए हम जॉब देख रहे थे ऑनलाइन, मैं और मेरे घर सभी बच्चे, तो सडनली एक कॉल आता है। एक कॉल आता है जैसे कि आप कहते हैं,
0: के लिए आप बोल रहे हो
1: जी, ऑनलाइन जॉब के लिए के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। उसमें इंटरव्यू वगैरह के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे हमें। उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर रहेगी और आपका टाइमिंग खाली दिन में रहेगा 2 to 3 hours। तो मैं इसको सोच के बहुत एक्साइटेड थी, पूरा दिन बहुत एक्साइटेड रही। पर नेक्स्ट डे उनकी कॉल आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू पहले 5,000 rupees देने पड़ेंगे।
0: मतलब आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
1: हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको 5,000 rupees देने होंगे, जिसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं भी ये सोच रही थी कि 30,000 मिलेंगे तो 5,000 में क्या चला जाएगा,
0: क्या चला जाएगा। हर आदमी सोचता है चलो ठीक है, जॉब तो मिल जाएगी।
1: हाँ, जॉब भी मिल जाएगी, कम टाइमिंग।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उस हिसाब से ही मैं ये सोच रही थी कि अच्छा होगा, ये बहुत रहेगा। निखिल, मेरे भैया ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। तेरी भाभी के पास भी कॉल आई थी ऐसे।
0: ओके।
1: पहले उन्होंने 5,000 लिए, उसके बाद 10,000 लिए।
0: अरे बाप रे, अच्छा।
1: उसके बाद जाके पता चला कि ये फेक कॉल्स हैं, इस तरह से नहीं होता ऑनलाइन। उनकी पहले पूरी जानकारी निकालनी चाहिए कि इंटरनेट में ये क्या चीज है, क्या नहीं है।
0: तो आपके साथ मतलब ये फ्रॉड होते होते
1: बच गया। मैंने
0: पेमेंट दे देती है अगर आपके भाई आपको नहीं बताते तो आप भी फंस जाती।
1: यस सर।
0: जी, तो श्रोताओं यही हमारा भी उद्देश्य है, आपको बताने का, समझाने का। देखिए कुमकुम तो बच गई है ना, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऑनलाइन फ्रॉड जॉब से बचें, स्कैमर से बचें और अपनी सोच को बदलें। जब आपकी सोच बदलेगी तो आपके जो आसपास की चीजें ना वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। और सबसे जरूरी चीज ये है बॉस, सोच बदलना सिर्फ इसलिए भी नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो, सोच बदलना इसलिए भी जरूरी है। जब आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोच बुलंद होगी, तो आप ना बहुत सारी चीजों से बच पाएंगे और स्मार्टली काम कर पाएंगे। श्रोताओं, आज हम इस में चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से कैसे बचे। कुमकुम ने अपनी स्टोरी शेयर करी, आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमें हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM Moradabad 89.6 के नाम से। वहां पर आप हमें डीएम करके बता सकते हैं क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो फिर आप कैसे बाहर निकले हैं। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक का समय है, छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं FM Moradabad 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, एक और बहुत ही मधुर मधुर गीत आपने सुना और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आ रहा होगा जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ, इसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, जो है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वाला एक छोटा सा प्रोग्राम और इसी में हम शामिल करेंगे, मतलब एक छोटी सी जानकारी से भरा ये इन्फॉर्मेटिव वाला छोटा सा सेशन, जरा इसको सुनते हैं, ये भी आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है कि हम स्कूलिंग और कॉलेज करने के बाद सबसे पहले तलाश करते हैं नौकरी, और जब हम नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो शायद कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। वो होती है जॉब से रिलेटेड फ्रॉड। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर। आज का विषय है फर्जी नौकरी का ऑफर, यानी नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी, नौकरी की तलाश और ठगों का जाल। चलिए आखिर वो कैसे जाल बिछाते हैं आपको बताते हैं। श्रोताओं, आज के समय में युवा नौकरी की तलाश में हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र मौके ढूंढ रहे हैं, कई लोग बेहतर नौकरी की चाह में ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसी मजबूरी और उम्मीद का फायदा उठाकर साइबर ठग फर्जी नौकरी के ऑफर देते हैं। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ। राहुल, मुझे ईमेल आया है, बिना इंटरव्यू के वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रहे हैं और सैलरी 40,000 रूपए।
2: अरे इतनी जल्दी नौकरी, कुछ पूछताछ की?
1: कंपनी बड़ी लग रही है, बस 2,000 रूपए रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं। लो फीस भर दी, ना तो कॉल आ रहा है ना ईमेल का जवाब, वेबसाइट भी नहीं खुल रही। राहुल समझ कि वह फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो चुकी है। फर्जी नौकरी का ऑफर क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फर्जी नौकरी के ऑफर में ठग खुद को एचआर या रिक्रूटर बताते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से संपर्क करते हैं, ज्यादा सैलरी और आसान काम का लालच देते हैं। फिर वे मांगते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट की कॉपी, और बाद में गायब हो जाते हैं। फर्जी नौकरी के लाल संकेत, अगर नौकरी के ऑफर में ये बातें हो तो तुरंत सतर्क हो जाइए। बिना इंटरव्यू नौकरी, बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत कम काम, नौकरी से पहले पैसे मांगना, अनजान ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, जल्दी ज्वाइन करने का दबाव। याद रखिए, असली कंपनियां नौकरी के लिए पैसे नहीं मांगती हैं। सुरक्षित नौकरी खोजने के चलिए मैं आप सभी को उपाय बताता हूँ। नौकरी के लिए आवेदन करते समय केवल भरोसेमंद जॉब पोर्टल का इस्तेमाल करें, कंपनी की वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल देखें, रिक्रूटर की जानकारी वेरीफाई करें, किसी अनजान लिंक या दस्तावेज अपलोड ना करें, आधार, पैन, बैंक डिटेल साझा करने से बचें। छात्र और माता पिता के लिए मैं खास संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, फर्जी नौकरी के ऑफर के शिकार अक्सर छात्र, नए ग्रेजुएट और बेरोजगार युवा होते हैं, इसलिए माता पिता बच्चों से बात करें, हर ऑफर को सच न माने, शक हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह लें। अगर आप ठगी का शिकार हो जाते हैं तो, अगर आप फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो जाएं, तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए संपर्क करें www.staysafeonline.com पर। सुरक्षित रहने के 5 नियम, नौकरी के लिए पैसे

मत दीजिए बिना इंटरव्यू और पर भरोसा ना करें। दस्तावेज सोच समझकर साझा करें, जल्दबाजी में फैसला ना लें। जानकारी ही सुरक्षा है। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि नौकरी पाना मेहनत से होता है, लेकिन एक गलत भरोसा सब कुछ बिगाड़ सकता है। सपने देखिए लेकिन आँखें खुली रखिए, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो सुबह से लेकर शाम तक करता है आपको एंटरटेन और साथ में देता है काम की बात।

तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो आज जानकारी सुनी हमारे इस प्रोग्राम में, सोच बदलो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है, ये आपको जरूर कहीं ना कहीं काम आएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ऐसी जानकारियों के लिए बस आप ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। जी हाँ श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। आज हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन महत्वपूर्ण जानकारियों को, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखा होगा। ये छोटे छोटे बिंदु, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमें कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का शिकार होने से बचा सकती हैं। अगर अगली बार आपको कोई कॉल आए कि आपको 30,000 रुपए देंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2,000 का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो संभल जाइएगा और समझ जाइएगा, क्योंकि समझदारी ही सबसे बड़ी सतर्कता है। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नौकरी जरूर मिलेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, पर गलत रास्ते से बच जाओगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सोच बदलिए, हर चीज ऑनलाइन नहीं, कुछ चीजें ऑफलाइन भी करनी है। अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत, अलविदा, फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, कुछ और म्यूजिकल गीत के बाद आपको कुछ और नए प्रोग्राम भी सुनने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: की विषय पर। जी हाँ, मतलब ये जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है जिसपे हम आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में गन्ने की फसल का वैज्ञानिक प्रबंधन। इसपे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी पर बात करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर विनय जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद की स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: जी जी सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय एक बार फिर से निकाला और आप स्टूडियो में आए, उसके लिए शुक्रिया सर।
1: जी धन्यवाद सर। जी
0: सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि गर्मियों में गन्ने की फसल को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है क्या सर?
1: जी हाँ, देखिए गर्मियाँ क्या है कि सभी लोगों के लिए जल आवश्यक होता है। और फिर बेसिकली जब गर्मियाँ चल रही हो तब तो वो जो है जल मांग जो है कई गुना बढ़ जाती है, चाहे जीव हो, चाहे जीव में कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, या हमारी फसलें हो, या हमारे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, कई गुना हमारा वो बढ़ जाता है। तो जैसे गन्ने की बात करें तो गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। हल्की भूमि में सिंचाई जल्दी करनी पड़ सकती है।
0: जी ओके, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जो ड्रिप सिंचाई का उपयोग भी लाभकारी हो सकता है क्या, और इससे पानी की बचत होती है क्या, और पौधों को पर्याप्त नमी भी मिलती है क्या?
1: जी देखिए, ड्रिप सिंचाई जिसको हम लोग बेसिकली बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, हमारे जैसे जहाँ पे जल की समस्या होती है, सिंचाई जल जहाँ पे कम होता है, और बाकी अगर अमूनता अगर देखा जाए तो हमें तो यही लगता है कि प्रत्येक किसान को ये चीजें धीरे धीरे अडॉप्ट करनी चाहिए।
0: हाँ जी, हाँ
1: क्योंकि एकदम हाँ से इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, इसमें पाइपलाइन पड़ती है, उसमें गन्ने की जो लाइन होती है उसी में ये पाइपलाइन डाल करके बूंद बूंद पानी डाला जाता है। इसमें अतिरिक्त जल जो होता है हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल हम पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको कोई जैसे वो फर्टिलाइजर देना है, जिसको उर्वरक कह सकते हैं, उर्वरक देना है, या कोई और हमको जो है पेस्टिसाइड या फंजीसाइड कुछ भी हमको देनी है, तो हम सिंचाई जल के साथ में उनको प्रेषित करके हम अपने फसल को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे अतिरिक्त जल भी हमारा बचता है और किसान की जो है कह सकते हैं कि उनको जो है अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार हमारी पाइपलाइन डल जाती है तो हमेशा वो यूज किया जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, तो गर्मी के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ता है और फसलों से पोषक तत्व और नमी भी छीन लेता है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिसे समय पर जो है निराई गुड़ाई आवश्यक होती है।
0: हाँ,
1: कोई भी फसल हो।
0: हाँ जी, हाँ
1: गन्ने
0: जी।
1: की ही नहीं बल्कि कोई भी फसल हो, समय पर निराई गुड़ाई आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित खरपतवार नाशी, जिसको हम लोग जो है वीडिसाइड भी कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए।
0: जी जी,
1: और प्रयास करना चाहिए कि अगर हाथों से इस काम को कर सकें, क्योंकि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए। और हमारे अगर हाथों से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो उस स्थिति में हम खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और खेत को खरपतवार मुक्त बनाए रखना ये जरूरी होता है, क्योंकि इससे जितना ज्यादा खरपतवार होगा उतनी ही फसल हमारी गुणवत्ता कम होगी और उसमें पैदावार भी घट जाएगी।
0: ओके अच्छा डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए अर्थिंग अप जिसको हम लोग मिट्टी चढ़ाना भी कहते हैं।
0: हाँ जी, हाँ।
1: जब पौधे जो है हमारे बढ़वार की ओर अग्रसर होते हैं, इसमें कई सारी हमको जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि हम अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। तो जब हमारा बरसात या वर्षा ऋतु आने से पहले अंतिम जुताई होने के बाद हम इसमें जो है अर्थिंग अप की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसमें मिट्टी का जो है, मिट्टी जो होती है बीज की क्यारियों के दोनों लाइनों के बीच की जो खाली जगह होती है, वहां पे निराई गुड़ाई करके, और जो इसकी मिट्टी होती है वो भुरभुरी किस्म की करके उसको चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है टिलर्स जिनको हम लोग कहते हैं वो ज्यादा निकलते हैं, और मिट्टी चढ़ने से हमारा रूट एरिया मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसल गिरती नहीं है, गिरने से बच जाती है। और यदि हमारी फसल गिर जाती है, ऐसा नहीं अगर हम करेंगे और हमारी फसल गिर जाती है तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, आप लगातार तमाम जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं, इसी बीच मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गर्मियों के मौसम में संतुलित उर्वरक देना बहुत आवश्यक है क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए संतुलित जैसे हम लोग भी भोजन की थाली जो हम लोग लेते हैं, तो उसमें भी हमको दाल चावल और रोटी सब्जी और सलाद अचार इत्यादि तरीके के हम लोग संतुलित चीजें खाएं। जितना ही संतुलित हम लोग रहेंगे उतना ही हमारी लाइफ भी संतुलित रहेगी। इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होता है।

0: अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो उसका समुचित उपचार करें। रोग ग्रसित पौधों को तुरंत हटाएं। कृषि विभाग की सलाह के अनुसार दवा का अवश्य प्रयोग करें।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्या किसान भाई ट्रेस मल्चिंग अपना सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल। देखिए, ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जिसे जो किसान भाई जानते सब हैं, जैसे पेड़ी गन्ना होता है तो उसमें क्या होता है, गन्ने की सूखी पत्तियां होती हैं, तो उनको अमूमता लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने को उसको आसान समझते हैं, लेकिन ये हमारे लिए दुष्प्रभावित होता है। गन्ना पत्ती को अगर जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित भी होता है और जो है हमको जो है कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव आग की चपेट में आके नष्ट हो जाते हैं। हमारी मिट्टी की यानी कि खेत की ऊपरी सतह जो होती है आग के संपर्क में आके जो है कठोर हो जाती है। धीरे धीरे अगर हम नियमित ऐसा करते रहेंगे तो हमारी एक दिन भूमि बंजर हो सकती है, तो इसलिए हमको ट्रेस मल्चिंग अपनाना चाहिए। ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे गन्ने की सूखी पत्तियों को खेत में बिछाने से मिट्टी में जो है नमी बनी रहती है, हमको ज्यादा अंतराल पे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर ट्रेस मल्चिंग नहीं करेंगे तो हमको जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे हमारे पृथ्वी में और हमारे जो है खेत की ऊपरी सतह पे पड़ेंगी, तो उसमें जल हानि ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, ट्रेस मल्चिंग अपनाएंगे तो हमारी सूखी पत्तियां जो है उस डायरेक्ट सनलाइट को रोक लेंगी, जिससे क्या होगा कि मिट्टी की नमी हमारी संरक्षित रहेगी। इससे क्या होगा कि अगर पलवार या जैसे कह सकते हैं ट्रेस मल्चिंग ऊपर पड़ी हुई है तो उसमें नीचे की तरफ से अंकुरित होने वाले खरपतवार भी कम से कम आएंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि कम खरपतवार भी जो है हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि खरपतवार अगर होंगे तो वो भी सूक्ष्म जीव अवशोषित करेंगे, जल भी अवशोषित करेंगे और हमारी फसल के बीच में कंपटीशन भी क्रिएट करेंगे। तो इसलिए जो ट्रेस मल्चिंग जो है, अगर संभवता जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ी में, उसको करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से आपने विस्तार से इस पे चर्चा करी। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, यही अच्छी पैदावार के लिए उन्नति प्रजातियां भी महत्वपूर्ण है क्या?
0: जी बिल्कुल, अहम भूमिका रहती है उन्नतशील प्रजातियों का, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ऐसी कहावत हमारे गांव देहात में चलती है। किसान भाई सभी लोग जानते हैं, प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। चीनी मिलें क्या करती हैं, जब चीनी मिल प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होता है, तो वो यही कहती हैं कि जो भी प्रजातियां हैं जो प्रमाणित हैं या अनुशंसित हैं, उन्हीं को ही आप लोग सप्लाई के लिए चीनी मिल में आपूर्ति करें। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी रिजेक्ट वैरायटी को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उनको तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आपूर्ति का समय आता है तब उनको दिक्कत होती है। तो हमारी अपील है समस्त किसान भाइयों से कि अपना जो है गन्ना क्षेत्र जो है वो प्रमाणित और अनुसूचित प्रजातियों का ही चयन करके बोएं, रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें, इससे उत्पादन और चीनी प्रतिशत दोनों ही वृद्धि होगी और दोनों को ही लाभ होगा, चाहे चीनी मिल हो चाहे किसान भाई हो, दोनों लाभकारी होंगे तभी ये जो है चल पाएगा। अगर किसान को लाभ होगा और चीनी मिल घाटे में चली गई तो वो ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो आप ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिनमें शर्करा प्रतिशत यानी कि जिसमें शुगर परसेंटेज भी हो और पैदावार भी अच्छी हो, तो दोनों के ही कोलेबोरेशन से ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। तो हमारी अपील है कि प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही किसान चयन करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जो आप देना चाहें।
0: जी बिल्कुल, आइए कुछ हम महत्वपूर्ण सुझावों जानते हैं, समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे खेत में जल भराव बिल्कुल ही ना होने दें, जैसे कि हमारे आज के चर्चा के विषय में ही लिखा हुआ है कि हमारा जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, यानी कि हमारी जो समर सीजन चल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर है, धूप की किरणें बहुत तेजी से मतलब हमारे शरीर को हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस स्थिति में अगर हम जल भराव अपने खेत में कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जल भी गर्म होगा और गर्म जल में अगर हमारा पौधा रहेगा तो स्ट्रेस में चला जाएगा और वो अपनी बढ़वार को खो देगा, यानी कि धीरे धीरे उसकी बढ़वार कम होती जाएगी। जब आवश्यक हो तभी जल आपूर्ति करें, यानी कि तभी उसमें करें। अब व्यर्थ में जल भराव ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश ना करें, जल भराव हमारे लिए और हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक है। दूसरा है, समय पर सिंचाई करें, जब आवश्यक हो तभी सिंचाई करें। संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, रोग और कीट पर नजर बनाए।

0: रखें, क्योंकि आपने अगर उसका निदान कर लिया और पड़ोस वाले खेत से उड़ करके आपके यहाँ भी आ सकते हैं, तो इसलिए रोग और कीट का समय पर जो है उपचार जरूरी होता है, तो इसलिए उस पे नजर बनाए रखें। अगला हमारा है, कह सकते हैं कि गन्ना जो पत्तियां होती हैं उनको ना जलाएं। जैसे हमने पिछले अभी अपने प्रश्न आपके प्रश्न में जो है हमने बताया था,
1: जिक्र किया था
0: कि गन्ने की पत्तियां जो होती हैं उनको जलाया ना जाए। उनको आप मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए कई सारी मशीनें आ गई हैं, मल्चर वगैरह आते हैं, उनको पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आपके खेत में बिखेर देता है, जिससे वो आसानी से कह सकते हैं डिकम्पोज हो जाती हैं। तो गन्ने की पत्तियों को प्रयास करें कि ना जलाएं। अगर आपको नहीं रखना है तो आप वो कंपोस्ट पिट बना करके उसमें आप डाल सकते हैं, जिसकी आप खाद बना करके फिर से अपने फसल में यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है एक महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि कृषि वैज्ञानिकों की जो है सलाह लेते रहें। जो भी हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, आपके यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी गण हैं, या समिति के जो गन्ना पर्यवेक्षक गण हैं, उन लोगों से संपर्क में बनाए रहें और उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस महत्वपूर्ण सेशन में, इस श्रृंखला में आपने तमाम जानकारियां दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देंगे, कोई एक प्रेरणादायक मैसेज जो आप देना चाहें?
0: जी देखिए, अभी जैसे कि हमारे शीर्षक में ही है कि ग्रीष्म ऋतु, तो सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। गन्ने की सूखी पत्तियां जो है नहीं जलाएं, मल्चिंग जो है अपनाएं। मल्चिंग नहीं आप कर सकते हैं तो उसको कंपोस्ट पिट में उसको आप डिकम्पोज करके अपनी पत्तियों से खाद बनाएं, जिससे आपको उर्वरक में या फर्टिलाइजर में आपको अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ मेरे पास सवाल भी हैं हमारे किसान भाइयों के, अगर आप चाहें तो उस पे भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: जी। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि मतलब एक बहुत ही अच्छे श्रोता ने हमें भेजा है, किसान भाई ने, कि गर्मी में गन्ने की सिंचाई कितने दिनों तक और कितने अंतराल पर हमें करनी चाहिए?
0: जी जैसे कि अभी हमने पीछे बता दिया है कि गन्ना होता है तो उसमें जितनी फसलें होती हैं, सबसे ज्यादा जल मांग अगर किसी फसल की है तो वो गन्ने की है, क्योंकि ये पूरी वार्षिक रहती है, पूरे वर्ष चलती है, इसमें कई सारी सिंचाइयां करनी पड़ती हैं। अमुनता कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है हमारा, तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा यानी कि तापमान ज्यादा होने के कारण जल मांग बढ़ती है। जैसे ही हम जल मांग आती है तो वो कम दिनों के अंतराल पे ही हमको सिंचाई करनी पड़ती है, तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर अमूनता इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
1: जी एक और किसान भाई का प्रश्न आया था कि क्या गन्ने की सूखी पत्तियां हमें जलानी चाहिए?
0: जी नहीं, अब ये सूखी पत्तियां हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं, इनको हम मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं, इनका हम जो है जैसे अभी कह सकते हैं कि डिकम्पोज करके हम लोग इसका जो है खाद बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो रोलर एक मशीन आती है उसमें रोल बना करके इनको हम लोग बेच करके अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक श्रोता और है हमारे जिन्होंने हमें प्रश्न किया है, डॉक्टर साहब की सर्वेक्षण में गलती होने पर क्या करें?
0: देखिए अगर सर्वेक्षण जैसे कि अगर गन्ना सर्वेक्षण हुआ है, गन्ने के सर्वेक्षण के समय आप जो है अपनी स्लिप अवश्य लें। स्लिप में आप कोई भी गलती अगर पाते हैं तो तुरंत ही संबंधित कार्यालय या अधिकारी से संपर्क करें और उसको संशोधन करने के लिए आप अपील करें।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला, हमारे श्रोताओं को तमाम जानकारियां दी, पूरे विस्तार से आपने चर्चा करी, तो ये एक खास बातचीत खेती किसानी के माध्यम से आप सुन रहे थे, आप एक खास बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर विनय जी के साथ, और आज हमने तमाम विषयों पर चर्चा करी, जैसे हमने गन्ना सर्वेक्षण का महत्व जाना, किसानों की जिम्मेदारी पर हमने बात करी, गर्मियों में गन्ने की वैज्ञानिक देखभाल पर हमने चर्चा करी, सिंचाई ये क्या था सर, उर्वरक ओके, हमने श्रोताओं आज हमने चर्चा करी, साथ ही साथ सिंचाई, उर्वरक एवं कीट प्रतिबंधन के ऊपर हमने जो है तमाम चर्चा करी। और अभी मैं डॉक्टर साहब आपसे जाते जाते ये और पूछना चाहूंगा कि आप अगर कुछ और आपको लगता है कि किसान भाइयों को आपने बताना चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते?
0: देखिए ये जो जानकारी जो भी आपको दी गई है, इसमें हमारा जो अभी जो मौसम चल रहा है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक रहन सहन के लिए है, चाहे हम हों, पशु पक्षी हों, हमारे जानवर हों या हमारी फसलें हों, क्योंकि ज्यादा तापमान में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता।
1: तो
0: दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, जब तक बरसात नहीं होगी ऐसा ही समय रहेगा। तो इसके लिए हमको अपना और अपनी फसलों का, अपने जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि समय पर जैसे फसलें हैं तो उनको समय पर पानी देना चाहिए। कोई कीट, कोई रोग या कोई अन्य व्याधि हमारे खेत में अगर हमको प्रदर्शित हो रही है तो उसका अतिशीघ्र हमको जो है उपचार करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया। और श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको ये जानकारियाँ बहुत उपयोगी लगी होंगी और आपके लिए सिद्ध भी होंगी। तो यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन से संपर्क कर सकते, हमारे व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। 9837896896 ये हमारे स्टूडियो का नंबर है जो आपके लिए अवेलेबल है। आप इस पे हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते, हम जरूर डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। और मैं हूं आपका साथी आनंद, और अब आपसे लेता हूं अलविदा। अब आपको बोलूंगा टाटा बाय बाय। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। बहुत बढ़िया।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: और बहुत ही अच्छा लगता है मैम। अच्छा, एक विमेन्स के लिए सही खान पान सही न्यूट्रिशन का होना कितना जरूरी है? अगर मैं खुद से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक फीमेल के लिए उसकी उसका डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लाइफस्टाइल को बदलने में?
1: सी यार, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये अभी हो रही है, ठीक है। पुराने जमाने में आप अपनी दादी नानी से बात करो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो बोलते थे, मतलब माई दादी यूज्ड टू से कि हमें तो हमारे हस्बैंड छूते थे और बच्चे हो जाते थे। पता नहीं आजकल की लेडीज का क्या हाल होने लगा है, ये तो इनफर्टिलिटी ही ट्रीट कराती रहती है, IVF करा रही है। प्रॉब्लम क्या थी? सी प्रॉब्लम थी उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, प्लस वो इतने एक्सपोज नहीं थे केमिकल्स के लिए, बैलेंस डाइट ले रहे थे, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज इन अ सेंस हमारे सारे काम जो होते थे मैनुअल होते थे, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेते थे।
0: और
1: जब से ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक आ गया है, बच्चे रात भर 2-2 बजे तक ही मोबाइल ही देखते रहते हैं। दिस इज अ रेडिएशन, है ना? आप रेडिएशन एक्सपोज कर रहे हो, प्लस उनका खान पान बदल गया है, हर चीज स्विगी हो गई है, हर चीज स्विगी हो गई है, तो आप घर बैठे ही सब कुछ मंगा रहे हो, ठीक है। बाहर का खाना ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आएगा, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा, उसके बाद जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है,
0: करेक्ट,
1: ठीक है। हाँ, सब चीज ऑनलाइन हो गई है, सब चीज कैब्स पे आने लगी है, तो इवन पार्क में भी यू विल गेट अ वेरी लेस गैदरिंग,
0: करेक्ट।
1: तो दिस ऑल लीड टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये PCOS, PMS कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इट इज ओनली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कि आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा। आप कार लेते हो, ठीक है, कार लेते हो तो कार की सर्विस कराना जरूरी है, वंस इन अ ईयर उसकी सर्विस होना जरूरी है। आप नहीं कराओगे तो 2-3 साल बाद उसका माइलेज जीरो है। ऐसी आपकी बॉडी का हाल है, अगर आप उसको नहीं सर्विस करेंगे, उसको नहीं नेचुरल चीजें देंगे, तो ऑब्वियसली ये बॉडी नहीं रिएक्ट करेंगे। एंड आई एम गेटिंग PCOD के पेशेंट, इतनी जिद्दी PCOD कि हम सब कुछ कर चुके हैं, बहुत सारे साइकिल्स ऑफ हार्मोन दे चुके हैं, बट बेसलाइन बॉडी आने को तैयार।
0: बिल्कुल मैम, यू नो मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप अभी बता रहे हो ना, ये चीजें मुझे लगता है हमें बताने की जरूरत ही नहीं वैसे।
1: Exactly.
0: लोगों को खुद ही इन चीजों को समझना चाहिए, बट आजकल का लाइफस्टाइल अलग ही हो गया है ना, बात ये भी है। अच्छा मैम, एक चीज और है, आजकल का स्ट्रेस, सोशल मीडिया की तो हमने बात ही कर ली, आजकल का लाइफस्टाइल स्ट्रेस और हमारा खान पान, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रीजन कहीं ना कहीं बनी रहा है।
1: Exactly.
0: जैसे आपने बताया कि लोगों को आजकल हर चीज ऑनलाइन करानी है, शॉपिंग ऑनलाइन करनी है, फूड ऑनलाइन करना है, हर चीज की फैसिलिटी उन्हें घर बैठे चाहिए।
1: Exactly.
0: तो इन सब चीजों की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना। बिल्कुल, आपने ये चीज पे अभी जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज, हमारा भी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी को प्लीज अब कीजिए, अगर जितना हो सकता है ना आप प्रैक्टिकली बाहर निकलिए। छोटी छोटी चीजें जो हम अवॉइड कर देते हैं कि नहीं यार शाम को बाजार निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, आज ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ये सब चीजें जो हमें उस तरफ लेके जा रही है जिस तरह हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, आज हम जहाँ पहुंच गए कहीं ना कहीं
1: तो वर्स ही होंगी।
0: एब्सोल्युटली, कहीं ना कहीं
1: इंटरवेंट, राइट,
0: करेक्ट करेक्ट। अच्छा मैम, जो लोग अभी अगर मैं बात करूं उन महिलाओं की जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, जो प्रेगनेंसी से पहले कपल्स को किन किन बातों का और यू नो ध्यान रखना चाहिए, और कौन कौन से हेल्थ चेकअप है जो उनको डेफिनेटली दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए?
1: 5 मोटी बातें जो ध्यान रखनी है। एक, प्री प्रेगनेंसी आप अपना चेकअप कराएं, बेसलाइन, ठीक है। दूसरी बात, फोलिक एसिड स्टार्ट करें। जब भी आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड है उसके कम से कम 3 महीने पहले हम ये कहते हैं कि आप फोलिक एसिड काम करना शुरू करें। तीसरी चीज, थायराइड, शुगर, ये सब आप ब्लड टेस्ट कराएं। चौथी चीज, हेल्दी वेट मेंटेन करें। और पांचवी चीज, यदि आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल इंटेक है तो ये बिल्कुल बंद हो।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैम, सोशल मीडिया का थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, स्पेशली लेडीज बहुत ज्यादा ये चीज को मैंने देखा फॉलो करती है। तो मतलब कोई भी आ गया, किसी ने भी आके ज्ञान दे दिया, आप ये चीज करो, आप ये रेमेडी करो, ये करो, और लोग वो करते भी हैं।
1: Exactly.
0: तो क्या ये विमेन्स को करना चाहिए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो घर में महिला है, उनको ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया देख के फॉलो करना चाहिए?
1: नहीं, एक्चुअली इससे ही बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट आ रहा है। मैं आपको बताऊं, कल मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको की सीजर की हिस्ट्री थी, सीजर डिसऑर्डर है, दौरे पड़ते थे,
0: ठीक है, ठीक है।
1: पूरी टर्म प्रेगनेंसी थी, बट उसने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, कोई इंस्टाग्राम की रील देखी, उसमें कोई दवाई जो थी वो खा रही थी। अब वो OPD में रूटीन चेकअप के लिए आई थी और रूटीन चेकअप के लिए बाहर बैठी थी और उतने में उसको सीजर्स आने लगे, एंड शी स्टार्टेड ड्रूलिंग फ्रॉम माउथ, ब्लड आने लगा और वो आने लगा, तो उस वक्त और प्लस बच्चे की धड़कन जाने लगी, तो हमें एकदम इंटरवीन करके उसको सिजेरियन में लैंड करना पड़ा। हालांकि वो सेकंड ग्रेविडा थी, तो आई वुड नेवर गो कि दूसरा बच्चा पहला बच्चा नॉर्मल है, तो आई वुड हैव ट्राइड कि हमें नॉर्मल कराऊंगी, बट मेरे सामने उस वक्त इट वॉज एन इमरजेंसी, डाइंग इमरजेंसी, कि मुझे बच्चा और माँ दोनों बचाने थे। तो उसके लिए हमने जल्दी से OT शिफ्ट किया गया, पेशेंट इंट्यूबेट हुई, 2 दिन ICU में रही, तो दिस कुड ऑल बी प्रिवेंटेड कि अगर आप एक न्यूरोफिजिशियन का रेफरेंस कर लेते, टाइमली हम इंटरवीन करते, प्लान करके डिलीवरी कराते. सो दिस इज ऑल डिवास्टेटिंग इफेक्ट. अब उसमें सोशल मीडिया में हर कोई डॉक्टर, आप पहले उसकी डिग्री तो एटलीस्ट टैली करें.
0: करें,
1: कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट लिख रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट इज अ सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट. प्लस सोशल मीडिया पे कभी दवाइयां फॉलो नहीं करनी चाहिए.
0: करेक्ट,
1: कैन फॉलो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. या फिर सोशल मीडिया इज ओनली, आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई ओनली मेक कि ये पेशेंट के सीरियसनेस है, इसमें डॉक्टर को दिखाएं. इट इज नॉट लाइक कि आप दवाई खाने लगोगे उस सोशल मीडिया से ना.
0: करेक्ट,
1: सर्टिफाइड डॉक्टर्स की एडवाइस ले, क्रॉस चेक करें, डाउट्स हो तो डॉक्टर से पूछे. जितनी भी बात है, आप 10 मिनट 15 मिनट आप उस ओपीडी में बैठे हैं तो यू कैन आस्क एवरीथिंग यू वांट. तो उससे ये जो अचानक से लास्ट में डायग्नोसिस बनती है ये नहीं बनेगी. तो सोशल मीडिया का प्लीज फायदा उठाएं. इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल. आई अपडेट कि थोड़ा सा पेशेंट को ये लगना चाहिए, पेशेंट फील कि हाँ भैया मैम घर का पार्ट है, कल थोड़ा सा फनी रील्स, थोड़ा सा ये. सो इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल, नॉट कि हम उसमें ट्रीटमेंट. हमने 10 MBBS, PG, सो इट्स ऑल कंस्टिट्यूट 10 साल की मेहनत. हाउ कैन आई इंस्टाग्राम रील ऑफ 1 मिनट 30 सेकंड रिप्लेस दैट नॉलेज? एंड अब सुपर स्पेशलिटी हो रही है, पीपल आर डूइंग MCH. तो आप ये सोचो कि 13-14 साल की पढ़ाई इंस्टाग्राम के रील से अगर हो जाती है. आई हैव सीन पीपल इनफर्टिलिटी वाले, वो किसी ने बता दिया लिट्रोस से है, लिट्रोस खा रही है, 5 महीने के बाद मोटी सिस्ट है, अब वो ओवरी भी खराब हो गई है और हमें सिस्ट भी निकालनी पड़ी है. वी हैव टू ऑपरेट हर, बिकॉज हर चीज के साइड इफेक्ट है. पीपल आर ओनली टेलिंग इफेक्ट, देयर नॉट साइड. तो प्लीज वाइसली चूज करें, अपने डॉक्टर से बात करें. एक कंसल्टेशन महीने में एक बार का कंसल्टेशन होता है. जो भी है आप अपने पेपर पे लिस्ट बना लो. आई ऑल्सो टेल माई पेशेंट की टू डू लिस्ट आप अपने पेपर पे लेके आओ, जितने क्वेश्चन से मुझसे पूछो कि मैम ये करना है या नहीं करना.
0: नहीं करना.
1: और प्लीज सर्टिफाइड डॉक्टर्स को ही फॉलो करें. यू विल गेट द इंस्टाग्राम प्रोफाइल कि कौन सर्टिफाइड है कौन नॉन सर्टिफाइड.
0: एब्सोल्युटली. और सोशल मीडिया पे कुछ रील्स और व्यूज के लिए, कुछ लाइक के लिए लोग कुछ भी डाल रहे हैं और हम कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट अ गुड. दूसरी बात, हर मेडिसिन का हर एक कह सकते हैं जो इंसान है उसके साथ कनेक्शन नहीं बन सकता है. मैम हर मेडिसिन हर इंसान के लिए नहीं बनी होती है.
1: वी इंड्यूस विद लिट्रोसोल, वी इंड्यूस विद क्लोमिफेन, वी इंड्यूस विद HMG इंजेक्शन.
0: करेक्ट,
1: वी डिसाइड.
0: एब्सोल्युटली.
1: और शुगर के लिए 1000 दवाएं मार्केट में, वी डिसाइड
0: 100%.
1: एंड दैट इज ऑल्सो की वी, ऐसा नहीं है कि हमने एक दवाई लिख दी तो वही 100% दवाई होगी. नो, वी हैव टू चेंज. अगले पेशेंट आया, उसने कुछ कंप्लेन करी तो वी हैव टू चेंज दैट दवाई. अगर इतने सही ChatGPT और ये सभी बता देते तो फिर कोई फायदा ही नहीं था.
0: Got it.
1: एक पेशेंट यूट्रस, वो बेबी अनोमलस बेबी, पूरा अनोमलस जिसकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, उसने ChatGPT पे डाला. ठीक है, वो मेरे पास 26 वीक पे आया. उसका जो लेवल 2 स्कैन था 20-22 हफ्ते का, उस आगे एनोमली जो कि सर्वाइवल मोड पे नहीं था वो बच्चा, तो हमें उसका अबॉर्शन कराना चाहिए था. बट उन्होंने ChatGPT पे डाला. ChatGPT सेड कि कुछ नहीं है कि कंटिन्यू करने का, उन्होंने कंटिन्यू किया. शी गेम एट 26 वीक. अल्टीमेटली बेबी की तो प्रोग्नोसिस नहीं थी, वी हैड टू मतलब अबॉर्ट दैट बेबी. बट अगर वो 20-22 हफ्ते पे होता तो मेडिकल लीगल चीजें भी कम होती.
0: Absolutely.
1: और प्लस इजी होता. अब जितना बेबी बढ़ जाएगा, प्रोग्नोसिस तो उसकी है ही नहीं. अगर मान लीजिए आप टर्म तक भी पहुंचा दीजिए, उसको पूरे टाइम पे डिलीवर कराइए, आप बच्चा आपके हाथ ही नहीं लगना है. तो फिर ऐसी चीजें ChatGPT से नहीं पूछी जाती, ऐसी चीजें डॉक्टर से पूछी जाती हैं.
0: करेक्ट. तो कहीं ना कहीं हमारा इसका मोटिव भी यही है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं या आपके घर में कोई ये चीज कर रहा है तो प्लीज ये मत कीजिए, डोंट डू दिस. एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बहुत जरूरी है मैम. क्योंकि जब तक आप सही लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक आपको सही एडवाइस नहीं मिलेगी.
1: सी, और एक गायनी का ना ऐसा नहीं होता कि आप गए आपको गॉलब्लैडर स्टोन निकलवाना है, काम खत्म हो गया. गायनी से आपको 9 महीने का एक ताल्लुकात बनाना पड़ता है, ताकि जब आपकी डिलीवरी होगी तो शी सी योर होल सोल, क्योंकि उस चैम्बर में वही है. अगर आप फील कनेक्टेड नहीं करते हैं, लाइक आई वाज देयर इन एन हॉस्पिटल, माय हस्बैंड गॉट शिफ्टेड टू अनदर प्लेस, आई डिडंट चेंज द प्लेस, आई लेट हिम गो कि तुम जाओ, आई विल नॉट, क्योंकि मुझे वाइब्स आ रही थी. आई कुड फील दैट गायनी एज माई ओन. तो मैं भी यही चाहती हूँ कि पेशेंट्स, आप जिसको भी चूज करें उसको रिलीजियसली फॉलो करें और उससे डिलीवरी के टाइम पे कनेक्टेड रहें, सो दैट देयर इज अ स्मूथ डिलीवरी इन पोस्टपार्टम फेज.
0: एब्सोल्युटली. और आजकल तो सोशल मीडिया है अच्छी चीजों के लिए. आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो देंगे बैक टू बैक. बट हमारी भी आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ChatGPT, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इन सब पे प्लीज अपनी हेल्थ को लेकर तो बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें. मैम थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने इतना टाइम हमारे साथ शेयर किया, हमारे लिसनर्स को तमाम इन्फॉर्मेशन दी. आई एम श्योर जितने भी लोग ये सुन रहे हैं सभी को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिला होगा और जानने को मिला होगा. आई एम थैंक्सफुल टू यू इतना टाइम आपने निकाला बिकॉज यू हैव ऑल्सो वेरी बिजी. शी इज नॉट फ्री भाई, जब भी जाओ मैम बिजी इतना ऑक्यूपाइड रहता है आपका. बट अभी भी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कल का बना फिर उसके बाद आज का बना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैम. आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत बिजी रहता है आई नो, एंड फिर भी आप इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे आए, आपके लिए दिल से थैंक यू मेरी ओर से और एफएम मुरादाबाद की ओर से भी. जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या संदेश आप देंगी जो लेडीज या जो जेंट्स आपको सुन रहे हैं?
1: यार आई वुड से भैया मैं लेडीज की डॉक्टर हूँ तो एडवाइस तो सिर्फ लेडीज को ही देनी है.
0: ठीक है.
1: लेकिन जेंट्स को भी एक एडवाइस देनी है कि देखो लेडीज आप इग्नोर मत करो अपने आप को, अपनी बॉडी को इग्नोर मत करो. सिम्टम देगी वो सिग्नल देगी और उसको आप एक्नॉलेज करो और उसके लिए ट्रीटमेंट कराओ. और जेंट्स को सिर्फ यही संदेश है कि अगर आपसे लेडीज कुछ कह रही है तो डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड. ये नहीं कि वो आपका सब्स्टिट्यूट है, गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों चलेंगे तब गाड़ी अच्छी चलेगी. सो अगर वो कुछ कह रही है तो प्लीज, बहुत सारी फैमिलीज मैंने ऐसे देखा जहां मेल्स ही होते हैं उसे अरे अरे अरे ठीक है सबको होता है क्या हो गया ब्लीडिंग ही तो हो रही है सबको होती है मेरी मम्मी को भी होती थी. नो प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ हर, वो आपके घर की अन्नपूर्णा है, उसके बिना घर नहीं है. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपसे वो कुछ कह रही है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें. उसको भी लगना चाहिए शी इज इम्पोर्टेंट, तो हर किसी का ध्यान वो रख पाएगी, उसको और भी अच्छा लगेगा. आई हैव सीन पेशेंट्स विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई हैव सीन लेडीज जिनकी शादियां हो गई होती है इनफर्टिलिटी विद डिप्रेशन. तो मेल्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि कोई भी प्रॉब्लम उसकी अलग नहीं है. यू बोथ आर गाड़ी के दो पहिए, तो दोनों को एक साथ ही चलना होगा, उसको समझना होगा और उसकी बात आपको सुननी होगी. एंड फीमेल्स प्लीज डोंट हेजिटेट, सामने आइए और अपनी प्रॉब्लम को प्लीज बताइए.
0: थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल मैसेज, सच अमेजिंग मैसेज, एंड इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू मैम. मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए एंड आपने तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करी, एंड आई एम श्योर आप आगे भी आते रहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए.
1: या
0: सो गाइज प्लीज आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6. प्रोग्राम था हेलो डॉक्टर और आज एशियन हॉस्पिटल से डॉक्टर राशिका गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में थे. मैम से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा. आपको कैसे लगा ये प्रोग्राम, आपको कैसे लगी ये कॉन्वर्सेशन? डू शेयर योर फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम पे आप आके मुझे शेयर कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, और हमारा एफएम का ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से आपको मिल जाएगा. सो प्लीज आइए फॉलो कीजिए. अच्छा मैम आपका इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया पे इतनी देर से बातें कर रही हैं, सो प्लीज डू शेयर योर सोशल मीडिया.
1: आई डोंट हैव मेनी फॉलोअर्स, ऐसा नहीं है, बट आई फील रिलैक्स्ड कि मेरे दिन में जो एक्टिविटी हुई है आई लाइक बी शेयरिंग विद पीपल, नॉट टू मिसगाइड एनीबॉडी, बट ये दिखाने के लिए कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उस 15 मिनट में आप मुझसे नहीं पूछ पाते हो. लाइक कल ही मुझसे कोई पेशेंट पूछ रहा था कि मैम आम खाना होता है प्रेगनेंसी में, सो आई पोस्ट स्मॉल रील्स बस इसीलिए कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाए, आपको भी अच्छा लगना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हाँ डॉक्टर राशि का कोई है. सो इट इज ओनली टू मेक अ प्रेजेंस इन योर होम, ठीक है. और बाकी
0: एक सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का भी एक जरिया तो है ना मैम सोशल मीडिया पे, आप जैसे लोग ही हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं. हाँ, मेंटोर, ये चैट जीपीटी और इंस्टाग्राम से तो बेटर है कि आप सही इंसान को फॉलो करेंगे तो वो डायरेक्शन तो देगा.
1: देयर आर मेनी मिसगाइड्स ऑन सोशल मीडिया ना, तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये लगेगा कि वो सही बोल रहे हैं क्योंकि हम ही नहीं रहे.
0: एब्सोल्युटली,
1: तो पीपल विल थिंक. तो अब कोई भी ए बी सी डी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, so it takes a lot of मेहनत. प्लस हम भी gynecologist with degree नहीं बने, with our experience lot of things हम कभी भी फंस जाते हैं. we ask our seniors, we ask surgeon की हमें वो लेनी पड़ती है. सो nobody is complete. इट इज ऑलवेज, जैसे हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आई एडमिटेड अ पेशेंट जिसको एक्यूट ब्रेंकेटाइटिस थी, तो एक गैस्ट्रो इन्वॉल्व हुआ उसमें, उसको सीजर डिसऑर्डर था, तो उसमें एक न्यूरो फिजन इन्वॉल्व हुआ, प्लस एक गायनी थी और उसको एक AI में चली, तो एक यूरो सर्जन इन्वॉल्व हो गया. तो दिस कैन नॉट बी, एक कोई ले मैन ये सब चीजें नहीं संभाल सकता है. तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप जो है डॉक्टर्स से ही कनेक्ट करें, उनकी बातों को. आजकल लोगों का एक्चुअली विश्वास कम हो गया है, ठीक है. विश्वास कम भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो ए बी सी डी बीच वाले लोग है ना, दीज पीपल डू रैंडम थिंग्स, बट वो ग्रॉस ये आ जाता है कि डॉक्टर्स ने किया बिकॉज दे आर अल्टीमेटली डॉक्टर्स.
0: करेक्ट, राइट. अच्छा मैम जो लेडीज आपको सुन रही है कोई आपसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहती हूँ या आपको विजिट करना चाहती हूँ, तो कहाँ आप उनको मिल सकते हैं?
1: आई सिट एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल,
0: ठीक है,
1: 10 to 4 एवरी डे,
0: ओके,
1: ठीक है. संडेज आर ऑफ डेज,
0: ओके,
1: तो यू कैन कम
0: मंडे टू सैटरडे, मतलब वो आ सकते हैं.
1: एक्जैक्टली, मंडे टू सैटरडे आ सकते हैं. सो वी हैव अ वेरी रीजनेबल प्राइस फॉर नॉर्मल डिलीवरीज, फॉर सिजेरियन सेक्शंस विद एक्सपर्ट केयर, तो एनी बडी कैन कम एनी टाइम.
0: आपका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आपने बताया?
1: छोटा
0: सा अकाउंट बड़ा अकाउंट तभी होगा जब हम और आप फॉलो करेंगे, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन को हमें आगे डिलीवर भी करना चाहिए। वो कहते हैं ना, ईच वन टू कीच वन, मैं हमेशा कहता हूँ आप भी फॉलो करें औरों को भी कराएं, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक डिलीवर होना बहुत जरूरी। सो अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, वेरी वेरी सून फिर मिलेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: सम्मानित किया जाएगा।
5: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
8: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
6: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
6: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा

0: अध्यक्ष सीपी राधा कृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओ एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स है और सभी पे बीएलओ अपॉइंटेड है, तो सभी बीएलओ को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्थान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के दो हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नवजौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका

0: एक शो ने सहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंत समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरए 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने दिन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे ऐसे गीतकार की जिनकी कलम ने कई सुंदर गीत लिखे। 1 अक्टूबर 1932

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: आपने ट्यूनिंग किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और वैसे तो इस प्रोग्राम में सच बता रहा हूँ, मेरी एंट्री होना बिल्कुल पूरी तरह बैन है, निषेध है मेरा आना, लेकिन मैं जबरदस्ती घुस गया हूँ। आज प्रोग्राम का नाम है महिला मंच, इसमें खुशी और रीना आपको मिलती है। लेकिन आज मुझे बहुत सारी महिलाओं ने कहा बेटा आप चलो हमारे साथ, आज तुम्हें नई नई जानकारियां देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जितने भी पुरुष लोग सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है महिला मंच है तो यहाँ पुरुषों का काम नहीं है, भाई पुरुष और महिला से ही एक समाज बनता है। तो जितनी इंपॉर्टेंट पुरुष है उतनी इंपॉर्टेंट महिला भी है, और जितनी महिलाएं हैं उतनी पुरुष है। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी होस्ट है रीना। हाय रीना, वेलकम। कैसा लग रहा है महिला मंच पे पुरुष मंच को खड़ा करके?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बोला भी था तुम्हें कि भाई आ जाओ,
0: हाँ
1: महिला मंच में तुम भी शामिल हो जाओ, फाइनली तुम आज हो गए।
0: गाइस मैं महिला मंच में शामिल हुआ, महिला मंडली में शामिल नहीं हुआ, इफ यू डोंट माइंड। और आज मजे की बात है कि महिला मंच में एक बहुत ही खूबसूरत महिला को हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की महिला ना किसी से कम नहीं है, क्यों रीना? आज की लड़कियां हो गई, महिलाएं होगी, जो घर में पहले हमें लगता था सिर्फ हमारी मम्मियां घर तक ही सीमित है, अब वो घर से रील बना बना के भी फेमस हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, स्टोरी लगा लगा के फेमस
1: है। के काम से लेकर ऑफिस तक हर
0: सब चीज मैनेज कर रही है हमारी मम्मियां। तो अब हमारी मम्मी सिर्फ होम मेकर नहीं बची है, और इसी बात पे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मम्मी को इन्वाइट किया है, मैं तो यही कहना चाहूंगा उनको। आज महिला मंच में हमारे साथ कुमकुम भी है। हेलो, हाउ आर यू?
2: हाउ आर यू आरजे आनंद?
0: मैं बहुत ही
2: कि मैं भी आती हूँ खुशी दी और रीना दी के साथ।
0: हाँ, महिला मंच मुझे, मैं महिला मंच में बहुत कम आता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। तो आपने पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो मैं बहुत भूखा हूँ खाने का, गाइस डोंट माइंड, अभी जाके खाना खाऊंगा। और जो हमारी गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं? वेलकम टू एफएम मुरादाबाद एंड दिस इज महिला मंच, ब्रांड न्यू शो, आपका स्वागत है।
3: मैं शैली सिंह मुरादाबाद से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके, और जब बात होती है महिलाओं की तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है।
0: अरे वाह क्या बात है, और बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है शैली जी एक महिला होने के नाते ही अपने आप में एक बहुत गर्व का मोमेंट होता है कि जब आप कुछ अच्छा करके आ रहे हो, कुछ बड़ा करके आ रहे हो, तो ये आपके लिए और भी बढ़िया होता है, क्यों रीना? जैसे कि आज जो शैली जी हमारे साथ मौजूद है वो सिर्फ शैली नहीं है, उनके काम भी बिल्कुल सराहनीय है, बहुत अच्छे अच्छे काम करके आई है वो, तभी आज स्टूडियो में आपके बीच में हमने उनको आमंत्रित किया है। थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारी महिलाओं को जो लोग सुन रहे हैं।
3: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ आरएसएम पब्लिक स्कूल छजलैट, मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, योगा मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, योगा जिम ये सारी चीजें।
0: तो कहना कि योगा में रुचि भी है आपकी, योगा टीचर भी आप बन रही हैं?
3: रुचि मदान, मैं उनके स्टूडेंट हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। रिसेंटली आई थी रुचि जी वैसे हमारे स्टूडियो में, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपने बताया प्रिंसिपल भी?
3: हाँ प्रिंसिपल आरएसएम पब्लिक स्कूल छजलैट।
0: ओके, छजलैट में आप वर्किंग है। मैम इतने सारा काम कैसे कर लेती हो आप?
3: मैं बस कहते ना महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं से आप नौ दुर्गों में जो पूजा करते हैं किसके लिए करते हैं? शक्ति के लिए करते हैं, और शक्ति क्या है? हम ही, धन भी हम है, विद्या भी हम है,
0: सही बात,
3: सब
0: है
3: कुछ हम।
0: मुझे लगता है अगर देखा जाए ना तो हमारे जो आसपास की चीजें हैं ना वो सब भगवान देवियों से जुड़ी है, धन की देवी लक्ष्मी है, ज्ञान की देवी सरस्वती जी है, शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, काली की देवी सर्वनाश करने वाली है,
1: अन्न की देवी अन्नपूर्णा है।
0: हाँ तो मतलब हर माँ गंगा जो जिसमें हम नहाते धोते हैं वो गंगा मैया है, वो भी गंगा माँ है, तो सारी नारियों से ही हमारा जो है सजा हुआ है पूरा संसार,
3: और जिसके माध्यम से हम आते हैं वो भी नारी।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि आज जो है नारियों के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है, और इस प्रोग्राम में हमने मैम को इनवाइट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, और मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, और इसके अलावा वो गाड़ियों में रील भी बनाती है बैठ के, वो बात तो बहुत अलग है क्योंकि वो भी उनको बहुत पसंद है, मुझे लगता है कहना चाहिए। वो इतनी एक्टिव है कि लोग गाड़ी चलाएं बट वो रील भी बना लेती है, वैसे ये बहुत रिस्की भी होता है, आप कैसे करती हो ये?
3: नहीं, अपने अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टैलेंटेड है, कि वो गाड़ी चलाने के साथ साथ आप बीच बीच में आपको एक्सप्रेशन भी देते जाएं।
0: वो तो आप जबरदस्ती उनको बीच में ऐड कर लेते हो कि आओ ना,
3: ये तो शक्ति है कि आप उसको उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि नहीं, कि आपकी तरफ नहीं, मेरे को पहले एक्सप्रेशन दो, बड़ी बाद में चलाओ।
0: क्या बात है, चलिए ये तो बात, ये बात की बातें, जोक सपाट है। अच्छा हम बात कर लेते हैं अब महिलाओं के बारे में, जैसे शैली जी आप बहुत सारा काम करती हैं, और ऐसे आपकी जैसी बहुत सारी तमाम महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो बस सोचती हैं कर नहीं पाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए एक कदम का आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो आपको कैसे आया ये, और जो लोग आपको सुन रहे हैं ताकि वो उनको भी ये चीज आएगी वो भी शुरुआत करें?
3: देखिए आजकल की अगर हम बात करते हैं कि महिला इतनी कमजोर है, तो आज की महिला तो नहीं है।
0: करेक्ट,
3: ये 90s के दौर की जब हमारी मम्मियाँ थी तब की बात है ये, कि उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता था।
0: करेक्ट,
3: अपने लिए एक साड़ी लाने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं इस फंक्शन में यही पुरानी वाली पहन लेती हूँ। आजकल की लेडीज सशक्त हो चुकी हैं, वो समझ चुकी हैं अपनी प्रायोरिटीज कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, वो सेल्फ डिपेंड भी है, हाउसवाइफ भी है और वर्किंग भी है। घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं, उन्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है। लेकिन जो पहले की हमारी मम्मी लोग होते थे उनके लिए उनका दायरा इतना सीमित होता था कि वो घर और बस बच्चे और उनका पति और ससुराल मायका, उनका दायरा बस यहीं तक था। वो अपनी जो फीलिंग्स होती थी ना वो भी घर में शेयर नहीं कर पाती थी, उनके लिए भी उनको कोई नहीं मिलता था कि वो अपनी फीलिंग्स भी किसी को कभी शेयर कर पाए।
0: करेक्ट, बिल्कुल। तो मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा, आज की नारी जो है किसी से कम नहीं है। क्यों रीना, ये बिल्कुल बात सही कह रही है मैम। लेकिन मुझे लगता है कि हर नारी करना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन आज का समय भी ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इन बातों को बहुत फॉलो करती हैं और उनके फैमिली में एक रिचुअल्स बना आया है कि भाई वो शादी के बाद कुछ नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे। मतलब ऐसा भी होता
1: है, अभी भी बहुत ऐसी फैमिली है।
3: हाँ, अभी भी मैं ये नहीं कह रही, अभी भी वो फैमिलीज ऐसी है, लेकिन उनको ऊपर ये प्रेशर है कि ये हमारे संस्कार है, इन्हें ही आपको आगे
0: मेंटेन
3: करना है। लेकिन संस्कारों को भी मेंटेन करने के साथ साथ भी आप अपने आपको ग्रो अप कर सकते हो,
0: करेक्ट,
3: कॉन्फिडेंट बन सकते हो, ये नहीं बताते हैं।
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाली जी, आप जो कर रही है ना, ये एक तो मोटिवेशन है ही और महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन भी दे रहा है ये चीज। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी तो स्ट्रांग बना रहा है ना,
3: फाइनेंशियल स्ट्रांग बना रहा है।
0: आने वाला टाइम देखिए आप कितना महंगा हो रहा है, आजकल कितनी सारी शॉर्टेज पड़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर। आपको बच्चों को भी अच्छे स्कूल देने हैं, अच्छी उनकी चीजों का भी ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना महिलाओं को भी।
3: बिल्कुल, और सबसे ज्यादा तो मैं पुरुषों का सहयोग चाहूंगी कि वो घर में रह करके उनसे जो भी बन पड़ता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एवरी टाइम आप घर में रह के उनका घर के कामों में सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उनको हेल्थ को लेकर के कि आप कुछ अपने लिए, पहले तो सबसे पहले हेल्थ है हमारी। आप अगर महिला अगर घर की स्वस्थ है तो वो सबका ध्यान रख पाएगी। अगर एक दिन आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या सिस्टर बीमार पड़ जाती है तो अस्त व्यस्त हो जाता है,
0: बिल्कुल सही कहा,
3: वो कहानी बिगड़ जाती है घर की। लेकिन सबसे पहला हमारा है कि उनको स्वस्थ रहने पे उनके टाइम से नाश्ता करें, टाइम से खाना खाएं, उनसे भी पूछें आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। ये केवल पत्नियों का ही नहीं बन रहा है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन भी कैसा रहा, तुमने आज क्या सोचा, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये चीज है।
0: तो मतलब दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है।
3: हाँ जी,
0: करेक्ट, बहुत अच्छा बोला आपने। और कुमकुम तुम क्या कहना चाहते हो?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी जैसा कि मैम ने अभी बताया, संस्कार और रीति रिवाज के साथ जो हस्बैंड कहते हैं ना कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, ये हमारी रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, आगे नहीं करना हमारी फीमेल्स को, उस नाम पे ना उसको रोक दिया जाता है।
0: करेक्ट,
2: लेकिन हमें ना उन चीजों को वहां तक सीमित नहीं रख के उस सबके साथ साथ अपनी फीमेल को, मतलब अपने पार्टनर को आगे बढ़ाना चाहिए। कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनके साथ उनको मेंटली हेल्थ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ इनका मेंटल हेल्थ भी अगर ठीक है ना तो वो हैप्पी रहेंगी, और जब वो हैप्पी रहेंगी तो उनका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा।
0: वो भी बात बिल्कुल सही कही है दोस्तों, बिल्कुल। देखिए एक्चुअली ना मुझे भी ऐसा लगता है कि लेडीज के साथ साथ ना हम पुरुषों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक हम चीजों को सपोर्टिव नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको पुश नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें अच्छे लेवल पे जा सकती है ना। जैसे आज ही मैं राजमा चावल बनाना सीख के आया हूँ, भाई कल मेरी शादी होगी तो मेरी बीबी को कुछ तो रिलैक्स मिलेगा भाई। अगर वो अपने घर चली जाएगी तो मुझे होटल का वेट नहीं करना पड़ेगा। शैली जी, रीना कई बार होते हैं ना, हमने खड़े खड़े जोमैटो ये वो जो भी हम करते हैं उसमें भी हमें गारंटी नहीं है कि कितना शुद्ध खाना मिलता है।
1: ये बात
3: तो ये तो एक बड़ी एक सबसे बड़ा मिथ लगता है मुझे कि हाँ। सिर्फ महिलाएं ही खाना बनाती
1: हैं। हाँ, वही
3: आप रेस्टोरेंट्स में देख लो, होटल्स में देख लो, हर जगह शेफ है। शेफ कौन है? आप फीमेल शेफ बहुत ही कम
1: पुरुष
3: मिलेंगे नहीं।
0: तो फिर ये समाज में क्यों है कि
3: आप घर में हलवाई बुलाओगे कोई लेडीज नहीं आएगी, पुरुष ही आ रहा है।
0: हाँ।
3: ये केवल घर का ही चल रहा है कि आप ही को खाना बनाना है, आप ही को ये करना है।
2: ये तो ना हमारे कुकिंग वर्ड में ही डिफाइन कर रहा है, कुकिंग। यहाँ किंग की बात हो रही है, क्वीन की बात नहीं हो रही।
0: करेक्ट,
3: तो बिल्कुल सही बात है।
1: वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने,
0: तो जितने भी जैन से वो किंग बन जाए, कुकिंग करने के साथ साथ कुकिंग करें।
3: मैं ये कह रही हूँ कि कुकिंग करें, लेकिन अगर आपकी वाइफ बीमार है, आपकी मदर बीमार है, तो आपको इतना आना चाहिए कि उस 3-4 दिनों में उनका ध्यान रख पाए, उन्हें जैसे वो पहली थी वैसे ही उन्हें फिर से खड़ा कर पाए,
0: right.
3: उनका सपोर्ट कर पाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सुबह खाना बनाए बिल्कुल ऐसे कि आप बिल्कुल जॉब पे छोड़ दें, या देखिए जेंट्स के बस की बात नहीं है, जितना एक लेडी संभाल लेती है ना घर बाहर दोनों, सोसाइटी वगैरह सब, वो उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ संभाल नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: क्या बात है गाइस, आज महिला मंच में मैं बिल्कुल सीख के जाने वाला हूँ। बहुत सारी तैयारियां मेरे साथ हो रही है, अप्पे चप्पे खप्पे सब सीखूंगा आज मैं, आप टेंशन ना लो। रीना तू कुछ कह रही थी, टेल मी।
1: मैं ये कह रही थी, तुम्हारी बातों पे बोल रही थी, तुमने बोला कि मैंने आज ही राजमा चावल बनाने के लिए सीखा है। तो जब जैसे मैम ने बताई दिया कि घर घर में महिलाएं बीमार होती है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप घर में एक दूसरे का साथ दोगे तभी परिवार आगे बढ़ता है और ग्रो भी तभी करता है। और क्योंकि अब देखा जाए तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक अगर कोई पुरुष कमा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि वो उसमें नहीं हो पाएगा कि बच्चे भी है, फैमिली को भी लेकर चल रहा है। इसीलिए दोनों को ग्रो करना चाहिए, सपोर्ट करिए आप महिलाओं को।
3: हो भी पाएगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाएं दबाएंगे,
1: लो वही ना, तो दबाना उस चीज को आगे करिए।
3: और ये चीज आप सोचो, पहले के टाइम में चल भी जाता था कि महिलाओं हैं, बहुत सारी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, मगर अब ज्वाइंट फैमिलीज है कहाँ, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे,
0: छोटा परिवार सुखी परिवार,
1: लेकिन खर्चा
3: वो इतना छोटा हो गया है कि अगर आपके साथ कुछ बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको घर के काम ही नहीं आते। पहले केवल बेटी का ही फर्ज बनता था कि पापा आए हैं आपको पानी देना है, आजकल क्या है कि बेटों को भी भाई पापा आए आप पानी दीजिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: उनको आदत में डालिए,
0: छोटे छोटे काम में उनका जो है एनरोलमेंट कराइए,
3: क्योंकि बेचारे उन बॉयज को बाहर जाके बहुत परेशानी होती है, उनकी तकलीफ नहीं। आप सोचो जो जिस बच्चे ने एवरी टाइम घर में बेड पे खाना खाया है, बेड पे चाय पी है, वो हॉस्टल जा रहा है रहने के लिए, उसको अपने खुद या जॉब पे बाहर है, खुद बना के कुछ खाना है, तो वो कितना परेशानी होती है उसको, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं होती। लड़कियों को आपने कभी देखा है कि परेशानी हो रही है?
1: नहीं, क्योंकि घर पे भी उसको काम करवाया जाता है,
3: उनके लिए 5 मिनट मैगी नहीं, उनके लिए 5 मिनट में खाना भी बन जाता है।
0: नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, अब लड़के भी बहुत ज्यादा अंकल आंटी के साथ साथ सब एक्टिव हो रहे हैं,
3: सब एक्टिव हो रहे हैं आजकल के बॉयज, बहुत नहीं, आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, वो कोऑपरेटिव आ रही है, लेकिन उनको वो कोऑपरेट करते हैं ना तो उनको फिर लोग ये कहते हैं अरे यार तुम कर रहे हो ऐसा, तुम्हारा नहीं करने का है, तो वो जो नहीं वाला शब्द है नहीं अच्छी, उनको ये बोलो कि नहीं अच्छी बात है आप सपोर्ट करते हो।
0: ये बात तो आपने सही बोली, और मुझे भी लगता है कि गाइज अब सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी और पुरुष ही नहीं महिलाएं भी, मतलब कहने का ये कि दोनों लोग साथ में चल रहे हैं और दोनों ही लोग बराबरी में काम करते हैं, कोई प्रोफेशन नहीं बचा है, कोई क्षेत्र नहीं जहाँ लड़के लड़कियां काम ना कर रहे हो, हर जगह कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये भी था आपको बुलाने का शैली जिस

0: मुलाकात हुई, हमारे स्टूडियो में ही आई थी वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनको बहुत अच्छा गाना आता है, उनके गाने का बहुत शौक है और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी पैकेज उनकी, गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे लेवल पे टीचर हैं, उनका बेटा मुंबई में बहुत ही बड़े स्टूडियो में प्रोड्यूसर है, मुंबई बॉलीवुड में काम करता है, मुरादाबाद की ही है वो। तो उन्होंने बताया कि उनके उनको गाने का बड़ा शौक है, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके उनका बेटा और उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तुम यहीं घर में रहो, तुम्हारी आवाज़ यहीं तक अच्छी है, तुम्हें ऐसा मिथ है कि तुम अच्छा गाती हो, तुम घर पे खाना ना बनाओ, तुम्हारे लिए यही सफिशिएंट है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इवन वो कहती है कि मेरा बेटा भी, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ ना, तो बेटा भी बोलता है नहीं मम्मी मैं मुंबई में रहता हूँ, तुम्हारी आवाज घर की दीवारों में ठीक है, बाहर बेइज्जती हो जाएगी। तो उनको घर में डिमोटिवेट कर रहे हैं वो लोग। तो मेरा मतलब ये नहीं कि गलत चीज है, शायद उनको ऐसा लगता है, लेकिन जितना हमने आंटी मैम को देखा, उनको सुना, तो मुझे लगा नहीं, शी इज वेरी ब्रिलियंट, वो अच्छा कर सकती है। बट अगर उनको एक मौका दिया जाए, उनको एक सपोर्ट किया जाए उनके पेरेंट्स से, उनके हस्बैंड से या उनके बेटे से, तो शायद वो और अच्छा कर ले। तो बात वही आ गई है कि लेडीज करना तो चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर है कि तुम अच्छा, उनको डिमोटिवेट कर दिया जा रहा है।
1: तो उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक बार अपना सॉन्ग इंस्टा पे डालिए, जो भी आपको एक बहुत अच्छा आता है, व्यूअर्स आपके कितने आते हैं, कौन आपको लाइक करता है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या है आपकी।
0: लेकिन
2: कभी अपने प्लेटफॉर्म को खुद जनरेट करें,
0: जनरेट तो करना है, लेकिन अब जब अलाउड ही नहीं है घर में, जब लोग उनको कह रहे हैं कि आप अच्छा गाती नहीं हो, तो फिर
1: ठीक है अलाउड नहीं है, तो जो घर के मेंबर्स है ना, चार दीवारी में ही गाना है, तो उन जो हमारे चार लोग हैं, हमारे घर के रिलेटिव, हमारे भाई हो गए, हमारी बहनें हो गई, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हो गए, व्हाट्सएप पे डालिए सिंगिंग करके, हाइड कर दीजिए सबको, फिर वो उनके व्यूज क्या होते हैं आपके गाने के प्रति पता चल जाएगा।
0: ये अच्छा आपने,
1: क्योंकि साँच को आज क्या,
0: सही
3: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये आपने बहुत अच्छा बोला। और मुझे लगता है कि ये जो लेडीज प्रोग्राम है ना, इसके इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग यही है कि हम लोग लोगों की सोच को बदलें, और सिर्फ महिलाओं की क्यों, जेंट्स की सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है।
1: नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, आप घर में कीर्तन रखिए, आप अगर अच्छा गाते हैं बजाते हैं, आपको चार लोग इन्वाइट करेंगे, यार वो उनकी वाइफ बहुत अच्छा गाती है, और देखिए लोग उन्हीं को बुलाना चाहते हैं जिनमें कुछ बात है, चार लोग जो पीछे बैठने वाले होते हैं उन्हें लोग कम इन्वाइट करते हैं, आपको बजाना आ रहा है, आपको गाना आ रहा है, आपको डांस आ रहा है, तो आपको जब आपका घर में ऐसे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, तो आप सोचेंगे उन्हीं लोगों को ज्यादा बुलाएंगे,
2: उन्हीं लोगों का नाम सबसे पहले होगा।
0: सही कहा आपने। तो श्रोताओं, फिलहाल मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अब जो है मेरा तो जाने का समय हो रहा है, लेकिन अभी इन लोगों की बात आप सुनते रहिए, शायद आपको कुछ अच्छा सीखने को जानने को मिले। थोड़ा सा मैं बस जाने से पहले शैली मैम से और पूछना चाहूंगा, वो आज हमारे बीच में आई है, तो इतना अच्छा काम करती है और इतनी फिट भी है वो, और इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने मेंटेन की हुई है, तो इसका राज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि घर की महिला अगर स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है ना, पूरा परिवार की, फिर पूरा समाज स्वस्थ है। अगर हमारे घर की नारियां कमजोर पड़ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, थकेंगी, दिक्कतें होंगी, तो वो नहीं चला पाएंगी, और पुरुष तो इतना नहीं कर पाते भाई, सिंपल सी बात है। तो महिलाओं को आप क्या टिप्स देंगी, क्या एडवाइस देंगी, दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे वो खुद की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करें?
1: मैं महिलाओं के लिए बस यही बोलना चाहेंगी कि अगर आप 45 मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 2 घंटे निकालिए, 45 मिनट अगर आप पूरे दिन में नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपकी लाइफ ना बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? क्योंकि 45 मिनट्स में वो आपकी हेल्थ इश्यूज से लेके आपकी मेंटल हेल्थ तक वो सही करेगी। जब हमारी मेंटल हेल्थ सही होती है, तो हमारी फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो उस 45 मिनट में आप प्राणायाम है वो करिए, आजकल ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, जिम नहीं जा पा रहे हो, योगा नहीं जा पा रहे हो, सारी चीजें अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, वो आप उनको सर्च करके 15 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इतनी सारी एक्सरसाइज है वो 45 मिनट। और सबसे पहला जो दिन की शुरुआत करो, एक फ्रूट से करो, चाहे आप ये नहीं है कि रोज आप एप्पल ही खाओ, बनाना खा लो, किसी दिन गुआवा खा लो, मैंगो खा लो, सीजनली फ्रूट्स पे अपने जो भी चीजें अपने उनको हेल्थ इश्यूज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैल्शियम, विटामिन D3 वुमेन्स का, विटामिन B12 बहुत कम होता है, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि वो खाने को ना बिल्कुल साइड कर देती हैं। तो अपने खाने का सबसे पहले ध्यान रखें, टाइम से नाश्ता, टाइम से डिनर, टाइम से लंच, ये चीजें उनको जरूर करना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी पे उन्हें 45 मिनट्स अपने हेल्थ को देने हैं। और दूसरी बात, अगर वो टाइम से खाना वाना खाएंगे तो वो वैसे ही स्वस्थ रहेंगी। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव चीजें सुने, निगेटिविटी अपने पार्ट से हटाने की कोशिश करें।
0: बहुत ही अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और गाइस अब हम लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत। रीना तुम्हारा क्या टेक रहेगा, तुम क्या कहना चाहोगी जाते जाते?
3: मैं यही कहना चाहूंगी महिलाओं से कि अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ है तो पूरा परिवार पूरा समाज स्वस्थ है। और जब महिलाएं आगे बढ़ती है, महिलाएं पढ़ती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि अपने लड़कियों को ये नहीं चाहता हो कि तुम ना पढ़ो, क्योंकि जब महिलाएं पढ़ती है ना तो वो एक पीढ़ी को नहीं बल्कि तीन

0: तीन पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। तो वो पढ़ शिक्षित है, स्वस्थ है, तो समाज भी शिक्षित है और स्वस्थ है।
1: क्या बात है कुमकुम, तुम क्या कहोगी जाते जाते?
2: मैं भी बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी महिलाएं, आपकी वाइफ, आपकी बेटियां आपका साथ दें, तो आप भी उनका उतना ही साथ दें। अगर वो थकी हारी आती हैं तो आप उनको एक गिलास पानी दें, उनसे कहें कि हाँ 2 मिनट रेस्ट करो, जो काम करना है आप आराम से करो।
1: बहुत ही
3: बढ़िया,
1: बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस फिर मिलेंगी आपको रीना और खुशी, मैं लेता हूँ इस महिला मंडली से इजाजत, फिर आपको जल्दी मिलूंगा, आप ख्याल रखिए अपना। और जाते जाते थोड़ा सा फन करते हैं, एक छोटी सी शायरी है मेरे साथ आपको बोलनी है। आर यू रेडी गाइज? ठीक है चलो तो शुरू करें। तो गाइज महिला मंडली में एक थोड़ी सी फनी शायरी, माफी चाहता हूँ आप सभी को बोला है, दिल जवा है तो बेबसी कैसी, बोलो गाइज।
3: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
1: आपको भी बोला है फिर से बोलना है, दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
4: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
1: सफेद बालों की ऐसी की तैसी,
2: सफेद बालों की
3: सफेद बालों,
0: फिलहाल सफेद बाल भी इनके ही है इसीलिए बोला है।
2: सबसे ज्यादा काउंट करे आएंगे तो
1: मैं नमक के पानी से नहा लिया था किसी एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था एक ग्लास एक चुटकी नमक डाल के नहाना है आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो बालों के कार्य पूरे सिद्ध हो गए।
2: कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और टिप्स आप उनसे ले लें, हाँ। आपके बाल ही चले जाएं।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा,
2: रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
1: ये तो इन्होंने मेरी नानी की कहावत जोड़ दी। फिलहाल तो मैं लेता हूँ जाने की अनुमति, और आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बाय बाय
3: बाय।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, अब हमारे और आपके बीच में कोई फासला नहीं है, अब आपका फेवरेट शो लेकर मैं हाजिर हूँ। हेलो फरमाइश, जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, वक्त हुआ है 3:05, स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ। और अगले 2 घंटे तक हम करेंगे ढेर सारी बातें, सुनेंगे आपकी पसंद के सुपरहिट गाने और जानेंगे उन गानों के पीछे की, जी हाँ, पीछे छुपी हुई आपकी प्यारी प्यारी कहानियां। दोस्तों, हर गाने का एक एहसास होता है, कोई गाना पहली मोहब्बत की याद दिलाता है, कोई बचपन की शरारतें, तो कोई अपनों की मुस्कान। इसलिए आज की हमारी थीम है दोस्तों। हेलो फरमाइश, हाँ जी, हेलो फरमाइश में जो भी आप ट्रैक सुनेंगे उसके पीछे की कहानी, आपके फेवरेट गानों के पीछे की कहानी क्या है, आखिर क्यों आप वो ट्रैक सुनना चाहते हैं जो आपने बहुत दिन से डिसाइड करके रखा था कि जब भी मेरा कॉल लगेगा तो मैं यही गाना सुनूंगी या फिर सुनूंगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं बिना किसी देरी के। एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। एंड जब तक आप मुझे कॉल करते हैं, मैं सुनवाती हूँ आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रैक है। एंड ये गाना अभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैंने कहा आज हम आप सभी को भी सुनवा देते हैं, तो सुनिएगा, बस मैं आती हूँ अभी।

हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और ये है आपका अपना फेवरेट, जी हाँ, रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी। और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना। देखिए, हम आपकी बातें सुनने के लिए भी आए हैं और आपके फेवरेट गाने प्ले करने के लिए भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, जो फेवरेट गाना आप सुनना चाहते हैं उसके पीछे की कहानी, आखिर क्यों आप वो ट्रैक सुनना चाहते हैं, क्या यादें जुड़ी हैं आपकी उस गाने से जो आपने बहुत दिन से सोच के रखा है कि मुझे आज अगर मेरा एफएम मुरादाबाद हेलो फरमाइश में कॉल लगेगा तो मैं ये वाला ट्रैक सुनने वाला हूँ। देखिए, गाने तो सब सुनते हैं,

0: लेकिन उस गाने का भी एक मोटिव होता है ना, ऐसे ही कोई गाना जहन में नहीं आता है हमारे हमारे कुछ ना कुछ तो राज छिपा होता है उसके पीछे। तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों, आप कौन सा ट्रैक आज सुनना चाहते हैं जो आपने बहुत दिन से सोच के रखा है कि ये गाना मुझे सुनना है, और क्या वजह है उस गाने सुनने की, आप मुझे ये भी बताइएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। और अभी फिलहाल बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, हमारे साथ कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्ते, अपना शुभ नाम बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर।
1: मैं कश्मीर सोना मार्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर।
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक हैं।
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा कश्मीर का वेदर कैसा है।
1: अभी तो गर्मी चल रही है यहाँ पे, बहुत गर्मी है, अभी लगभग 30 डिग्री गर्मी चल रहा है आज।
0: अच्छा ओके। हाँ। तो अभी फिलहाल गर्मी बारिश वगैरह नहीं हुई है ना।
1: ना ना अभी तो बारिश वगैरह तो नहीं हुआ, तो अभी गर्मी ही चलता है 4 दिन से।
0: ओके तो बताइएगा आप क्या करते हैं सर।
1: बस मैं तो अपना बागवानी करता हूँ और खेती बाड़ी।
0: खेती में क्या लगाया है आपके यहाँ पर।
1: आज हम मक्का लगाए और धान।
0: सॉरी
1: मक्का और धान।
0: अच्छा मक्का और धान लग गए वहाँ पर कश्मीर में।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: ओके अभी हमारी साइड तो लगा नहीं है, शायद तैयारियां चल रही हैं, पर ऐसा भी होता है ना।
1: यहाँ पे अप्रैल में लगाते हैं मक्का और आखिरी सितंबर में लगभग काटते हैं मकाई।
0: अच्छा अच्छा ओके सर गुड। तो आप बताइएगा आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और आज की हमारी थीम है गानों के पीछे की कहानी, जो आपका फेवरेट गाना है जो आप सुनना चाहते हैं उसके पीछे की क्या कहानी है और कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज बताइए मुझे।
1: मुझे सुनना है फूल और कांटे फिल्म का।
0: हाँ कौन सा ट्रैक सुनना है बताइएगा सर।
1: तुमसे मिल ये दिल करता है।
0: किससे मिलने का दिल करता है आपका।
1: बस मुरादाबाद दिल करना आने का करता है।
0: अच्छा मुरादाबाद आने का दिल करता है।
1: हाँ।
0: तो फिर आ जाइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर, कब आ रहे हैं बताइए आप।
1: बस तो लगभग सितंबर आखिरी या अक्टूबर में आएगा वहाँ।
0: अच्छा अच्छा ओके मोस्ट वेलकम है, आप जरूर आइएगा और आप क्या पसंद करिए, आपका फेवरेट गाना हम प्ले कर रहे हैं। ठीक है सर,
1: थैंक यू मैडम,
0: मोस्ट वेलकम, ख्याल रखो अपना अच्छे से और इस गाने को भी सुनते जाइए। तो दोस्तों आपके दोपहर के सफर को बनाएंगे हम बहुत ही सुहाना आपके फेवरेट ट्रैक के साथ, लेकिन आपको कॉल करना है हमारे मोबाइल नंबर पर 9837896896। लौट कर आती हूँ मैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पर।
2: It came to spy.

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने ये ट्रैक सुना, बहुत ही खूबसूरत सा, फ्रॉम द मूवी फूल और कांटे से। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी अपना फेवरेट ट्रैक सुनना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो उसके पीछे की स्टोरी। जी हाँ, गाने सभी सुनते हैं, लेकिन ऐसे हमारे माइंड में कोई भी ट्रैक नहीं आता है जब तक उसके पीछे की कोई ना कोई कहानी तो होती है, कोई ना कोई तो वजह होती है जो गाना हमें पसंद आता है। तो अभी अपने कॉलर से कॉल पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको आखिर कौन सा ट्रैक ऐसा है जो उनके दिल के बेहद करीब और क्यों उनको पसंद है, वो भी हम वजह पूछेंगे। एंड चलिए बिना किसी देरी की बात करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश जी, गुड आफ्टरनून।
0: जी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है, लाइन पार से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी बताइए कार्तिक, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, आप बताओ।
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और बताइए, आप फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: फैमिली में भी सब बढ़िया है।
0: बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या वजह है?
1: कुछ नहीं, बस मूवी देख रहा था एक।
0: अच्छा, मूवी देख रहे थे इसलिए आप हैप्पी हैं, स्माइल कर रहे हो।
1: हाँ।
0: कौन सी मूवी है बताइए?
1: मूवी आ रही थी, वो देसी बॉयज मूवी आ रही थी।
0: अच्छा, ओके, तो मूवी भी देख रहे हो और कॉल भी लगा रहे हो, वाह क्या बात है। बताइए आप कौन से गाने सुनेंगे कार्तिक? बताइए कार्तिक, आप कौन से गाने सुनोगे आज, क्या फरमाइश है आपकी?
1: सनम तेरी मूवी से, सनम तेरी कसम मूवी से बेवजह सॉन्ग सुना देना।
0: अच्छा, ये गाना क्यों पसंद है आपको, बताइए बेवजह
1: है। बस बहुत पहले देखी थी मूवी तो अच्छा लग गया था गाना, जब से सुनता ही हुई है।
0: अच्छा, ऐसे तो नहीं पसंद है, कोई ना कोई तो वजह है। नहीं बताना चाहते तो वो अलग बात है कार्तिक,
1: ऐसे नहीं बता सकते ना फैमिली।
0: अच्छा ओके, पता चला कि शाम को खाने की जगह मम्मी का चाटा लग रहा है गाल पे। हाँ
1: तो।
0: चलो ठीक है ठीक है जी, हम सबका ख्याल रखते हैं। एंड थैंक यू कार्तिक हमें कॉल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो फिलहाल कार्तिक ने बोला कि अभी फैमिली सुन रही है, मम्मा ने सुन लिया तो मुझे बहुत डांटेंगी, तो कुछ राज को हम राजी रहने देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ये खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं फ्रॉम द मूवी सनम तेरी कसम से, ये प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा बिना किसी देरी के, कोई बहाना नहीं चलेगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। टाइम मैं बता देती हूँ अभी राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:22, और ये गाना हम यहाँ से प्ले कर रहे हैं, आपके रेडियो सेट पर पहुँच चुका है। बस ध्यान से सुनिए और हमें भी फ़ोन लगाइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन का।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
2: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन फिर मुरादाबाद 89.6, जहां पर आपको जानकारियों के साथ साथ आपको अपने फेवरेट गाने सुनने का भी मौका मिलता है एवरी डे मंडे टू सैटरडे. एंड दो घंटे हम फोन इन कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं आप सभी के लिए. एंड आप इस कार्यक्रम में हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा गाना सुन सकते हैं किसी एंड अपने खास मित्र को, दोस्तों को, फैमिली को एंड लाइफ पार्टनर को आप डेडिकेट कर सकते हैं कोई प्यारा सा ट्रैक जो आपका दिल चाहे. लेकिन अभी बात करते हैं अपने यहाँ पर अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं एंड जानेंगे क्या उनकी फरमाइश है. हेलो फरमाइश. हेलो.
1: हेलो.
0: हाँ जी बताइए सर, क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद

0: जी रिजवान जी बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं बात कर रहा हूँ सिलसिला दुराई से।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप?
1: जी अपना काम है चिनाई करना, आशियाने बनाना।
0: हाँ वो तो आपने मुझे बताया था पहले भी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप चिनाई करते हैं। आज का मौसम कैसा है बताइए सर बाहर का जरा?
1: मौसम धूप ना है, ठंड हो रही है, बादल हो रहे हैं।
0: ठंड हो रही है?
1: हाँ।
0: अच्छा कितनी ठंड हो रही है ये बताइए।
1: ऐसी धूप ना है, बादल से हो रहे हैं, ठंड हो रही है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की।
0: कहने का मतलब है कि मौसम आज का ठंडा है, राइट? गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है?
1: हाँ गर्मी से राहत मिल रही है आज।
0: जी तो बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी सुनवा दीजिए, अभी संगीत बजाता आदि के उस पर गाने का, तुम शाह कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है।
0: अच्छा ये ट्रैक आप किन के लिए सुनना चाहते हैं जरा हमें बताइए।
1: जी खुद के लिए, जे आप और आप लोगों के लिए, यार दोस्त है मिलने वाले उनके लिए।
0: ठीक है सर सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। आगे तो आप जानते हैं कि क्या है लिरिक्स। तो चलिए हम आगे नहीं गाएंगे क्योंकि हमारी आवाज़ गाने के लिए इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये गाना हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, इस काम में हम परफेक्ट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं शानदार ट्रैक और आप मुझे बिना किसी देरी के कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 98-378-96-896। ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों इस फोन इन कार्यक्रम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं और आप भी अपनी पसंद का गाना यहाँ पर सुन सकते हैं आरजे खुशी के साथ। आप खुश हो जाइए और आप भी मुझे फोन लगाइए।

0: बिल्कुल दोस्तों, हम तो आपसे कहते ही हैं कि आपसे प्यारा, आपसे मासूम कौन हो सकता है। इतने प्यारे लिसनर हमारे हैं कि जैसे ही शो शुरू होता है आपके कॉल आने शुरू हो जाते हैं, एंड ये प्यार आपका हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिए आप रेडियो के प्रति। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। एंड अभी ये आपने प्यारा सा ट्रैक सुना कुमार सानू जी साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में, प्यारा सा ट्रैक। और दोस्तों अभी हमारे साथ एक और लिसनर हमारी कनेक्ट हो गई है, तो उनसे भी बातचीत करते हैं और आपको समय भी बता देते हैं। वक्त हुआ है 3:40। हेलो फरमाइश।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका डियर?
1: मेरा नाम सुहानी है।
0: सुहानी, आज तो मौसम भी सुहाना है। कैसी हो सुहानी आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ एंड आई एम गुड। हाल चाल बहुत बढ़िया है हमारे। आप बताओ सुहानी, फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: हमारे यहाँ पर भी सभी ठीक है।
0: आपका नाम बहुत प्यारा है, बहुत ही मुझे क्यूट सा नेम, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा सुहानी।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। आपके पेरेंट्स ने रखा है आपका नाम या पंडित जी ने रखा है, ये बताओ आप मुझे।
1: मेरे मम्मी पापा ने रखा।
0: अच्छा, मम्मी पापा ने रखा है। ओके, मेरा नाम तो मम्मी बताती हैं कि पंडित जी ने आपका नाम रखा था, तो वही हमने आपका नाम रख दिया। मैंने बोला अच्छा ये वजह है।
1: आपका नाम भी बहुत अच्छा है।
0: थैंक यू सो मच। कोई तो है जो मेरे नाम को प्यार करता है। हाय रब्बा, थैंक यू जी, मैं वारी जावा। थैंक यू सुहानी। अच्छा ये बताओ, आज आपने कॉल किया है, आप कौन सा गाना सुनोगी?
1: मुझे गाना सुनना है कितना सोना तेनु रब ने बनाया।
0: हाँ जी, करा तेनु वेखती रवा। हाँ
1: हाँ, यही वाला।
0: अच्छा ये ट्रैक क्यों सुना है सुहानी, और किनके लिए सुनना चाहती हैं आप? कौन है वो प्यारा सा आपके दिल के क्लोज, आपके फैमिली मेंबर्स जिनको आप इतनी तारीफ बयां करना चाहती हो गानों की वजह से, गानों के जरिए?
1: ये गाना अच्छा लगता है इसलिए सुनना चाहती
0: हूँ। अच्छा ये गाना अच्छा लगता है। ये मूवी देखी है आपने?
1: ये मूवी
0: शायद नहीं देखी है। ओके, तो शायद देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है मरजावा, आप जरूर देखना सुहानी। ठीक है
1: ठीक है।
0: ओके, अभी आप पढ़ाई करते हो ना? कौन सी क्लास में स्टडी करते हो?
1: मैंने अभी 12th क्लियर किया
0: है। अच्छा, अरे वाह, तो अभी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हो? हाँ ओके, क्या करोगे आगे बताओ आप?
1: अभी तो
0: डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है। हाँ
1: हाँ
0: सुहानी, डिसाइड करो, क्योंकि आपको पता है ना वक्त गुजर रहा है बहुत तेजी से। ठीक है ओके, मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, आप परेशान मत होइए हमसे, हैप्पी हो जाइए। ठीक है, मैं आपकी दोस्त हूँ एंड अच्छा लगा आपसे बात करके सुहानी, और हमेशा ऐसे ही स्माइल करती रहो। बाय
1: बाय।
0: तो चलिए एवरीवन, सुहानी की पसंद पर सुनते हैं सुहाना सा गाना, बहुत ही खूबसूरत एंड किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया फ्रॉम द मूवी मरजावा, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं, बाकी आप भी मुझे कॉल लगाते रहिए।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055077052।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का नंबर वन रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर। हेलो फरमाइश, वक्त मैं आपको बता देती हूं 3:50 हो गए हैं राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। एंड मेरे साथ यहां पर अखिल जी भी कनेक्ट हैं, कनेक्ट नहीं है, लाइव मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं और उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है। बोल रहे हैं कि खुशी चलो हम मिलकर धमाल करते हैं, कुछ कमाल करते हैं एंड अपने श्रोताओं को कुछ फेवरेट गाने सुनवाते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। कैसे हैं आप अखिल जी?
1: खुशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
0: मोस्ट वेलकम।
1: आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, पता नहीं क्यों
0: आज मौसम इसलिए अच्छा हो रहा है क्योंकि आज हमारे यूपी के सीएम जी आए हैं मुरादाबाद में, तो मौसम सुहाना तो होना बनता था।
1: आज योगी जी आए,
2: नगर निगम सब क्लीन हो चुका है भैया।
0: नगर निगम क्लीन नहीं हुआ है मैम।
1: इनका कहने का मतलब यह है कि नगर निगम ने साफ सफाई बहुत अच्छे से।
0: हाँ जी, पूरा मुरादाबाद चमक उठाया है भाई,
1: चमक रहा है और बहुत ही अच्छा है कि
0: तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कहना चाह रही हो क्या?
2: तुम्हारे पैरों में धूल तक नहीं लगेगी आज।
0: हाँ, अरे वाह क्या बात है, तो आज चप्पल पहनने का इरादा नहीं है रीना?
2: नहीं नहीं,
0: ठीक है विदाउट चप्पल के चलते हैं। चलो
2: पाँव जलेंगे तो अलग बात है,
0: पाँव जलेंगे नहीं
1: जो है, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से बैठ गई है।
0: हाँ,
1: कह रही है कि आज जो है बस

0: ऐसी साफ सफाई देख के ये एकदम घबराई घबराई से अंदर आके बैठ गई स्टूडियो के अंदर, कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो कहीं ज्यादा साफ ना दिखे.
1: बहुत खुश हो रही है आज, ये इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, इसलिए चेयर पे बैठी है.
2: नीचे बैठती मतलब.
1: हाँ बैठते ऑफ कोर्स,
2: बैठना चाहिए, धरती माँ हमारी, उनके गोद में पलते हम.
1: नहीं मुझे पता नहीं था धरती हमारी माँ है. अरे वो सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी जी का डायलॉग है ना, धरती मेरी माँ है. अंजलि वो करके कैसा है आप मुझे बताओ, मुझे नहीं आता है. अरे नहीं अंजलि वाला तो दूसरा डायलॉग है,
0: वो धड़कन मूवी का था.
1: हाँ और धरती मेरी माँ ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: बॉर्डर
1: मूवी का है.
0: कुछ श्रोताओं से भी पूछना चाहिए, तुम सब हमसे ही पूछ लेती.
1: हाँ बिल्कुल, अभी हम आपसे नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे, अब आप आए हैं मेरे शो में तो कुछ तो आपसे भी मालूम करना बनता है ना. सब
0: बिल्कुल सही बात.
1: तो चलिए हमारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल अभी अपनी कॉलर से बात कर लेते हैं, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं. हेलो फरमाइश. हेलो फरमाइश.
3: हेलो फरमाइश, नमस्कार
1: जी. आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा.
3: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से आज गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ.
1: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं. आप सुनाइए, आपके और आपके परिवार में क्या हाल है?
1: जी सब बहुत अच्छे हैं सर, आपकी दुआएं हैं. आप बताइएगा रामपुर का मौसम कैसा है आज?
3: मौसम बहुत गर्म.
1: अच्छा गर्मी बहुत ज्यादा है
3: जी, लू चल रही है.
1: अच्छा
0: कल जब योगी जी वहाँ पहुँच जाएंगे तो मौसम और अच्छा हो जाएगा.
3: रात हल्की फुल्की बारिश थी.
1: अच्छा
3: बहुत हल्की, मामूली से झर सीधा झर्रा पड़ा था.
1: ओके बारिश, मुझे ऐसा हमारे मुरादाबाद में भी कल सुबह सुबह में बारिश हुई थी, उसके बाद इतनी गर्मी हो गई थी ना, अभी भी गर्मी है लेकिन अभी धूप नहीं है.
3: जी यहाँ पर तो धूप है, बहुत गर्मी है.
1: अच्छा आप बताइएगा इस चिलचिलाती गर्मी में कौन सा ऐसे गाना सुनना चाहते हैं सर आपको, जो सुकून दे राहत दे?
3: मूवी का नाम है कसूर.
1: और
3: गाने के बोल हैं, जो मेरी रूह को,
0: जो मेरी ही रूह को.
3: आपको सुनने वालों के नाम है?
1: जी जी जी बिल्कुल बताइएगा अपने दोस्तों के नाम.
3: सिमरन खान है, शनाज बाबू अंसारी है, मिराज अंसारी, शफी अहमद अंसारी, सईद गुला अंसारी, शाहनूर अंसारी, मकसूद हुसैन,
1: ठीक है सर. आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया हमें.
3: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया.
1: मोस्ट वेलकम सर. तो अखिल सर बताइए नंबर हमारे श्रोताओं को, वो भी हमें सुन रहे हैं इस समय लाइव, जो न्यू लिसनर्स अभी कनेक्ट हुए हैं, अभी अभी रेडियो ऑन किया है, उनको नंबर बताइए, वो भी हमारे शो में कॉल लगाएं.
0: लकी नंबर
2: बताना है या
0: 89.6.
1: हाँ जी,
0: जहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं. और हाँ अगर आप लोग अपनी गाड़ी से उतर के जा रहे भी हैं और हमसे चाहते हैं कि हमारे टच में रहें, तो अपने मोबाइल को हमारी ऐप, हमारी जो मुरादाबाद FM की ऐप है, उसे डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे. वो आपको रेड कलर के आइकन में मिल जाएगी, और जैसे ही वो आप उसे डाउनलोड करें तो आप हमसे वैसे ही कनेक्ट हो सकते,
1: कनेक्ट हो जाएंगे. एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहा है आपने. अखिल सर मैं आपसे ना धड़कन मूवी का डायलॉग सुनना चाहती हूँ, पर अभी नहीं, पहले गाना सुन लेते हैं. थोड़ा सा आप पानी वानी पी लीजिए, तसल्ली से आराम से सुनेंगे और अपने श्रोताओं को भी सुनवाएंगे. ठीक है?
0: ओके जी पक्का.
1: ठीक है चलिए. तो दोस्तों अभी सुनिएगा, मैं बस लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए.

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। 4:02 स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं। देखिए एक घंटा कैसे कंप्लीट हो गया है ना, बिल्कुल भी पता नहीं चला है। ऐसा ही होता है जब अपनों के साथ होते हैं ना हम, तो सफर का पता नहीं चलता है कैसे कंप्लीट हो जाता है। अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और बाद में पता चलता है ओहो हम घर भी आ गए। अरे पता ही नहीं चला।
1: 4 बजे का ना बारिश बता रखा था, ठीक है।
0: अच्छा,
1: लेकिन अभी तक बारिश आई नहीं है, यानी कि 35% बारिश बता रखा था।
0: 35%
2: इससे ये प्रतीत होता है कि रीना जी ने आज सुबह नहाई नहीं है, वो बारिश के इंतजार में ही वेट कर रही है।
0: अरे नहीं, आज रीना जी नहाई है, पता है आपको, आज उन्होंने खीर का प्रसाद बनाया था क्योंकि आज पूर्णिमा है।
2: तो प्रसाद आपने अच्छे खा लिया?
1: मेरे हाथ का खीर खाना है बताओ।
2: हाँ हाँ खा ले, खाना नहीं खानी है।
1: खाओगे?
2: आप लाएंगे तो जरूर खाएंगे।
0: बिल्कुल जी, मैंने तो जो रीना जी ने प्रसाद बनाया था उसका भोग लगा लिया है। बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। अच्छा भैया एक क्वेश्चन है मेरा, प्लीज। मुझे आप जवाब दीजिएगा क्विकली कि आप मुझे बताइए खीर में लौंग डलती है?
1: डलती है
2: खीर में लौंग?
0: रीना जी ने डाली है।
1: अरे पता है क्या, वही इलायची नहीं था तो मैंने लौंग डाल दिया। भगवान जी को ना जुकाम खांसी नहीं होएगा ना।
2: ये खीर बनाते बनाते खिचड़ी समझ बैठी
0: होंगी। लौंग डाल दिए।
1: अरे नहीं, वो भगवान जी को, अब जगन्नाथ भगवान जी इतने पानी में नहाएंगे, 108 कलश के पानी में नहाएंगे तो वो बीमार हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि जो लौंग डाल देते उनको जुकाम खांसी नहीं होगी।
2: कितना
0: तालियां, क्लैपिंग लड़की के लिए।
2: चलते ही डॉक्टर बनते रहेंगे।
0: भक्ति में शक्ति है। चलो अभी फिलहाल बात की होती अपनी कॉलेज से
1: बन जाती, लेकिन मैंने क्या करूं, पहले तो
0: मैंने
2: और सच बोलना बिल्कुल।
0: हाँ।
1: नहीं वो तो थी,
0: जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
1: मैं मेडिकल लाइन में भी गई। हाँ। 10 दिन 12th में, मतलब 11th से में ले लेते ना। हाँ। तो 10 दिन तो पढ़ा, जो वो क्या बोलते हैं फिजिक्स, जो फॉर्मूले होते हैं वो सर से ऊपर से जाने लगा। हाँ। मैं चकरा जाऊंगी भैया, छोड़ दो इसको।
2: वैसे सबसे ज्यादा जरूरत तो अगर डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए।
1: बायोलॉजी बिल्कुल,
2: अगर फिजिक्स भी अगर गड़बड़ है आपकी तो मामला गड़बड़ है।
1: बायोलॉजी मेरी सही थी।
0: तो चलिए अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं और जानेंगे कि वो क्या करते हैं। ये तो डॉक्टर की बात ही कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि वो कौन, हमारे जो लिसनर जुड़े हैं वो क्या करते हैं अभी। हेलो फरमाइश
3: जी।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
3: संसार अंसारी, बिलारी से।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप सर?
3: अच्छे हैं, आप सुनाइए।
0: हाँ जी हम भी बहुत अच्छे हैं, बताइएगा क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा।
3: रेडीमेड का काम चल रहा है।
0: अच्छा रेडीमेड का काम करते हैं आप, चलिए ये भी बहुत अच्छा काम है। तो बताइएगा अभी राइट नाउ कहाँ पर हैं आप?
3: अभी यहाँ पे आए हुए हैं मुरादाबाद।
0: अच्छा अभी मुरादाबाद आए हुए हैं, अपने दोस्तों से मिलने?
3: मंसूरी कॉलोनी।
0: ओके, तो बताइएगा आज आप अपने दोस्तों से मिलने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको?
3: बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी कुछ थोड़ा सही है।
0: हाँ मौसम बहुत अच्छा है। तो बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
3: सॉन्ग सुनना था वो मेघारे मेघा, प्यासा सावन मूवी का।
0: अच्छा तो ये ट्रैक आपको क्यों सुनना है बताइए जरा हमें, इसकी वजह बताओ।
3: मौसम की वजह से।
0: अच्छा मौसम की वजह से, ओके।
2: क्या बात है, सुकून मिल जाएगा। अंसारी साहब आपने बात बहुत अच्छी करी कि आपने मौसम का पूरा फायदा उठा रहे हैं आप।
3: जी जी
0: जी, आपने कॉल किया, शुक्रिया सर। कुछ कहना चाहते हैं, अपने दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं तो बताइएगा हमें।
3: ये हमारे बड़े भाई हैं इरशाद
0: जी,
3: और परिवार में सभी हैं।
0: ठीक है
3: जी।
0: तो सभी के साथ सुनी गई खूबसूरत सा गीत, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बाकी दोस्तों आप भी चाहते हैं कॉल लगाना मुझे तो इतना भी करार मत होइए, नंबर बता दीजिए। अखिल भैया क्यों इतना तरसा रहे हो आप? हाँ एड्रेस मेनू
2: 9837896896। अंसारी साहब की तरह मौसम का फायदा उठाए, मौसम पे ये नंबर मिलाएं और अपने पसंद का
0: मौसम पे नंबर नहीं मिलाएं,
1: फोन पे नंबर
0: मिलाएं, फोन पे नंबर
2: मिलाएं। आप लोग दिल की भावना नहीं समझ रही हैं,
0: दिल की भावना समझो।
2: जो है दिल की बातों को पीछे हो जाती हैं आप दिल की बात,
0: दिल है कि मानता नहीं
2: ना, दिल है
0: ये नटखट बहुत है। चलो खेल,
1: रात में दिल की बात करते हैं ना तो ये सोचते हैं कि दिन हो या रात हो दिल की बातें करो।
0: नहीं वैसे सही बात है, दिल से बातें करो, दिल की बातें करो। और अभी फिलहाल ये गाना सुनो, मैं बस आती हूँ यहाँ पर। दोस्तों आज खुराफाती हो रही है, थोड़ा सा मस्ती मजाक होना चाहिए लाइफ में, तभी लाइफ खूबसूरत लगती है। फिलहाल ये गाना सुनो, बस मैं आती हूँ अभी।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और हम इतना ट्रैक सुन रहे हैं, बरसो रे मेघा मेघा, शायद वो बरस ही जाएं। क्यों अखिल भैया?
1: हाँ, और बरसना भी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जब बरस जाता है तो हम लोगों के साथ फिर एक दिक्कत हो जाती है।
0: हाँ,
1: इतना पानी हमारे यहाँ भर जाता है कि हमें कहते हैं यार अब मत बरस।
0: हाँ, एक्चुअली हमारे यही प्रकाश नगर की चौराहा पर भी इतना पानी भर जाता है ना कि निकलने में फिर इशू होता है।
1: तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं वहीं से अपना मन भर लेता हूँ कि भैया आप, ऐसा मौसम हो गया है, इसी में मन भर लो।
0: अच्छा,
1: अगर ये बरस गया तो लगता है नाव लेके घूमनी पड़ेगी।
0: ओके, तो अखिल जी बताइएगा आप कौन सा गाना सुनेंगे आज? आपकी पसंद का ट्रैक भी हम सुनना चाहते हैं, सबकी फरमाइश हम पूरी करें।
1: ट्रैक पसंदीदा, क्योंकि गाना एक ऐसी चीज है जो भी आप कभी भी कोई सुनते हो तो आपको रिलैक्स दे देता है, चाहे वो कैसी भी मूड का क्यों ना हो। बस आपका मूड उस समय निर्भर होना चाहिए कि आप वो गाना सुनना चाह रहे हैं। मगर गाने सभी पसंदीदा होते हैं और सभी अच्छे होते हैं। एक जो मुझे कभी कभी मैं गुनगुनाता रहता हूँ तो वह है कभी कभी याद आती, जो जाने तू या ना जाने का मूवी से है वो गाना।
0: हाँ।
1: और वो अच्छा लगता है मेरे को, उसकी मतलब बोल भी अच्छे,
0: लिरिक्स बहुत अच्छे हैं,
1: अच्छे हैं और वो फिल्माया भी बहुत अच्छा गया है।
0: अच्छा, बताइएगा एक बार अगेन, फिर से बताइए।
1: कभी कभी आदिति,
0: कभी कभी,
1: कभी कभी आदिति,
0: ओहो
1: हो, सपना लगता है,
0: क्या बात है, गाना तो बहुत प्यारा है।
1: और कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई आपका फेवरेट गाना आप गुनगुनाते रहते हो मगर आपको उसके बोल तो भूल जाते हो, मगर जो उसकी रिदम होती है, जो टोन होती है, वो आपको एकदम घूमती रहती है आपके दिमाग में? ऐसा
0: हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत बारी होता है एक्चुअली। जब गाने की बारी आती है ना, स्पेशली जब हम अंताक्षरी खेलते हैं ना अखिल सर, तो तब हमारे गाने ना ऐसे गुम हो जाते हैं, जैसे डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है, माइंड की डायरी में स्किप हो जाते हैं। और बेवजह जब हम किचन में खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे गाने याद आते हैं, बस पूछिए मत। मम्मी कहती है बस बहन चुप हो जा, कितने पैसे लेगी चुप होने के।
1: तो ले लिया करो, उससे मौके पे चौका मार लिया करो, 100 रुपीज पॉकेट मनी ले लिया करो।
0: अगर पैसे ले लेंगे ना हम मम्मा से, तो वो डबल बदले में और काम करवाएंगे, इसलिए हम पैसे नहीं लेते।
1: पड़ोसी बर्तन
0: तो पर ठीक है, करना पड़ता है सारी कार्यों को मैनेज। बाकी ये प्यारा से गाना, अदिति कौन है ये पहले मुझे ये बताओ आप।
1: ये इसमें करेक्टर है।
0: अच्छा, वैसे बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। अच्छा, इनका नाम बताइएगा, ये जो अभिनेत्री है।
1: अब ये अपने श्रोताओं से पूछते हैं कि ये अभी।
0: अच्छा दोस्तों, हाँ हाँ, ये गुड आइडिया दिया है आपने। दोस्तों अभी हम ये जो ट्रैक प्ले कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, जाने तू या ना जाने। एंड ये जो ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं, कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया ट्रैक है, आपको अभिनेत्री का नाम हमें बताना है, उस एक्टर्स का नाम आपको मुझे बताना है। फटाफट से जो कॉल करेगा वो इन एक्टर्स का नाम बताएगा, फिर हम
1: अच्छी रील भी बनाती है, वो एक्ट्रेस
0: रील्स भी बनाती है, खूबसूरत भी हैं और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं।
1: सब तो आपने सारा हिंट दे दिया।
0: हाँ, अब तो आप इजीली बता देंगे एवरीवन। चलो अब गाना सुन लेते हैं बिना किसी देरी के।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
1: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है. और दोस्तों, आप भी अगर कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं तो हमें जल्दी से कॉल लगाइएगा. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. और अभी सुनिएगा आप एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम बहुत ही प्यारी सी आवाज़ बब्बू मान जी की. और ये प्यारा गाना है, आप सब इंजॉय कीजिएगा. मैं लौट कर आती हूँ.

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, अभी वक्त हुआ है 4:33। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं
0: जी आपको भी आदाब, नाम बताइएगा अपना। जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी।
1: फरमाइश है, इलाका जिंदा जाना है। जान से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ।
0: अच्छा ठीक है सर, ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं।
1: जी, हमारे साथ में डॉक्टर सैयद तारिक अली है।
0: हाँ जी। ओके ठीक है जी, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी इलाका से। और हम लौट कर आते हैं, आप तब तक हमें फोन मिलाइएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896।
2: तुझे

0: वैसे दोस्तों अच्छा तो लगता ही है जब आपका हेलो फरमाइश में कॉल लग जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है ना दोस्तों कि हमें यकीन नहीं होता, रैंडमली हमारा कॉल रिसीव हो जाता है। एंड जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना कि आज तो मेरी बात होकर ही रहेगी, तब बात नहीं हो पाती है, लेकिन जब हम नहीं सोचते तब वो चीज़ें हो जाती है, तो उसमें एक अलग ही खुशी होती है। एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, क्या उनका नाम है, उन्हीं से जान लेते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: खुशी जी को नमस्कार।
0: आपको भी जय श्री राम। अशोक जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा आप कैसे हैं सब।
1: मैं ठीक हूँ, जबलपुर एमपी से आपका छोटा अशोक जी बोल रहा हूँ।
0: जी अशोक जी बताइएगा कैसा मौसम है एमपी का।
1: सब सब ठीक है, बस आपने गाना सुना है, आपके प्रोग्राम तो और अच्छे हो गए।
0: जी धन्यवाद आपका सर, आप एमपी में भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और कॉल भी हमें लगाते हैं, दिल से धन्यवाद आपका। बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी।
1: सुना दीजिए, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जरा सा झूम लूं मैं।
0: जरा सा नहीं, आपको पूरा झूमना है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए गाना आपको सुनवाते हैं, आपने कॉल किया, धन्यवाद सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: आपको भी नमस्कार। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान जी और काजोल जी पर फिल्माए गए प्यारा सा ट्रैक, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैं तो इस गाने को सुनने के लिए बेकरार हूँ, वैसे आप भी इंतज़ार कर रहे हैं ना कि मैम अब बातें भी कम कर दीजिए ना, प्लीज़ गाना सुनवा दो। चलो गाना सुनते हैं फिर।

0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं. लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप ऐसे गाने चुनकर लाया करो, कुछ इस तरह के ट्रैक जो आप भी सुनो, आपको भी आनंद आए और सामने वाले जो सुने वो भी थोड़ा सा झूम उठे, थोड़ा सा वो हैप्पी हो जाए. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो तमाम श्रोता हमें सुनते हैं और कुछ गाने होने चाहिए ना यूनिक से. देखिए, एक अपने गाने होते हैं जो पर्सनली हम सुनते हैं जब हम अकेले होते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम खुद भी खुश होते हैं और सामने वालों को भी उसमें खुशी का मौका देते हैं, खुश होने का मौका देते हैं. और अभी हमारे साथ कौन कनेक्ट हुए हैं, जानेंगे उनसे उनकी फरमाइश. हेलो फरमाइश. हेलो.
1: हेलो फरमाइश.
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हैं. बताइए कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं, आप सुनाइए आप कैसी हो?
0: हाँ जी, हम बहुत अच्छे हैं सर. बताइएगा आप, आपके परिवार में सब ठीक हैं?
1: हाँ सब ठीक हैं. और आपके रेडियो परिवार में?
0: जी रेडियो परिवार में सब बिंदास हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं.
1: और हमारे आनंद सर जी कैसे हैं?
0: आपके आनंद सर भी बहुत बिजी हैं, बहुत काम में बिजी रहते हैं वो पूरा दिन. आप बताओ कौन सा गाना सुनोगे आज?
1: सपना चौधरी का गाना सुनवा दियो.
0: अच्छा ठीक.

0: ठीक है, तो आप डांस करोगे पक्का?
1: हाँ
0: ठीक है, अगर आप डांस करेंगे तो हम फिर सपना चौधरी जी का एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है वो प्ले करेंगे। एंड उमेश जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
1: थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, उमेश जी की पसंद पर सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। और दोस्तों, आपने ये गाना पहले भी सुना होगा, लेकिन आज लॉन्ग टाइम के बाद आपको सुनने का मौका मिल रहा है, तो सुनते हैं बिना किसी देरी के।

हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। और वक्त हुआ है 4:59। जी हाँ, 4:59 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ टाइमिंग हो गई है और अब मेरे जाने का भी वक्त हो गया है। लेकिन आप बिल्कुल भी उदास ना हो, नेक्स्ट प्रेजेंटर यहाँ पर आ चुके हैं आरजे रीना जी, जो आपकी शाम को बनाएंगे ब्यूटीफुल। एंड रात को 9 से 10 अखिल सर आते हैं, जो आपकी शाम को बनाते हैं और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन। एंड दोस्तों, अभी फ़िलहाल मुझे दीजिए जाने की अनुमति। आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए एंड रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ, हेल्दी फूड खाते रहिए। एंड आज पूर्णिमा है तो चांद के दर्शन भी ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन चंद्रमा जी के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। एंड चंद्रमा मन का कारक होता है, जो मन हमारा बड़ा चंचल होता है। आपको पता है, एक पल यहाँ तो एक पल वहाँ जाता है, और आप चाहते हैं कि हमारा मन जो है वो थोड़ा स्थिर हो, तो उसके लिए आपको चंद्रमा जी के दर्शन करने हैं। एंड वंस अगेन पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग।

0: आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी।
1: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave defense personnel. We would like to inform our listeners that this is the second phase of this year's defense investiture ceremony, in which Honorable President Srimati Draupadi Murmu would be conferring the Ati Vishisht Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal and Sarvottam Youth Seva Medal.
0: इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। उनके साथ हैं श्री एचडी कुमार स्वामी, साथ में श्री किरण रिजिजू जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, साथ ही मौजूद हैं इस वक्त सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, सीओएस जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर पधारेंगी और उसके बाद औपचारिक रूप से ये समारोह प्रारंभ होगा। हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि 105 बहादुरों को, सैनिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए विशिष्ट योगदान देने के लिए 56 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवाएं देने के लिए 12 सैनिकों को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवाएं देने वाले 30 सैनिकों को परम विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध में विशेष बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 7 सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे।
1: Dear listeners, as we witness this distinguished awards being conferred at this Ganatantra Mandapam at the Rashtrapati Bhavan, we celebrate their unwavering service to our nation. All awardees and the proud families are seated, waiting for the arrival of the Honorable President.
0: हम ये बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति का इस वक्त इंतजार, उपराष्ट्रपति जी इस वक्त पधार चुके हैं और वे विराजमान हैं और उन्हीं के साथ ठीक उनके पास बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक दोनों तरफ 3-3 सैनिक मौजूद हैं जो अपनी पूरी वेशभूषा में इस सभागार की शोभा बढ़ाते हुए दोनों तरफ आज वे 105 लोग बैठे हैं जिन्हें ये सम्मान दिए जाएंगे और आगे की रोज में वे लोग, इनके परिवार के लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण और रक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले हमारे सैन्य अधिकारियों और बहादुरों का आज यहां पर सम्मान होगा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में।
1: टोटल ऑफ 105 अवार्ड्स विल बी कॉन्फर्ड टू द अवार्डीज टुडे, अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट दैट ऑनर्स आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी पर्सनल for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
0: सभी को प्रतीक्षा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की और वे पधारेंगी और उनके बाद रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार उनसे स्वीकृति लेंगे कि आज का समारोह प्रारंभ किया जाए और उसके बाद और उससे पहले राष्ट्रपति के आगमन के बाद सुबेदार प्रेम बहादुर गुरंग बैंड मास्टर हैं महा रेजिमेंट सेंटर सागर के, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और ये बिगुल की आवाज आप सुन रहे हैं।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
4: कॉल 8826213131।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट, विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद, कॉल नाउ 9412211111।
6: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
7: जन जन तक पहुंचा संदेश।
4: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ। इवनिंग मस्ती शो में श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:10 हो चुके हैं, और टेम्परेचर की बात करूं तो आज यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि और दिन के मुकाबले आज 3 पॉइंट कम है। और मतलब बादलों ने छा तो रखा है भाई, बारिश नहीं आने देंगे वो, लेकिन उमस पूरे मूड में है। मतलब बाहर जाओ, धूप भी और उमस, इस उमस में ना मतलब बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सो रीना 2 घंटे के लिए आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है, ढेर सारी बातें करेंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है श्रोताओ। और आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये भी बताऊंगी आज क्या स्पेशल डे है। तो बस आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रही, अगर आप चाहते हैं कि भैया पता चले तो तभी पता चलेगा जब आप कनेक्ट रहेंगे। रेडियो की सुई बिल्कुल भी नहीं घुमानी है, ट्यूनिंग करके रखना है आपने FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: एक कुत्ते, इडियट।
3: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 5:16 हो चुके श्रोताओ, और आज का दिन हमारे लिए बेहद और ज्यादा खास, क्योंकि आज है 29 तारीख, और 29 तारीख में यानी कि कौन कौन से डे मनाए जाते हैं, जो कि उनमें से है संत कबीर जी के, आज उनकी जयंती है। और उनके दोहे आप सभी ने भी सुना होगा ना, बहुत ही शानदार होते हैं, यानी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम हमेशा डिपेंड रहते हैं कि आज तो महीना बीत जाता है, हम उस काम को कभी कर नहीं पाते हैं। इसीलिए जो कुछ करना है कल के ऊपर डिपेंड मत रहिए, कल किसी ने नहीं देखा, इसीलिए जो करना है आज करिए। और इनके बहुत सारे दोहे हैं जिसमें है यानी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब होए कुछ, माली सोचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि जब बरसात आती है तभी पेड़ों में फूलों में कलियां खिलने लगती हैं। और आगे के एक और उनकी जो है दोहे हैं मुझे बहुत पसंद है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोए, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोए होए। हम हमेशा दूसरों में बुराई ढूंढते हैं कि ये बुरा है वो बुरा है, लेकिन कभी अपने अंदर हम बुराई नहीं ढूंढते हैं। लेकिन कबीर जी ने कहा है कि दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने से पहले खुद के अंदर बुराई ढूंढिए, क्योंकि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, जब आप खुद बदलेंगे तभी दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। तो आगे से ध्यान रखिए और यूं ही बने रहिए अर्जुरीना के साथ, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए एक बहुत ही शानदार गाना सुनवाते हैं आप सभी को।

है तू? नहीं मानेगा?

देखो जी, खामोश तो नहीं होने वाले हैं, फिर से आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और भाई साहब, ये जो गाना है ना, मारी मारी, सच में बड़ा ही फैंटास्टिक गाना है। और आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है और सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी, समय की बात करूँ तो 5:25 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप अभी ऑन द वे हैं। तो आज वैसे सरकारी जो कर्मचारी है, हर किसी के आज 4 ऑफिस की छुट्टियां हो गई थी, क्योंकि हमारे यूपी में यानी कि मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं आज। तो वहां पर तो बहुत रस, बहुत ज्यादा क्राउड होगा, इसी वजह से मतलब छुट्टियां जल्दी कर दी गई है आज। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी ट्रैफिक में हैं और जहां पर आपको बहुत ज्यादा जाम दिखे, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। और भाई, आज मुरादाबाद की जो सड़कें हैं ना, सच बताऊ, चमक रहा है, चमक। यानी कि 2 के अंदर कैसे माहौल चेंज हो जाता है ना, वो पता चलता है जब बड़े बड़े कोई अधिकारी आते हैं तो सच में। और आपसे यही कहना चाहेंगे, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूले श्रोताओं। और मैं अगले लिंक में आप सभी को बताने वाली हूँ क्योंकि 1 जुलाई से कौन सा अभियान है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई से बच्चों के स्कूलें भी खुल जाएंगी। और कौन सा वो अभियान है, अगर आप जानना चाहते हैं तो बस कनेक्ट रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी चलिए जी, ठुमका लगा लेते हैं थोड़ा सा।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: क्या बात है जी, बहुत ही फैंटास्टिक आपने गाना सुना है, साबुन में लग गई आग दिल मेरा। अच्छा ये बताओ श्रोताओं कि साबुन में आग लग सकती है क्या? अगर लग सकती है तो आप मुझे महसूस करके बता सकते हो। नंबर है 9823789689 और आर्जुरीन आप सभी के साथ कनेक्ट है यूनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 5:35 हो चुके श्रोताओं, बस अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि 1 जुलाई से, कल की बात है, उसके बाद 1 जुलाई, और 1 जुलाई से आखिरकार क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, जिसमें एक है बहुत ही और बेहद खास, यानी कि हर बच्चे तक शिक्षा 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, यानी कि स्कूल चलो अभियान। और ये स्कूल चलो अभियान हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की जनता के नाम एक पाती की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा हमारे सनातनियों के लिए, हम देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी इंस्पायर किया जाए, उनको भी समझाया जाए कि स्कूल जाओ, पढ़ो, तुम आगे बढ़ोगे, देश का नाम रोशन करोगे, कल को तुम डॉक्टर बनोगे। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता है तो उनको भी आप समझा सकते हैं स्कूल जाने के लिए, कि स्कूल जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में ना कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनपढ़ रह जाए, क्योंकि हर किसी को शिक्षा का अधिकार है और हम सभी को ये सब मिलकर करना है। कि ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो आप उसको नहीं समझा रहे हो तो फिर ये एकता नहीं रहेगी। इसीलिए छोटा हो या बड़ा, हर किसी को समझाए स्कूल जाना ज़रूरी है। इनफैक्ट आपको अगर पढ़ाने का मौका मिलता है ऐसे बच्चों को जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो गड्डी लुहार वाले होते हैं, जो स्कूल बहुत ही रेयर बहुत कम जाते, तो आप उनको पढ़ा भी सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं स्कूल जाना बहुत जरूरी है। चलिए श्रोताओं लौट कर आएंगे और फिर एक और बिजली विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है सुनने के लिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए एक गाना बहुत ही शानदार है, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं।
1: ओ माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: 1641। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग यार। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी समय की बात करूं तो 5:49 हो चुके श्रोताओं, इवनिंग मस्ते शो में आप कनेक्ट है। और यानी कि हमें हर महीने बहुत टेंशन होती है ना। अरे अरे, मैं बताती हूँ मेरी जान, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, रीना है ना बताने के लिए, फिर बेफिक्र रहिए आप। यानी कि बिजली का बिल हर महीने हर घर की चिंता होती है, लेकिन अब यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि जुलाई से नया बिजली टैरिफ लागू हो सकता है, जिसमें बिजली की जो दरें हैं वो कम हो सकती है। और इतना ही नहीं, स्मार्ट मीटर का खर्चा उपभोक्ताओं के लिए बजाय बिजली कंपनियों द्वारा उठाने पर भी विचार किया जा सकता है। और आपको किसी भी चीज की जब प्रॉब्लम होती है तो 1912 हेल्पलाइन पर यानी कि आप शिकायत भी दर्ज कर सकती हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो मतलब जो बिजली कम आ सके उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अभी तक इसका जो प्रूफ है वो अभी तक आने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन जताई जा रही है कि 1 जुलाई से ये लागू कर दिया जाएगा, जिससे थोड़ा सा बिजली की राहत हो पाएगी। अगर आप यूपी से है तो ये खबर ऑल न्यून आपके लिए है श्रोताओं, क्योंकि यूपी में भी हर घर में परेशानी होती है बिजली को लेकर, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि भाई गर्मी में तो एसी चलता ही चलता है, कूलर चलता ही चलता है, पंखे चलते ही चलते हैं, यानी कि 24 घंटे 48 घंटे कूलर पंखे चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है, अदरवाइज चलाए जाते हैं। और इस गर्मी में बिजली बिल 20,000-15,000 ऐसे ऐसे आते हैं। सो इस पर क्या है, जब हम देखते हैं कि बिजली बिल इतना आया तो टेंशन हो जाता है कि बताओ भैया इतना बिजली बिल कैसे पे करें। अब वहीं थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि जुलाई से देखिए क्या क्या कौन कौन से नियम है वो चेंज होने वाले हैं। वो तभी पता लगेगा ना जब आप आर जोरीना के साथ कनेक्ट रहेंगे श्रोताओं, अदरवाइज तो बिल्कुल भी कतई भी नहीं पता चलेगा। अच्छा, मेरा नाम आप सभी से एक सवाल है कि क्या आपने ग्रीन एप्पल देखे हैं और ग्रीन एप्पल आपने खाए हैं और वो खाने में कैसा लगता है आपको, महसूस करके हमें बताना है। नंबर है 9837896896। मोस्टली हम रेड एप्पल खाते हैं, तो आपसे आज मैंने पूछा है कि ग्रीन एप्पल है वो किसने किसने खाया है, बताइए। फिलहाल ये गाना एक बहुत ही प्यार है।

0: you hear the rhythm, start to move.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्र
2: When you hear the rhythm, start to move.

0: बेटे हाथ में। पेश मेहता सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल रूपेश मेहता की बारी है अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल ग्रहण करने की। आप विशिष्ट सेवा मेडल से पहले ही अलंकृत हो चुके हैं।
2: अब सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। युद्ध अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: The first recipient of Sarvottam Yudh Seva Medal, Lieutenant General Pratik Sharma, PVSM, AVSM, CM, from the Madras Regiment, Headquarters, Northern Command.
1: सात बहादुरों को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सबसे पहले बारी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, मद्रास रेजिमेंट के आप अधिकारी हैं। प्राप्त करते हुए युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा
2: मेडल। एयर मार्शल नगेश कपूर परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
0: एयर मार्शल नागेश कपूर PVSM AVSM VM फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने की बारी अब है भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयर मार्शल नागेश कपूर की। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप फ्लाइंग पायलट हैं भारतीय वायुसेना के।
2: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार टू सेना मेडल एंड बार।
0: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई UISM, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी।
1: कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी विशिष्ट सेवाएं दी आपने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
0: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेना मेडल, वायु सेना मेडल फ्रॉम फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना के एक और उत्कृष्ट अधिकारी पायलट एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और अपने
2: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, सेवा निवृत्त।
0: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह PVSM AVSM NM रिटायर्ड।
1: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अब प्राप्त कर रहे हैं अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। आपने भारतीय नौसेना में युद्ध के दौरान
2: एयर मार्शल दी थी। नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, सेवा निवृत्त।
0: एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो यानी कि देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:09 हो चुके हैं श्रोताओं। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप ट्रैफिक में हैं तो आप हमें महसूस करके बता सकते हैं ताकि और भी उस रूट से जाने वाले हैं वो यानी कि बच सके। और भी ढेर सारी बातें करने वाले हैं और आप सभी के साथ लेकर आने वाले हैं यानी कि आज का कड़क सवाल, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आज का दिन हमारे लिए खास है। आज वट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है यानी कि जो वृक्ष है वट वृक्ष का पूजा भी की जाती है इस पूर्णिमा वाले दिन। और आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन भी मनाया जाता है यानी कि आज जगन्नाथ भगवान जी को 108 कलश यानी कि जो 108 कलश है उनसे आज उनको नहलाया गया है। और ये कहा जाता है कि 108 कलश की जल से नहाने के बाद भगवान जगन्नाथ यानी कि 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसके पीछे की कहानी बहुत प्यारी है, बहुत शानदार है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। आखिरकार वो क्यों 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं, लौट कर आते हैं इसी स्टेशन पर। बस आपने कहीं नहीं जाना जी, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि देखिए जिंदगी में गुनगुनाना बहुत

0: के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
3: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:19 हो चुके हैं श्रोताओं, यानी कि अब हम बात कर लेते हैं वेदर अपडेट के बारे में। हालांकि ये कहा जा रहा था कि आज भैया बारिश आने वाली थी, यानी कि झमाझम बारिश होने वाली थी आज, लेकिन आज बारिश नहीं हो पाई। लेकिन कहा जा रहा है कि एक हफ्ते तक मुरादाबाद में बारिश बताई जा रही है, यानी कि कल की अगर मैं बात करूं तो कल 75% बारिश आने की संभावना है और अगले दिन 95% और उससे अगले दिन भी 90%, यानी कि संडे तक 75% बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन भगवान से ये कहना चाहेंगे कि जो आज आपने ये उमस और बादल जो आज घिरे रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश नहीं आई, यानी कि कहते हैं ना जो गरजता है वो बरसती नहीं है, तो भगवान जी आपसे यही कहना चाहेंगे कि बस गरजिए मत, बरस जाइए, क्योंकि बरसना मुरादाबाद में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बाहर जाने के लिए भी इंसान को सोचना पड़ रहा है कि बाहर जाऊँ या ना जाऊँ, घर से एक कदम निकालने का मन नहीं करता है। तो भैया मुरादाबाद में कहा जा रहा है कि अगले एक हफ्ते तक बारिश आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर मैं मैसेज की बात करूँ तो मैसेज आता है मेरे पास। हेलो हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। रोड पर जाम लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज हमारे यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुरादाबाद में जो आए हुए हैं। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, क्योंकि आज तो सड़क पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड रहने वाला है और वैसे उनकी एक झलक देखने के लिए भैया हर कोई बेतावला रहता है और आज तो ट्रैफिक जाम आपको मिलेगी। इसीलिए ऑफिस की जो छुट्टी है वो 4 बजे घोषित कर दी गई थी भैया, कि ऑफिस की छुट्टियाँ वो 4 बजे ही हो जाएगी, लेकिन अब ये रस तो आज रहने ही वाला है। और अगले मैसेज की बात करूँ तो पूनम जी हमारे साथ इंदौर से कनेक्ट होती हैं और इनका कहने की गुड इवनिंग रीना जी, आज हमेशा मैं आपको यूट्यूब पर लाइव देखती थी लेकिन अब मैं सुनती भी हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार मैसेज कर रही हूँ आपको, क्या बात है जी, थैंक यू सो मच जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ विवेक जी कनेक्ट होते हैं काठ रोड से और इनका कहना है कि आपका रेडियो सुन रहे हैं। मैडम बड़ा अच्छा लग रहा है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच कि आप रेडियो सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है जी। चलिए फिलहाल वेदर अपडेट के साथ, ये गाना भी बहुत ही शानदार है क्योंकि आज का मौसम भी थोड़ा औसम है ना जी, तो चलिए गाना सुनते हैं। अगर आप गाड़ी में हैं तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, तभी मज़ा आएगा सच में।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: जी गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बचाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और इसी बीच मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल। लेकिन कड़क सवाल बताने से पहले कुछ मैसेज है उनको भी शामिल करना भैया बहुत जरूरी है। सो ये मैसेज आता है हमारे पास अमरोहा से, नेहा कनेक्ट होती है और इनका कहने कि नमस्ते रीना मैम, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे जी। आप के जो आप जो गाना प्ले करती हो ना, सच में बहुत ही फैंटास्टिक होता है, दिल खुश कर दिया आपने। और अभी मतलब जस्ट जो आपने पूछा था कि ग्रीन एप्पल क्या आप खाते हो तो वो कैसा होता है, सच बताओ बहुत रसीला होता है। और साथ ही साथ मैं बहुत खाती हूँ ग्रीन एप्पल। सही कहा जी आपने, ग्रीन एप्पल बहुत ही शानदार होता है। जो रेड वाला एप्पल है ना उसे भी ज़्यादा रसीला होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपने ग्रीन एप्पल नहीं खाया तो एक बार ज़रूर खाइएगा। और आपसे मैंने पूछा भी है कि कौन कौन ग्रीन एप्पल खाने के शौकीन है और कैसा लगता है आपको उसका टेस्ट, रेड वाला बेटर लगता है या फिर ग्रीन वाला बेटर लगता है। एक और मैसेज है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन हंसारी जी। सैयद शारिक अली, गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो सुन रहे हैं, आपका मतलब जो आप गाने प्ले करते हो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ आपने अभी गर्मी के बारे में बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वाकई बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बारिश की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत है, खेती बाड़ी के लिए भी और इंसानी ज़िंदगी जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और सभी से यही कहूँगा कि दुआ करें कि बारिश हो जाए। बिल्कुल जी सही कहा आपने, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज तो वैसे भी उमस वाली गर्मी है। और खेतों की जैसे कि आपने बात करी है तो मैं कहना चाहूँगी क्योंकि देखिए अब खेतों में धान लगने वो शुरू हो गए हैं,

अब हर खेत में बहुत ही जगह तो धान लग चुके हैं और बहुत जगह शुरू हो चुके हैं लगाने के लिए। तो इस वक्त जब खेतों में धान लगाने शुरू होते हैं ना, तो बारिश की सच में बहुत नीड होती है कि ताकि जो धान की बुआई होती है उसकी फसल अच्छे से बन पाए। और इसी बीच आज का कड़क सवाल बहुत ही आसान है, बस आपने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके फेस से ही मिलेंगे। देखिए मैंने हिंट दे दिया कि आपके फेस से ही क्वेश्चन मिलने आंसर मिल जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, वो क्या है जो बहती है पर ना नदी है ना ही पानी है। नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करके बताना है कि वो क्या है जो बहती है पर ना नदी है ना पानी है। सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल एक और गाना आप सभी के बीच, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं। जी बस आपने कितने नहीं जाना जी, आरजू रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ऑली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल सपना चौधरी का ये वाला गाना बहुत ही प्यारा है।

गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:42 हो चुके श्रोताओं, और 1 जुलाई से एक और नियम है जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेज आने वाले हैं और आने की संभावना जताई जा रही है। वो ये है कि अगर आप LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली हर घर में इस्तेमाल होता है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। 1 जुलाई से LPG से जुड़े कुछ नियम लागू होने जा रहे हैं। अब जिन उपभोक्ताओं के पास यानी कि ई केवाईसी नहीं कराई है तो उनके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत पड़ सकता है, वरना कुछ मामलों में यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो अब इसके जो नए दोबारा गैस बुकिंग के जो नियम है वो बदलाव किए जाएंगे ताकि जो फर्जी वाले हैं उनसे बचाई जा सके, उन पर रोक लगाई जा सके। इसीलिए अगर आपने अभी तक EKYC नहीं कराई है तो बिना किसी देरी के अपने गैस एजेंसी या अधिकृत माध्यम से इसे पूरा कर ले, इससे आपकी गैस सेवा बनी रहेगी और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। याद रखिए, समय पर की गई छोटी सी सावधानी बड़े परेशानी से बचा सकती है। जानकारी रखें, सतर्क रहे, अपने परिवार और नए नियमों के बारे में ज़रूर जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो भैया, अगर आपने EKYC नहीं कराई है तो फटाफट EKYC करा लीजिए, वरना दिक्कत आने वाली है। ठीक है जी, और आज का कड़क सवाल भी बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान पूछा है मैंने आप सभी से, क्योंकि इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से बता पाएंगे। सो आज का कड़क सवाल यही है, वो क्या है जो बहती है पर ना नदी है ना पानी है? और ये अपने फेस से ही आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, और हम किसी के पास बैठते हैं तो थोड़ी सी शर्मिंदगी हमें महसूस होती है। क्या हो जाता है जब शर्मिंदगी महसूस होती है? सो आपने नंबर हमारा है 9837896896 पर मैसेज करना है। वंस अगेन एक बार और रिपीट कर रही हूँ, वो क्या है जो बहती है पर ना नदी है ना पानी है? सोचिए क्या बहती है, और किसी के पास बैठने के लिए भाई सोचना पड़ता है कि ठीक होने के बाद ही जाएंगे।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम

क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है आर्जरीना के साथ। अब कनेक्ट है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और भैया समय अपनी चरम सीमा पर है, बिल्कुल अंजी, बस हमें ध्यान रखना होता है थोड़ा सा, अदरवाइज ध्यान नहीं रखा तो समय कभी किसी का इंतजार नहीं करती। श्रोताओं ये आपको भी पता है। यानी कि अब बढ़ते हैं आज का जो कड़क सवाल है, वो क्या है जो बहती है पर ना नदी है ना पानी है, और आपके फेस से ही मिल जाएंगे आंसर। बस एक मौका और सोची, लौट कर आती इस गाने के बाद जी। मैसेज आ गए हैं, बहुत सही भी है बहुत गलत भी है, तो सोचिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।

वाह लाला, आय हाय क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। डिस्को दीवानी, ओ भैया डिस्को दीवानी तो हो गया जी, लेकिन अब बढ़ते हैं आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेजेस की तरफ। भैया प्यारे प्यारे मैसेज जो आ गए हैं, आज का कड़क सवाल भी बहुत ही आसान है जी, बहुत ही आसान। यानी कि वो क्या है जो बहती है पर नदी नहीं है, ना ही वो पानी है। चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैसेज हमारे पास जो सबसे पहले आता है ये कनेक्ट होते हैं सुमित मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि नाक है। ओ माय गॉड, हाँ जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो इरशाद हुसैन अंसारी जी का मैसेज आता है, ये कहते हैं कि नाक है, नोज। ओके, रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है, गुड इवनिंग मैम, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी रिहाना, आप बताइए कैसी हैं। अगले मैसेज की बात करूँ तो आंख है आंसर। ओ माय गॉड, ललिता कश्यप जी कन्फ्यूज हो गई हैं आप। प्रीना जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे जी, गाने बिंदास प्ले कर रही हैं, थैंक यू सो मच जी। एंड चाय पी लीजिए, आज मौसम में थोड़ी नमी है। ओके जी, थोड़ी नमी है, चलिए अच्छी बात है, रहनी चाहिए। और इनका कहना है कि जैसे आपने पूछा है ग्रीन एप्पल के बारे में, तो बहुत ही अच्छा होता है, रसीला होता है और अलग होता है वो। बिल्कुल जी, सच बताऊं मुझे तो ग्रीन एप्पल बहुत ही ज्यादा पसंद है। चलिए अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। जय श्री राम, रीना जी क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका कहना है कि आपके कड़क सवाल का आंसर होता है नाक। ओहो, हां जी घाट रोड पर बहुत ज्यादा जाम लगी हुई है रीना जी, योगी जी का काफिला है और भैया जाम लगा हुआ है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। और अगले मैसेज की बात करूं तो नोज है, इनका कहना है कि अपनी नोज है मैम। ओके जी, हाँ जी, नोज तो अपनी होती है। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू मोनू रीना, मेरा नाम भी आ गया जी, वंश रुचि, मतलब पूरा ग्रुप का इन्होंने गुप्ता है ये, और पूरी भैया दोस्तों के नाम भी मेंशन कर दिए हैं। लाइन पर मझोले से कनेक्ट होते हैं जी, क्या बात है, थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो राइट आंसर आया है वो है, यानी कि सुमित जी का हमारे पास सबसे पहले राइट आंसर आया था। तो सुमित जी आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए रीना को सबसे ज्यादा पसंद है दही वाले गोलगप्पे, जो भर के वो दही में मतलब कुछ मिक्स करके वो जो देते हैं, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप खा सकते हैं। मुझे सिंपल गोलगप्पे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो 20 रुपए का गोलगप्पे आप खा सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपको खुद अपने पॉकेट से करना पड़ेगा। चलिए जी, आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज किए हैं, दिल से थैंक यू सो मच। बस इतना ही प्यार चाहिए जिंदगी में, बस आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज आते रहते हैं, तहे दिल से थैंक यू सो मच जी। और अब मैं लेती हूँ यहाँ से कहाँ जी जाने की इजाजत लेते हैं जी, आपको हम मिलेंगे कल सेम टाइम एंड सेम जगह। फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए, बाय बाय जी।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सूलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ। मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मैम
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने पाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम एक इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा
2: जी।
3: जी
4: ये बताइए कि आपके यहाँ

0: जो कस्टमर्स आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
1: ठीक है, हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती हैं।
0: फैमिली ज्यादा
1: जी मैम,
2: हमारे जो माननीय
1: माननीय
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया एक जनपद एक व्यंजन।
1: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन
2: जी, जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
1: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
3: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
4: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
3: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
4: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल सके।
3: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
4: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
3: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
4: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
3: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
4: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
3: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
4: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
3: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
4: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
3: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
4: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
3: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
4: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
3: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
4: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
3: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
4: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
1: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
0: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की CBI की जांच की मांग भी करेगा।
2: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने, अब चूंकि भीड़ है तो इस करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
3: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
4: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही है।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
5: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीओ जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्लियरिटी न होने के कारण से एक भ्रम विस्तृत बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार छीना जा रहा है और इस भ्रम को हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/26 का जो आया था उसको हम निरस्त करते हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के ये सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गाँव में खुशी का माहौल है।
6: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें 2 लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, तो यहाँ से रोहित यादव 2 लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश है, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
0: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेरा फेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
11: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिसपे हम कुछ ना कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे FM मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
12: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
11: थैंक यू वेरी मच मैम, और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को

0: कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की इन्वायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती
1: है। डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी,
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं, नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कंप्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको definitely मजा आएगा इस conversation में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत happy feel कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम situation में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे doctors होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो questions आप हमें भेजते हैं basically, और आज हमारे पास आप ही के questions हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है, जैसे पुराने जमाने
0: दाई का। जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीज, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के लिए आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबॉडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल दी है, पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली, कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते।
1: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल,

0: हाँ, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
1: एब्सोल्युटली। तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच। आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप और उन्हें कब कब कराने चाहिए?
0: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोस एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
1: ठीक है।
0: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 to 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 to 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके भूले के लिए।
1: करेक्ट करेक्ट,
0: गवर्नमेंट इज रनिंग
1: कि एब्सोल्युटली
0: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे। ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3 to 4 हजार रुपए की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट।
1: फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल,
0: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं। डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे। और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है, 15 साल से ऊपर है, तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन। ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं, और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स, आप प्लीज इसे लगवाएं। दूसरी चीज, एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप इयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली, बाई ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें, प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
1: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो, कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो एचपीवी वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है। आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
0: आई वुड से कि प्लीज लगवाइए। ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही, कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए।
1: Absolutely.
0: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
1: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
0: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम, इट शुड बी गिवन 9 to 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
1: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं। ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इससे बिल्कुल

0: भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत सारे मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
1: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना। जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी, मंदिर ऊपर हुआ करते थे तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं। दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स, की ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल्स। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते, थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना।
0: करेक्ट। अच्छा मैम,
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
4: इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए।
5: राष्ट्रपति द्वारा ये अलंकरण 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा, 30 परम विशिष्ट सेवा, 12 उत्तम युद्ध सेवा और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक कर्मियों को उनकी असाधारण उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए गए हैं। ये सम्मान देश में आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। एयर मार्शल तरुण चौधरी को अति विशिष्ट सेवा पदक, वाइस एडमिरल अरुण सोपती को उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं परम विशिष्ट सेवा पदक से लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार

0: पुरस्कार प्रदान किए थे। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी नीति को मंजूरी दी है। 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहने वाली इस नीति का

0: रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कम होगी, परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT में आयोजित टेक फॉर फ्यूचर, फ्यूचर मेकर्स इनोवेटर्स बूट कैंप के ग्रैंड फिनाले और इनोवेशन शोकेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम श्री स्कूलों के विद्यार्थियों ने स्मार्ट सिटी, कृषि, आपदा प्रबंधन और सहायक प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर 20 नवाचारी तकनीकी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए।
3: समारोह के दौरान शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के चार प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय महिला तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ 3 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के अंतर्गत श्री स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा अन्य उभरती तकनीकों में विशेषज्ञ मार्गदर्शन और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री सूत ने कहा कि ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और उन्हें नवाचार आधारित कार्यबल के रूप में तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अलका सिंह।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
4: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
2: श्री कुमार ने कहा कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दाखिल की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में आज सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में सहकारिता जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर सप्ताह भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की।
5: सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 के शुभारंभ के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सहकारिता सामाजिक सहभागिता, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का सशक्त माध्यम है। वहीं सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह सहित दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद भी उपस्थित रहे। श्री सिंह ने कहा कि सप्ताह भर दिल्ली में जागरूकता अभियान, सेमिनार, पैनल चर्चा, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिताएं तथा वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नरेला, द्वारिका, रोहिणी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल सहकारिता व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमयन और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे

0: को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल है। श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
1: Applications launch is going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली विधानसभा में कल डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी की 162वीं जयंती के अवसर पर बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी के संकलित भाषण नामक विशेष स्मारक ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद तथा विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहेंगे। इस स्मारक ग्रंथ में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के संसदीय भाषणों का पहली बार एक संकलित संस्करण प्रकाशित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी अब तक कुल 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी झारखंड के जामतारा और देवघर सहित राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आरोपी पीड़ितों को व्हाट्सएप द्वारा एपीके फाइल भेजकर उन्हें इंस्टॉल करने के लिए उकसाते थे, जिससे पीड़ित की बैंक से जुड़ी जानकारी आरोपी को हासिल हो जाती थी। वहीं पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1392 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले 9 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने इस दौरान यातायात पुलिसकर्मियों को जाम वाली मुख्य जगहों पर लक्षित कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं गलत दिशा में गाड़ी चलाने और बिना अनुमति पार्किंग जैसे उल्लंघनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने पर भी बल दिया। उपराज्यपाल ने पुलिसकर्मियों से स्थानीय निवासियों के साथ जनसंपर्क बढ़ाने और क्षेत्र के हिसाब से समाधान विकसित करने के लिए नागरिक केंद्रित प्रोजेक्ट संगम का भी उल्लेख किया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स एशियन जूनियर चैंपियनशिप में वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक और टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए युवा जिम्नास्ट अक्षत बजाज को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि अक्षत बजाज की मेहनत, अनुशासन और समर्पण देशभर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक और पद्म विभूषण डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर महालनोबिस की दूरदर्शी सोच ने आंकड़ों को प्रभावी नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास का सशक्त माध्यम बनाया। राजधानी में आज दिन भर तेज धूप रही और शाम के समय हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है और शाम के समय हल्की वर्षा, आंधी तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने आज साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और शासन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग के बढ़ते महत्व पर बल दिया। श्री मिश्रा ने नई दिल्ली में 20वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारम्भ किया गया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये कहा

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: माना वो हर किसी से कम बोलती थी। माना वो हर किसी से कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो दो और को हम बोलती थी।
5: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? मेरा नाम आरजे आनंद है। इस वक्त आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम को अमेजिंग बनाने के लिए हमारे साथ एक बड़ा ही फॉन्ट न्यूज बंदा है स्टूडियो में है। एंड जब ये स्टूडियो आने वाले थे तो इनके आने से पहले मेरे को एक ऐसा थॉट आ रहा था कि कोई बड़ा सा बंदा आएगा, बहुत बड़ा सा होगा, भारी भरकम टाइप का, यू नो, एकदम से कुछ बड़ी बड़ी किताबें शिताबें लाएगा। लेकिन जब मैं इनसे मिला तो ये तो बिल्कुल मेरी सेम एज का, मतलब मेरी ग्रुप का बंदा, मेरी एज का बंदा, बिल्कुल मेरी तरह है, एकदम फिट एंड फाइन, एकदम बढ़िया सा। सो हे, हाउ आर यू, कैसे हालचाल है ब्रो? अब जरा इनसे आपको तारीफ कराते हैं और आज ये क्या लेकर आए हैं ये मैं नहीं यही बताएंगे, आज आपको ये क्या स्पेशल सुनवाने वाले हैं। एंड आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन में ना आपको बहुत मजा आने वाला है एंड आप बहुत सारा इंजॉय करने वाले हो। सो सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे आज के अमेजिंग गेस्ट का, जिनका नाम है हर्ष। हर्ष जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप जैन साहब?
6: बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया हूँ। एंड I also looking forward for this great conversation, right? मैं भी expect करूंगा कि जो सामने वाला सुन रहा है उसको भी fun आए and they're gonna enjoy it.
5: I'm
6: here with a lot of one-liners and a very good story to tell you about the startups and yes.
5: क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, इतनी बढ़िया बातें आप कर रहे हो तो ये कहीं सोच साच के आए हो या बस अपना शुरू से चलता आ रहा है ऐसा कुछ?
6: नहीं, इट इज वेरी मच स्पॉन्टेनियस। लाइक मैं जब आया था तो मैं बस यही सोच के आया था कि ठीक है, जाएंगे, जो कॉन्वर्जेशन होगी उसमें जो मेरा पीओवी होगा हम वो रखेंगे एंड वील बिल्ड द कॉन्वर्जेशन देयर एंड देयर ओनली।
5: वेरी नाइस यार, मतलब ये बंदा मुझे लगता है कि फुल ऑन तैयारी से आया कि भैया लिख के कुछ नहीं जाएंगे, जो रैंडम होगा उसको रैंडम ही उसका आंसर्स करेंगे, राइट? क्रिएटिविटी के साथ।
6: यस,
5: दैट्स वेरी ग्रेट। थोड़ा सा अपने बारे में हर्ष बताओ, मुरादाबाद में आप कहां से हो, क्या करते हो?
6: सो मैं मधुबनी कॉलोनी में रहता हूं एंड वी हैव अ फैमिली बिजनेस। वी हैव टू शॉप्स नेम्ड जेनसन्स एंड वल्लभ गारमेंट्स। एंड मैं 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई वर्क्ड इन अ स्टार्टअप फॉर 6 मंथ्स वेयर इन आई पेड ₹20,000 टू देम टू वर्क एंड गॉट नथिंग आउट ऑफ देन। इन समपर मेरे और एलिगेशन आ गए थे, दैट इज अ वेरी गुड स्टोरी, आई टेल यू इन द कन्वर्सेशन। एंड आफ्टर दैट आई वर्कड इन माई ब्रदर्स कंपनी एंड नाउ आई एम वर्किंग विद इन माई फैमिली बिजनेस एंड साइड बाई साइड आई एम डूइंग दिस कॉमेडी पार्ट एंड कॉन्टेंट क्रिएशन।
5: ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये स्टोरी तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा भाई, क्योंकि मुझे लगता है कुछ कुछ स्टोरीज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ना एक मोटिवेशन का काम करते हैं, यू नो, कई बारी वो हमें बहुत सारी चीजों से बचा भी लेते हैं।
6: यू
5: गेटिंग माई पॉइंट? सो उस पर डेफिनेटली बात करेंगे अभी हर्ष से। लेकिन हर्ष, अभी तुम यहाँ पे आए हो तो ऑफकोर्स ये जो कॉन्वर्सेशन है बेसिकली इट्स नॉट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे हम कुछ जोक्स करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो सकता है जो आपको यू नो अच्छा है, आपके अंदर है, आपके टैलेंट की कुछ अलग पहचान हो, बिकॉज यहाँ पे वही लोग आते हैं क्योंकि तुर्रम खा होते हैं और आई एम श्योर आप भी वो हो, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। तो वैसे आप अपने अगर पर्सनल की मैं बात करूँ तो तुम कौन सा तुम्हारा जोनर है, क्या तुम करते हो बेसिकली, मतलब शेरो शायरी पोएट्री या जो कॉमेडी, क्या क्या मतलब आप करते हो?
6: मैं कॉमेडी करता हूँ, वन लाइनर्स मेरा एक वो है कि हाँ कोर है, ठीक है। एंड इंस्टेड में आई राइट सेट्स, मैंने कई बार परफॉर्म भी करा है ओपन माइक्स में, मैंने शोज भी करे हैं अपने पर्सनल, ठीक है। दोज वर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बट यस दे वर गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो इन टू शेरो शायरी, आई राइट अ फ्यू शेरो शायरीज एंड दैट्स इट।
5: अच्छा कहीं ओपन माइक वगैरह करते हो कुछ ऐसा?
6: या आई हैव डन मल्टीपल ओपन माइक्स।
5: दैट्स ग्रेट। अच्छा तो हर्ष के साथ ना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक, एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे, फिर हर्ष के साथ जो एक कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे और ये क्या आज आपको सुनाने वाला है, कैसे आपको हंसाने वाला है, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आज हर्ष का होने वाला है, नॉट मी। हाँ मैं सपोर्ट में रहूंगा बट सारी कॉन्वर्सेशन को हर्ष हैंडल करेंगे। सो अभी मिलते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे. आप आनंद के साथ हैं ऑफ कोर्स एंड आई हैव विद मी हर्ष जैन. हाय हर्ष, वेलकम बैक यू वंस अगेन ब्रो. आपको बोरिंगनेस फील तो नहीं हो रही ना? एकदम बोरिंग शोरिंग तो नहीं लग रहा ना आपको यहाँ पे?
1: बिल्कुल भी नहीं,
0: होना भी नहीं चाहिए यार, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है यार. यहाँ पे हमें फन करना है, एंजॉय करना है, ढेर सारे गाने हैं, म्यूजिक है, मस्ती है. तो मुझे लगता नहीं है कि यार आपको एंजॉय करने में मजा नहीं आ रहा होगा. टेल मी,
1: इट्स गोइंग गुड एंड होपिंग फॉर ग्रेट अहेड.
0: या श्योर. अच्छा तो हर्ष अभी कुछ सुना दो यार. मैं चाह रहा हूँ यार, आजकल ना धोखे शोके बड़े मिल रहे हैं, चाहे वो प्यार श्यार में हो या इंस्टाग्राम पे एवं किसी फ्रेंड के साथ हो. तो आजकल ये धोखाधड़ी वाला सीन बहुत ज्यादा हो रहा है यार. तो इस पे कुछ है तुम्हारे पास कोई बढ़िया सी पोएट्री या कोई शायरी?
1: बिल्कुल है. सो आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी, राइट? मैं जब कॉलेज गया था ना, सो आई एम सिंगल फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स. मैं स्कूल में भी सिंगल था, मैं आज तक के डेट में सिंगल हूँ.
0: मैं तो अखंड सिंगल हूँ भाई.
1: सेम गोज़ विद मी. एंड मीनवाइल ना, मुझे एकदम जैसे हमारे ग्रुप में सब लोग रिलेशनशिप्स में आ गए थे, तो मुझे भी लगातार रिलेशनशिप में आना चाहिए. एंड आई स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स एंड यू विल बी लाफिंग लिसनिंग टू दिस. मेरे को 6 अटेम्प्ट्स लगे गर्लफ्रेंड बनाने में.
0: ओह माय गॉड,
1: राइट? एंड मैं तब ये सोच रहा था 5 में सीए हो जाती है कंप्लीट और मैं 6 में गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, इससे अच्छा मैं बीबीए क्यों कर रहा हूँ, फिर मैं सीए कर लेता यार. दैट वुड हैव बीन अ लॉट इजी.
0: ट्रू ट्रू.
1: एंड उसने भी ना धोखा दे दिया, वो पता नहीं किसी और के साथ चीटिंग वगैरह कर रही थी एंड स्टफ. तो हम लोग का लगभग 7-8 दिन के बाद वो रिवील हो गया, ठीक है. तो फिर जब भी कोई प्यार मोहब्बत आई करता है ना, तो मैं उसको 2 लाइन अपनी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़का धोखा दे जाता है. आई एम नॉट, इट इट्स वेरी जेंडर न्यूट्रल, बट मैं इसमें कहना चाहूंगा मैंने 2 लाइनें लिखी थी है कि माना वो हर किसी से कम बोलती थी. माना वो हर किसी से कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो 2 और को हम बोलती थी.
0: अरे वाह, क्या बात.
1: उसने इतना ऐसा धोखा दिया ना कि दीज लाइन्स हैव स्टेड विद मी फ्रॉम देन एंड ऑनवर्ड्स.
0: ऑलराइट, बट प्लीज यू कैन रिपीट दिस लाइन, मैं दोबारा से इसको सुनना चाहता हूँ.
1: तो लाइन्स ऐसी थी, माना वो हर किसी से कम बोलती थी.
0: माना वो हर किसी से कम बोलती थी,
1: हाथ छूटा तब पता चला वो 2 और को हम बोलती थी.
0: 2 और को भी हम बोलती थी. वाह वाह वाह वाह. इस स्टोरी का, इस लाइन का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो?
1: बहुत लोग कहते हैं ना कि यार जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो वो दूसरे लोगों से कम बात करता है, वो आपसे ज्यादा अटैच्ड होता है. मैंने भी मान लिया, मेरी वाली भी दूसरों से कम बोलती थी इन फ्रंट ऑफ मी. और जैसे ही मैंने उसका हाथ छूटा ना, सो व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप यू डोंट कॉल आई, यू कॉल हम, राइट? हम अपनी बात नहीं करते ना, मेरी, हम कहते हैं हमारी, राइट? तो वो भी जब हाथ छूटा तब पता चलता था वो खाली मुझे नहीं, वो 2 और लोगों को हम बोलती थी. सो दैट इज हाउ इट वेंट.
0: ऑलराइट, मतलब अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पिक्चर की बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है. एंड आई डोंट थिंक कि यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें ना बहुत सारे लोगों के साथ होती है, नॉट यू नॉट मी. एंड बहुत सारे ऐसे लोग जब स्कूल्स में जाते हैं, जहाँ कॉलेजेस में जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार अब हमारी लाइफ में सब कुछ मिल गया है हमें. जब उस पहले इंसान को देखते हैं और हमारे अंदर दिल के अंदर तोते तोते वाले तार बजते हैं, तो हमें लगता है बस ये यही सब कुछ हमारा, एवरीथिंग इज मी फॉर मी, मेरे लिए वो है ना. बट बाद में पता चलता है कि नहीं भाई,
1: वो किसी और के लिए भी है.
0: हम गलत फहमी में है.
1: डेफिनेटली, बिल्कुल. ये तो बहुत होता है एंड आई हैव सीन दैट सो मेनी टाइम्स. मेरे जब मेरा फिर ब्रेकअप हुआ तो फिर सब मेरे पूरा,
0: मतलब इस लड़के का ब्रेकअप भी हो गया भाई, आप सोच रहे हो ये कैसे?
1: दैट वाज इवन लेस देन अ सब्सक्रिप्शन पैकेज. मेरा सब्सक्रिप्शन आपको ले जाओ, ट्रायल भी आजकल 10 दिन का है, मेरा रिलेशनशिप 7 दिन का था.
0: आई कांट बिलीव दिस कि भैया आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं. सोचिए हम अभी भी अखंड सिंगल है.
1: मेरा ट्रायल पे खत्म होने से पहले ब्रेकअप हो गया.
0: ओ भाई साहब, मतलब तुम्हारा थोड़ा तगड़ा वाला था आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है. सी, अच्छा यू नो हर्ष, ऐसे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, हम लोग उनसे बात भी करते हैं. हर किसी की लाइफ में कोई ना कुछ ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में पहला प्यार होता है. तो आपको कैसे पता लगा कि आपका ये यू नो फर्स्ट टाइम वाला है? यू नो
1: फर्स्ट टाइम वाला भी द सिचुएशन वाज समथिंग लाइक कि उसने मुझे सामने से प्रपोज किया था. देन
0: कितने साल के थे जब तुम्हें ये प्रपोजल वाले यू नो पिक्चर्स और ये आने लगे?
1: मेरे को आज तक नहीं आया. मुझे
0: वेकेशन आया तुम्हें कोई ऐसा?
1: नहीं, मुझे आज तक बस एक ही लड़की ने अप्रोच करा है, मैंने उसको हाँ बोल दिया था एंड वो 7 दिन बाद उसने धोखा दे दिया. मेरे को लगता है शायद इसीलिए धोखा दे दिया.
0: अच्छा, तुम इस बात को मानते हो यू नो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है?
1: डेफिनेटली यस.
0: अगर सपोज दैट वो 7 दिन के बाद ना देके 7 सालों बाद देखी थी तो सब ज्यादा दुख होता है.
1: तो ज्यादा दुख होता है
0: ना. 7 दिन में दे दिया तो एटलीस्ट रियलिटी पता लग गई.
1: रियलिटी पता लग गई.
0: एंड आई थिंक अगर हम अभी भी सिंगल है तो अपनी लाइफ में हम बहुत हैप्पी है.
1: डेफिनेटली
0: यू नो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से कि ठीक है यार सिंगल है बट आई थिंक हैप्पी है.
1: मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए.
0: एब्सोल्युटली, और जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, इसी चक्कर में फिर अब जो है ना बेवकूफ बनते रहते हैं कई बार। सो गाइज, आपको वो चीज नहीं करनी है, एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो भैया पहले रिसर्च करो, उसके बाद ही जो है किसी की तरफ आप हाथ बढ़ाओ। वेल आगे बढ़ते हैं, हम एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6।

0: रिसेंटली एक रिसर्च हुआ था और उसमें ना एक फैक्ट चेक किया था, तो रियलिटी चेक में पता लगा कि जिनकी बड़ी हाइट होती है ना, उनकी रात को सोने से पहले हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड जब मैंने ये रिसर्च किया तो मुझे लगा नहीं यार, ये तो मुझे खुद पे अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही मैं इस पे यू नो ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो आज रात को मैं अपनी हाइट सोने से पहले जरूर नापूंगा, बट उसके लिए फिर मुझे सुबह में भी नापनी पड़ेगी ना यार, तो वो कल वो प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा। बट उससे पहले मैं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन भी है और एक रिसर्च भी है, तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि अभी हाइट के ऊपर कुछ सुनने वाला हूँ मैं हर्ष से, तो मुझे लगा पहले आपको ही काम की बात बताता हूँ। हर्ष, आपको पता है ऐसा कुछ फैक्ट और रिसर्च?
1: यार हाइट से तो मैंने बात करना छोड़ दिया, बिकॉज हाइट इज द ट्रॉमा फॉर मी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा रिसेंट ब्रेकअप हुआ, मतलब रिसेंट क्या, मेरा एक लौता रिलेशनशिप ब्रेकअप ट्रायल ब्रेकअप
0: सब कुछ एक ही था,
1: वो सब कुछ एक ही था। और वो भी जो हुआ ना, उसका कोर रीजन जो था, कोर रीजन भी ये था कि उसने स्टार्टिंग में ऐसा बोला कि इंटेलेक्ट बहुत कम है तुम्हारा, तुम ना बातें अच्छी नहीं करते, तुम ना ठीक से नहीं रहते, एंड ऑल। तो मैंने कहा यार ये सब तो पहले भी था, सो यू स्टार्टेड लाइकिंग मी फर्स्ट, है ना, तो ये सब तो पहले से था। सो देन शी सेड यार अब क्या रीजन लाऊं, तुम्हारी ना हाइट मुझसे कम है।
0: ओ माय गॉड,
1: एंड दैट हिट मी सो हार्ड, सो फकिंग हार्ड, कि मैं सोच रहा हूँ यार ये तो गलत हो गया। एंड ऑनवर्ड्स मैंने फिर हाइट पे बात करना ही छोड़ दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी हाइट मेरी हाइट।
0: एब्सोल्युटली, और वो मुझे लगता है कि इस पे तो जजमेंट होना भी नहीं चाहिए यार।
1: डेफिनेटली
0: आई थिंक ये तो हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं यार।
1: हाँ,
0: है ना, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो ऊपर वाला डिसाइड करके
1: भेजता है।
0: आप अपनी हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी थोड़ी ऊंची ऊंची हिल्स पहन के जाओगे, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं आपको यार,
1: वो बिना हिल्स के मुझसे बहुत ऊंची थी।
0: अरे यार, तो फिर उसमें फिर आपको प्रॉब्लम, यू नो, आपने सोचने का और अपने फैसले में थोड़ी जल्दबाजी कर ली आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है। गाइस, आप क्या कहते हो, आप जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। वेल टेल अस, इसके ऊपर तुम कुछ सुनाने वाले, सो आई थिंक मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, आई एम श्योर।
1: मैं आपको एक वन लाइनर, एक दो वन लाइनर से शुरू करते
0: हैं, डेफिनेटली।
1: नेम एन एक्ट्रेस, आनंद भाई आप मेरे को एक एक्ट्रेस का नाम बताओ जिनको कोई रास्ता नहीं मालूम होता।
0: यार सच बताऊं तो मुझे खुद को ही रास्ते नहीं मालूम होते, क्योंकि मैं मुरादाबाद में खुद नया हूँ, तो तुम एक्ट्रेस की बात पूछो मुझे बिल्कुल नहीं पता है यार।
1: कोई एक्ट्रेस, एक रैंडम गेस के उन्हें आपको भी पूछ लो कि ये रास्ता कौन सा, उन्हें कोई नहीं पता।
0: ओके, सी आई थिंक अनन्या पांडे, उसको सब्जियों के नाम नहीं पता, तो उसको रस्तों के नाम कहां से पता होंगे।
1: अनन्या पांडे को पता हो सकता है, बट देयर इज दिस वन एक्ट्रेस नेम्ड दिशा पतानी।
0: दिशा पतानी, ओ
1: सो शी मस्ट नॉट बी नोइंग ऑल द रूट्स।
0: दिशा पतानी, ओ भाई कहां दिमाग लगा रहा है, क्या बात है यार, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। अच्छा, और ऐसा तुम्हें दिमाग में क्यों आया, यू नो, ये वाला?
1: सो देर वॉज दिस वन पिक्चर दे वर प्रमोटिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम,
0: वेलकम टू द जंगल।
1: हाँ, वेलकम टू द जंगल।
0: रिसेंटली
1: मैंने उनको देखा, एंड जैसे ही मैंने उनको देखा ना, बिकॉज दे केम टू टॉयर, तो मैंने वहां जैसे ही उनको देखा ना, रियलाइज यार ये तो बहुत अच्छा जोक निकल के आ सकता है यहाँ से। सो दैट इज हाउ
0: आप गए थे वहां पे?
1: नहीं।
0: अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे देखा?
1: ऑन सोशल मीडिया।
0: ऑलराइट डन। सो यार लेकिन ये बड़ा अल्टीमेट था, मतलब इतना फॉन्टेन यूज कैसे हो सकता है कोई बंदा, की किसी एक्ट्रेस के नाम से, तो मैंने और आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, उसने तुरंत उसका दिशा पाटनी का दिशा क्या है?
1: पता नहीं।
0: बताओ यार। अच्छा, और भी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऊपर आप ऐसे करते हो या फिर कभी किया ट्राई?
1: लेट्स मूव ऑन फ्रॉम सेलिब्रिटीज टू फ्रूट्स, ओके?
0: हाँ, टेल अस।
1: कौन सा फ्रूट कहता है कि जी मैं सबसे खड़ूस हूँ, मैं एकदम बिल्कुल
0: यार, सच में मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इस मामले में बहुत खराब है, मैं बहुत ही, मेरी मतलब बहुत ही गंदी वाली आदत है कि मैं इन चीजों में थोड़ा कम रिसर्च रखता हूँ, बट अब आप ही मुझे सजेशन दो यार।
1: ओके, एनी रैंडम गेस
0: जो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा
1: खड़ूस हूँ, अड़ियल हूँ, और मैं मतलब गुस्सेल रहता हूँ थोड़ा सा, ऐसा
0: ऐसा कौन सा फ्रूट हो सकता है गाइस? सीरियसली आई हैव नो आइडिया, मैं किसको बोलूँ, सारे फ्रूट्स तो इतने सॉफ्ट और इतने प्यारे से होते हैं।
1: Shall I tell you the name? Yes.
0: तू बताए।
1: It's guava.
0: Guava.
1: I'll tell you, ask me why is so guava.
0: यार मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या क्या चूज करूँ, किसको क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, तू बोल दे यार अपना जो।
1: बिकॉज गुआवा सेज अमरूद,
0: ठीक है? ओ, गुआवा इज,
1: गुआवा इन हिंदी इज
0: अमरूद।
1: अमरूद,
0: समझ गया अमरूद, मतलब इसने अमरूद को कर दिया आई एम रूट। ये मुझे लग रहा है कि जापान से तो नहीं आया गाइस, ये मतलब सारे फ्रूट्स को उल्टे से सीधे और सीधे से उल्टे लेके जा रहा है भाई, ये करने के कितने पैसे मिलते हैं आपको
1: अभी? तो मैं पैसे
0: या फिर क्रिएटिविटी कर रहे हो अभी?
1: जस्ट राइटिंग, तुम
0: कहीं पे कुछ ज्वाइन वाइन किए हो क्या, ऐसे कॉमेडी डार्क कॉमेडी क्लास आप कर रहे हो?
1: जस्ट माय फेवरेट कॉमेडियंस मधुर वेल्ली, कविराज एंड रवि गुप्ता।
0: अच्छा, तो आप इनको देखते हो? अच्छा, मतलब यू नो
1: टू मच, आई जस्ट लव देम,
0: वेरी नाइस। तो गाइस ये जो कॉन्वर्सेशन है इसको हम इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे, ऐसे ही हर्ष के साथ ढेर सारी बातचीत हो रही है और होती रहेगी। फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हर्ष से भी हम इजाजत लेंगे, एंड आई एम श्योर आपको भी मजा आ रहा होगा। अगर आपके पास भी ऐसे अल्टीमेट टैलेंट है तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलता है ऑफिशियल आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रियो वाला आनंद के नाम से आपको मिल जाता हूं। अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे आप डीएम कर सकते हैं अपना नाम और अपना टैलेंट. हो सकता है अगला नंबर आपका हो यार. फिलहाल एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक.

0: हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद और आज की शाम हम हर्ष के साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। आई हैव विद मी हर्ष। हर्ष, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है तुम तो इंग्लिश मीडियम वाले हो भाई, तो ये हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश मीडियम वालों की आज वैसे अच्छी खासी जम रही है। वेल, मैं सच बताऊं तो मेरी बहुत कम बनती है यार, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं इंग्लिश में ही पाता हूं यार। इंग्लिश से मेरे को बड़ा डर लगता है, मैं बहुत भागता हूं। अच्छा, क्या डिफरेंस है इंग्लिश मीडियम वालों में ऐसा?
1: यार आई बिलीव ना कोई डिफरेंस है नहीं।
0: वेल, हम लोगों ने क्या इसको बना दिया है?
1: ये हम लोगों ने बना दिया है, और वरना इसमें कोई मतलब डिफरेंस है नहीं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आई विल टेल यू। मेरी मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, आई वोंट बी टेलिंग द नेम, ठीक है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारे स्कूल की जो इंग्लिश की टीचर्स थी वो भी हिंदी के लिए एक दवा देती थी।
0: ओ भाई साहब,
1: तो सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी मेरी क्यों बन पा रही है।
0: आई हैव नो आइडिया, बट जो भी बन रही है अच्छी बन रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम सुपर हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय द वे यार, तुम्हारे पास कुछ है जाते जाते जो तुम थोड़ी सी
1: जाते बिकॉज ओके, सो देयर इज दिस वन सैड स्टोरी। वेल, आई डिड वांटेड टू एंड इट ऑन अ सैड नोट, बट आई रिसेंटली लॉस्ट वेरी लव्ड वन ऑफ माइन, माय ताऊ जी, एंड ही वॉज अ वेरी प्योर सोल, एंड वो मुझसे हमेशा ये कहते थे कि यार तू हंसी मजाक ज्यादा करता है, थोड़ा काम पे भी ध्यान दिया कर। एंड नाउ आई वांटेड टू टेल हिम कि मैं ये हंसी मजाक को अपना काम बनाने की तरफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हेन

0: वी हैव लॉस्ट हिम. सो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एंड इफ एनीबॉडी देयर हैज लॉस्ट देयर लव्ड वन, ठीक है, तो उनके दिमाग में भी क्वेश्चन आते होंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो तीन चार दिन जो होते हैं ना फ्यूनरल के बाद के सबके. तो मैंने उसके लिए बस एक छह लाइनें लिखी थी जो मैं पूछना चाहता हूँ भगवान से, ठीक है. तो ये लाइनें कुछ ऐसी हैं, मैं सुना
1: श्योर डेफिनेटली.
0: तो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि हे भगवान, सुना है आप अच्छे दिल वालों को दी बुला लेते हो. हे भगवान, सुना है आप अच्छे और साफ दिल वालों को
1: जल्दी बुला लेते हो.
0: फिर पूछते क्यों हो कि मेरी बनाई इस सृष्टि में इतने पाप क्यों है.
1: बिल्कुल ठीक
0: है. हे भगवान, सुना है आप साफ दिल वालों को जल्दी बुला लेते हो. फिर पूछते क्यों हो कि मेरी बनाई इस सृष्टि में इतने पाप क्यों हैं. आपने दिल तो इतना साफ बना दिया, फिर बताओ उनके जीवन में इतने सांप क्यों हैं. आपने दिल तो इतना साफ बना दिया, फिर बताओ उनके जीवन में इतने सांप क्यों हैं. चलो मान लिया आपकी बात, जब आप कहते हो कि भाई पुण्य है तो पाप भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा. मैंने मान लिया आपकी बात, जब आप कहते हो कि पुण्य है तो पाप भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा. मैंने बीच सपने उसको गुजरते देखा है. और आप कहते हो पार्थ तू सपना देख पूरा भी होगा.
1: वाह, सपना देख
0: पूरा भी होगा.
1: पार्थ सपना देख पूरा भी होगा.
0: पार्थ जो अपने बच्चों को कहते हैं.
1: समझ गया मैं. बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत ही अच्छी थी ये लाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओरिजिनल वाली क्लैप्स. और मैं बताऊं हर्ष, ये बहुत ही सच्ची और एकदम दिल से निकली हुई बात है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना कुछ चीजें जो हमारी कलम से निकलती है वो एक्चुअल में हमें रूबरू कराती है असलियत से.
0: डेफिनेटली
1: है ना. तो वो चीज हर कोई नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जो अपने ओरिजिनल कॉन्टेंट को लिखना जानता हो. तो अभी तुम्हारी हॉबीज क्या है, क्या चल रहा है इसके अलावा? और अभी
0: I am into family business. I am doing open
1: bus. आगे अब आपको यही इसी पे focus करना है, family business.
0: Family business alongside I'll be taking this my profession as a content creator or a comedian.
1: All right, very nice sir, very nice. मतलब मुझे लगता है कि आज के जमाने में इस चीज पे भी focus करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे.
0: Yes.
1: है ना, तो थोड़ा सा समय के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन. बहुत अच्छा था ये सफरनामा मुझे जो आपके साथ करने को मिला आज, एंड रैंडमली हम लोगों का कन्वर्सेशन हुआ, और रैंडमली हम लोग यहाँ पे आज शो भी कर रहे हैं.
0: Definitely.
1: अनएक्सपेक्टेड था, इट्स नॉट अ प्लान, बिकॉज ये कैसे हुआ आई डोंट नो. बस एक रैंडम शो था, एक आया एकदम से, हम लोगों ने इनको बुलाया, ये भी हाजिर हो गए. बहुत मजा आया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कैसा लगा?
0: बहुत बहुत अच्छा लगा.
1: कुछ कहना चाहोगे? तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पे.
0: मैं बस ये कहना चाहूंगा गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों से बैर ना रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कब अपना पराया, मतलब वो चला जाए.
1: करेक्ट.
0: कीप ऑन लाफिंग.
1: एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है. और मुझे लगता है कि लाइफ में ना छोटी छोटी चीजें अगर हम इनको अपने दिमाग में और अपने जहन में रखेंगे तो शायद हम किसी के साथ ईर्ष्या में रह ही नहीं पाएंगे. यू नो, पॉजिटिविटी मेंटेन रखिए, ऐसे मुस्कुराते हुए अपने बेहतरीन से सफर की शुरुआत के लिए ट्यूनिंग रखिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कीप स्माइलिंग, ऐसे ही स्माइल करते हुए आगे बढ़िए, बहुत जरूरी है. आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो आनंद विद यू, और अभी मैं लूंगा आपसे जाने की इजाजत, क्योंकि समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपसे और ढेर सारी बातचीत करें. लेकिन हाँ, अच्छे गाने आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जो आपको थोड़ा सा हैप्पी फील कराएंगे. तो बस ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो. मिलेंगे जरा सी देर में. हाँ जी, मतलब कुछ और कॉन्वर्सेशन के साथ हम मिलेंगे आपको, बट इस वाले शो में नहीं, किसी और वाले शो में. हाँ जी, फिलहाल मैं कहना चाह रहा था, कुछ कहना चाह रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ. ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, फॉलो कीजिए. और अभी के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, सकता हूँ इस कॉन्वर्सेशन की कुछ क्लिप्स आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी डेफिनेटली देख सकते हैं. अभी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कुछ अच्छे गाने, जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात. बाय बाय, टेक केयर.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार

0: आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकट के क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे पहली जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन

0: विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारे संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8000 करोड़ रुपए की लागत से 30000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित।

0: या की जाएंगी,
1: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
0: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर

0: छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के

0: किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब दिल को सुकून चाहिए होता है तो हम अपने किसी न किसी शौक की तरफ जरूर लौट आते हैं। और कहते हैं ना, किसी को तो गाने सुनना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, तो कोई कुकिंग में शौक रखता है साहब अपना। इस समय ऐसे टाइम पे भी अपने इन शौक को हम अपने से लगा के रखते हैं। तो कोई कहता है कि भैया सुबह सुबह पेड़ों में पानी डालना, तो वो भी एक शौक है। और हर तरह का शौक हमें अपने आप से जोड़े रखता है। तो किसी का तो फेवरेट शौक होता है किसी खास इंसान की यादों में खो जाना। और आज की रात हम बात करेंगे आपके फेवरेट हॉबी की और शौक की, जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो या खुशी देती हो। शौक सिर्फ वक्त काटने के लिए नहीं होते, कभी कभी ये जिंदगी को जीने की वजह बन जाते हैं। जो काम दिल से किया जाए वही इंसान की असली पहचान बन जाता है। और आज हम इन्हीं बातों के ऊपर बात करेंगे, अपने शौक के ऊपर। तो जरूर मुझे मैसेज करें, फटाफट लाइन हमारी खुल गई है 9837896896 पे। आपके अपने इस 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, अपने ही रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद एफएम पे हमें संपर्क करें और हमें बताएं कि कौन सा शौक है जनाब जो आपको कभी कभी सोने भी नहीं देता है। तो चलिए आते हैं अपने अपने शौक को याद करने के बाद।
1: पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
2: Girls like the party.

ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: वेलकम बैक टू 89.6 मेगाहर्ट्ज एफएम मुरादाबाद, आपका अपना रेडियो स्टेशन। तो हमारे पास दोस्तों मैसेजेस आए हैं अभी, और उन्होंने भी अपनी अपनी हॉबीज और अपने शौक बताए हैं। हमारे पास सबसे पहले मैसेज आया है रितिका जी का, जो इस समय एमडीए से हैं। उन्होंने लिखा है, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, और जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं कलर्स के साथ अपना वक्त बिताती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया बात बताई रितिका जी आपने, बिल्कुल सच कहा है। मतलब कलर्स तो एक ऐसी चीज़ है जो भी सिर्फ कैनवास ही नहीं, आपको उससे आपकी ज़िंदगी में भी रंग भरने का मौका मिलता है। जब भी आप कभी कोई पेंटिंग करें, कभी भी कोई आर्ट को लेकर बैठ जाएं, कोई भी चित्र जब आप बनाते हैं, तो आपके दिल से वो चीज़ें निकलती हैं जब आप उसे बनाने बैठते हैं, और आपको याद भी रहता है कि हाँ, मैं कुछ ऐसी कोई क्रिएटिव चीज़ कर रही हूँ। तो नॉर्मली स्ट्रेस तो आपका उस समय गायब हो गई उससे। और दोस्तों अभी हमारे साथ एक लिसनर हमारी हैं जो फ़ोन पे जुड़ी हैं, हमारे साथ कॉल पे जुड़ी हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं हम एक बार। नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कैसी हैं आप? गुंजन।

0: जी
1: मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ। अच्छा अब आप बताओ आज क्या कर रहे हो? तो स्कूल तो बहुत जल्दी खुलने वाले हैं आपके, आपके सारा होमवर्क पूरा हो गया है। तो आपका सबसे, आपने ये बताया था ना एक बार, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है ना? मैथ, इंग्लिश है, मतलब सब्जेक्ट ही बदल दिया आपने एक महीने के अंदर अपना फेवरेट। और आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा हॉबी क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है ये बताओ आज। हम सभी पूरे मुरादाबाद में सभी को सुनना है आज, हॉबीज़ आपकी क्या क्या हैं? भूल गई क्या, हॉबीज ही भूल गई? हेलो, हॉबीज बताओ आपकी, आपकी शौक बताओ आपकी क्या क्या हॉबी है। ज्यादा बोलना या पेंटिंग करना या गाने सुनना या खेलना? पेंटिंग करना आपकी हॉबी है और गाने सुनना वो भी है और डांस करना। क्या बात है, मतलब आप तो कई सारी हॉबीज एक साथ लेके चलती हो अपने साथ। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहती हो आप?
1: पायल
0: पायल की झनक से उठेंगे साजना। चलिए पायल की ज... और दूसरा कौन सा? तो मतलब आपकी दो हॉबी हैं तो आपकी दो गाने चले हैं ना। चलिए ठीक है, चलिए आपकी इन हॉबीज को पूरी करेंगे हम। तो ये थी हमारे साथ गुंजन जी, जो कहती हैं भैया मुझे गाना पूरा ही सुनाना, मैं ना आधा अधूरा गुंजन करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है पूरी गुंजन जी आप खाना भी पूरा ही खाती होंगी। कभी मम्मी पापा पीछे से कहते हैं अरे खाना पूरा कर लो भैया, अपना खाना तो पूरा खा लो। ये तो जी होता ही है जब हम कभी ना कभी खाने बैठते हैं, और आज की तारीख में जब बच्चे साथ में होते हैं तो बच्चों को बार बार कहना पड़ता है भैया खाना तो पूरा खा ले भैया, बाद में अपना गेम खेल लियो, बाद में मोबाइल चला लेना या बाद में अपना कोई काम कर लेना। तो पकड़ना तो पड़ेगा, हॉबी तो उनकी पता करनी पड़ेगी। तो चलिए गुंजन जी की फरमाइश है और कहती हैं कि मेरे को दो गाने सुनने हैं, मगर नहीं, हम पहले सुनाएंगे जो हमारी भी हॉबी में आएगा। एक शायरी सुनाते हैं उससे पहले। रंग सिर्फ तस्वीरों में नहीं होता, कुछ रंग दिल के एहसानों में भी होते हैं, एहसासों में भी होते हैं। रंग सिर्फ तस्वीरों में नहीं होते, कुछ रंग दिल के एहसासों में भी होते हैं। और जो अपने शौक से मोहब्बत करता है उसकी हर मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत होती है। क्या बात है, क्या शायरी लिखी है साहब आपने। बस यही एक कमी है कि आप मैसेज में अपना नाम शेयर नहीं करते, तो नाम ज़रूर हमें शेयर करें जिससे पता चले कि कौन जनाब है जो शायरी का इतना अच्छा शौक़ रखते हैं। रोहित जी का मैसेज आया है रामपुर से, कहते हैं साहब मेरी हॉबी जो है वो गिटार बजाना है, और कॉलेज में इसी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड से दोस्ती हुई थी। तो रोहित जी ये तो आपने बहुत ही अच्छी हॉबी बताई, और मुझे एक बात ज़रूर जाननी है कि गिटार वालों की गर्लफ्रेंड जल्दी कैसे बन जाती है। हाँ, गिटार होता है, गिटार कोई भी ऐसा एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपके आसपास अगर हो तो ज़रूर है कि 100% जल्दी जल्दी आपके अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएंगे और कोई ना कोई आपकी गर्लफ्रेंड जल्दी बन जाएगी। कभी गिटार, कभी शायरी और कभी एक मुस्कान, प्यार की कहानी जो है ना कहीं से भी कैसे भी शुरू हो सकती है। तो बताइए क्या आपकी भी हॉबी किसी खास इंसान से मिलने की है? अगर है तो ज़रूर हमें मैसेज करें 9837896896 पे, या फिर सीधे कॉल ही कर लीजिए। अभी तो भाई साहब स्टेशन के आसपास ही होंगे, या फिर MDMA चटोरी गली के आसपास गाड़ी घुमा रहे होंगे, तो जहाँ कहीं भी हैं कॉल तो आसानी से कर ही सकते हैं। तब तक के लिए सुनते हैं हम दूल्हे का सहरा, सुहाना।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

वेलकम बैक है 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद। और हाँ जी, अभी बात चल रही थी अपने अपने शौक की, तो कई लोगों के शौक जो होते हैं बड़े ही खतरनाक होते हैं। अभी ये हम पे एक मैसेज आया है, मैसेज में लिखते हैं अंकुर जी कि मैं बचपन में पड़ोसियों की घर की घंटियाँ बजाता था और भाग जाता था, छुप जाता था। तो ये तो बहुत खतरनाक शौक था साहब आपका, मतलब आपने घंटी बजाई, वो बेचारा कोई भी किसी भी काम में अंदर बिजी हो और वो पहले बाहर आके देखे हाँ जी कौन आया, और बाहर आके जब देखता है ना कि कोई है नहीं, तो सच में हमें खुंदस आती है, उन्हें पता तो चलता ही है कि किसी ने तो मजाक किया है। तो ऐसे मजाक तो सच में कहते ना, है तो शौक मगर होते बड़े खतरनाक है। और हम पे एक मैसेज और आया है हमारे लिसनर का, काशीपुर से मैसेज आया है अमन साहब का, कहते हैं मुझे रात को बाइक पे राइड करना और गाने सुनना बहुत पसंद है अखिल जी। तो अमन जी आपने बहुत ही बढ़िया मैसेज किया है ये कि आपका शौक है रात में बाइक पे राइड करना। तो भाई साहब शौक भी होते ही ऐसे हैं, किसी का शौक होता है बाइक पे राइड करना, किसी का शौक होता है दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में घूमने का। जी हाँ, दो तीन दोस्त हों, आराम से बातें चल रही हों और गाड़ी में घूम रहे हों, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है, एक तो एक दूसरे को इकट्ठा करना ही आजकल बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। पहले पता करना पड़ता है भाई कहाँ पर बिजी है, और उसके बाद अपने शौक पूरा करना तो एक अलग ही बात है। ठंडी ठंडी हवा हो जाए ना इस समय, क्योंकि आज मौसम जो है गर्मी भरा रहा, थोड़ा सा बादलों ने आके थोड़ा सा तो आराम दिया, मगर था तो गर्मी वाला सीन। और एक शायरी भी हमारे पास आई है, हर इंसान के पास एक कोना होता है, हर इंसान के पास एक कोना होता है जहाँ सिर्फ उसके सपने रहते हैं, और उस कोने का नाम होता है उसका फेवरेट शौक। बिल्कुल सही कहा, एक कोना तो हम हर किसी के पास होता है, चाहे कितने भी बिजी हों, चाहे कितने भी ज़िंदगी में अपनी भसड़ चल रही हों, मगर एक चीज़ तो अपने पास होती है कि हाँ कुछ एक पल को याद करके, लम्हे को याद करके हम भी उस शौक में अपने खो जाते हैं कि हाँ ये तो हमें करना है, ये तो हमें करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आपके पास भी ऐसा कुछ हो तो ज़रूर हमें मैसेज करें 9837896896 पे। अब तो शायद थोड़ा बहुत याद हो ही गया होगा, क्योंकि बार बार बता बता के मुझे तो पक्का वाला याद हो गया ये 9837896896। अगर कॉल नहीं कर सकते तो मैसेज से भी काम हो जाता है। दोस्तों शौक ज़रूर बताना अपना कि कैसे कैसे खतरनाक शौक थे, घंटी बजाने वाले या फिर आवाज़ दे के पीछे पलट जाने वाले, ये भी एक शौक ही होता है साहब। चलिए उससे पहले सुनते हैं गाना, जब तक आते हैं आपके मैसेज।

0: वेलकम बैक है 89.6 मेगाहर्ट्ज एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो जी हाँ, इस गाने के जो बोल लिखे थे वो लिखे थे गुलजार साहब ने, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता होगा कि गाना किसने गाया है। अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे मैसेज करें और फ्री वाउचर्स भी जीतें। कभी आप लोगों ने नोटिस किया कि जब हम अपनी फेवरेट हॉबी करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा असली होते हैं, अपने अंदर के पाए हुए होते हैं। ना किसी को इम्प्रेस करना होता है, ना किसी को कम्पीट करना होता है, सिर्फ खुद के साथ ही वक्त थोड़ा सा बिताना होता है। और हाँ, यही तो होती है कभी कभी ऐसी हॉबी जो आपको अपने से बहुत ही नज़दीक ले आती है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं ईश्वर जी, चलिए बात करते हैं उनके शौक के बारे में, उनके दिल से निकली हुई आवाज़। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: क्या करते हैं ईश्वर जी?
1: सर घर पे रहते हैं, अपने 8-9 जानवर हैं और 3-4 एकड़ जमीन है, इनका करते रहते हैं और साथ में आपके केंद्र के प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: सर ये काम, मतलब आपने जो बता दिया ना, जिस तरीके से आपने घर पे रहने का बता दिया, जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे भाई साहब ऐसे ही होना चाहिए, इतनी एक जमीन होनी चाहिए, इतने ही आसपास जानवर पाले होते हैं और आराम से गाने सुनते रहे। बहुत मस्त है साहब, बढ़िया।
1: सर मुझे पशुपालन का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा सर मेन में लगा रहता हूँ। नहीं, मोहब्बत करता।
0: अच्छी बात है साहब, मोहब्बत तो करनी चाहिए, इंसानों और पशु और दोनों से करनी चाहिए।
1: काफी मोहब्बत करते हैं सर। आज मैं रूम के अंदर सो रहा था तो मेरा पशु खुल गया, तो मतलब वो मेरे पास में ना वो बैठा पड़ा था, तो हमारे सिस्टर ने मुझे उठाया, कह रही इसे देखना, तो फिर मैंने देखा तो मेरे पास में बैठा था वो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कम से कम देखे आपके पास ही आ गया, अगर खुल के कहीं गया नहीं, आप ही के पास आके बैठ गया।
1: सर खुल के कहीं जाते नहीं, वो मतलब काफी हिला हुए हैं ना, मोहब्बत करते हैं काफी, कहते हैं ना इंसान से ज्यादा जानवर वफादार।
0: बिल्कुल सही बात कही। तो आपका शौक क्या है, जानवरों को पालना?
1: हाँ सर, इससे हटके मेरी जिंदगी में रेडियो सुनना और कॉल लगाना दो चीज का शौक है, सबसे ज्यादा सर रेडियो सुनना और कॉल लगाना। सर
0: बहुत ही खतरनाक शौक है
1: सर, ये मेरा शौक बचपन से ही है, मैंने कोई इससे हटके को शौक ही नहीं करा रेडियो। सर
0: बचपन से आप रेडियो सुनते आ रहे हैं?
1: हाँ सर, लगभग मेरी 5 या 6 साल की उम्र थी सर, मैं जब से प्रोग्राम सुनता हूँ, काफी केंद्र सुनता था सर, अब तो मैं खाली ये सुनता हूँ मुरादाबाद और केंद्र में भूल गया।
0: सही है, मतलब आपके साथ साथ आपके जैसे जैसे आप जवान होते जा रहे हैं, हमारा रेडियो भी जवान होता जा रहा है, यही कहना चाहेंगे आप?
1: सर जैसे हम जवान हो रहे हैं इतनी मोहब्बत बढ़ रही है, आगे को मेरा काम हो जाएगी, कम नहीं हो रही सर, कुछ ज्यादा हो रही है।
0: नहीं नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात। और इसके अलावा और कोई शौक भाई? 3-4 एकड़ जमीन होने पे और इतना बड़ा पशु पालन होने के बाद तो कोई और शौक मेरे ख्याल से रह नहीं गया होगा, या कोई और भी शौक बचा है इसके अलावा?
1: बड़ा शौक रेडियो सुनना, कॉल लगाना।
0: चलिए ये तो बहुत अच्छा है, तो आज आपने शौक को पूरा करने का आपको भी मौका मिला है। और आप फिर से एक बार बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: सर मैं आज ये गाना सुनूंगा, मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, सर ही टाइप के वो लगाने के, आज के समय आला सॉन्ग प्ले कर देना, आला सॉन्ग आपको डेडिकेट।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद, आपने इतना अच्छा गाना हमें डेडिकेट किया, तो चलते चलते चलते चलते ये गाना हम आपका चलते चलते ही प्ले करेंगे।
1: थैंक यू, नमस्कार सर।
0: नमस्कार ईश्वर जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे ईश्वर साहब, और कहते हैं कि साहब जानवरों को पालना और उनसे

पूरा करने का, तो आप कौन सा शौक करेंगे और क्या करेंगे ये ज़रूर हमें मैसेज करें और मैसेज करके बताएं 9837896896 पे। तब तक हम इशरत भाई का ये शौक पूरा करते हैं।

0: वेलकम बैक टू 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, तो अभी हमने बात करी थी आप लोगों से कि कौन सा एक पूरा दिन अगर आपको मिल जाए आपके शौक पूरा करने के, तो वो ऐसा कौन सा शौक होगा जो आप अपना पूरा करेंगे। तो हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं और एक मैसेज तो बहुत ही कमाल का आया, नेहा जी का आया है MDA मुरादाबाद से। वो ये कहती हैं, मैं अपना पूरा दिन बुक्स में लगा दूंगी पढ़ने में और कॉफ़ी के साथ बारिश भी एंजॉय करूंगी। तो नेहा जी, आप बारिश तो देखो आपके हाथ में नहीं है, मगर हाँ, ये जो आपने कॉम्बिनेशन दिया है ना बुक्स का और कॉफ़ी का, ये गजब का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास एक शायरी भी है, शायरी में लिखते हैं गुलनवाज जी, कहते हैं, खुशियाँ महंगी नहीं होती, कभी एक किताब, कभी एक कप कॉफ़ी और कभी किसी अपने की याद, बस इतना ही काफ़ी होता है। क्या बात है गुलनवाज जी, आपको पता था क्या नेहा जी का मैसेज आने वाला है और आप ऐसी शायरी में अपनी कॉफ़ी और किताब का भी जिक्र कर देंगे, बहुत बढ़िया। दीपक जी कहते हैं, मैं क्रिकेट खेलूँगा और दोस्तों के साथ पूरा दिन बिताऊँगा। क्या बात है साहब, दोस्ती भी, हॉबी भी और आपकी क्रिकेट भी, मतलब कहते हैं ना कॉम्बिनेशन ख़तरनाक हो गया, ये कॉम्बिनेशन कभी ना ओल्ड नहीं होता। अगर दोस्त मिल जाए और कोई सा भी एक उनके साथ स्पोर्ट्स जुड़ जाए तो शौक का शौक और दोस्ती की दोस्ती दोनों पूरी होती है। चलिए हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़े हैं, चलिए उनसे ही पता करते हैं क्या है उनका शौक। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बस दुआ साहब, आपका आशीर्वाद है।
0: क्या करते हैं, अपना नाम बताइए हमारे सभी श्रोताओं को और क्या काम करते हैं ये भी बताइए।
1: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और साकिब अल्लाह की इजाजत के पीछे नाले के पास में।
0: हाँ जी, तो जब भी बारिश होती है नाला भर जाता है फिर? संभल के चलिएगा, कभी कभी पता चलता नहीं है पानी में कहाँ गड्ढा है और कहाँ नाला है।
1: ये बात तो है, आप शहर सुनना चाह रहे हैं, आप जो कि आप बात ऐसी कर रहे
0: हैं। हाँ, शहर तो साहब अपना सुंदर है और सुंदर होके ही रहेगा। बताइए आपका क्या शौक है?
1: जिंदगी में किसी का साथी काफी है, हाथों में किसी का हाथ ही काफी है, दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, प्यार का तो बस एहसास ही काफी है।
0: क्या बात कही आपने, क्या बात कही, बहुत ही बढ़िया साहब।
1: हाँ साहब, तो गाना सुनवा दे आप खलनायक का।
0: खलनायक का कौन सा गाना साहब?
1: चोली के पीछे क्या है साहब?
0: जरूर जरूर जरूर साहब, आपका भी शौक है, आपकी कहानी और शायरी जो आपने हमें बताई है बहुत ही अच्छी शायरी है। और इसके अलावा और क्या शौक है आपका?
1: ये?
0: इसके अलावा और कोई शौक है साहब आपका?
1: शौक क्या साहब, बस हम लोग काम धाम करते हैं और शाम को आन करके बैठ जाते हैं यार, तो बातचीत हो जाती है कैसे क्या करना क्या नहीं जिंदगी में, अच्छा काम करना चाहिए और मदद करनी चाहिए गरीबों की और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात कही, ये बात जितनी सुनने में अच्छी लगती है उतने करने में तो और भी, कहते हैं ना, मन से और अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है कि इन चीज़ों को आप अगर अमल करते हैं, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा भी करते हैं और पानी पिलाने का जैसा आपने काम बताया कि जानवरों को भी कम से कम, क्योंकि जानवर जो हैं वो बता तो नहीं सकते मगर हाँ हम उन्हें थोड़ा सा समझ ही सकते हैं, पशु पक्षियों के लिए थोड़ा सा भी पानी भर के अगर अपनी छतों पर रखें तो ज़रूर ये होगा कि। नमस्कार जी, तो ये तो साहब हमारे साथ थे, इन्होंने अपनी फरमाइश बताई और अपनी फरमाइश का गाना भी बताया और कहा कि अपने यार दोस्तों के साथ जब भी समय मिलता है तो बात करते हैं और उनके साथ बातें करते हैं ज़िंदगी की, जो ज़िंदगी की इनकी जुड़ी हुई बातें हैं उससे रिलेटेड ये बातें चलती रहती हैं। तो चलिए इनका भी फरमाइश पूरी करते हैं और गाना सुनते हैं चोली के पीछे क्या है। ऐसे पता तो है सबको।

0: दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद आपका अपना रेडियो स्टेशन। आज एक बात ज़रूर याद रखिएगा, बिज़ी रहना ज़रूरी है लेकिन खुश रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अक्सर हमारी फेवरेट हॉबीज़ ही हमें दोबारा मुस्कुराना सिखा देती हैं। एक शायरी जो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा, दिल की आवाज़ को कभी चुप मत होने देना, दिल की आवाज़ को कभी चुप मत होने देना, अपने शौक को कभी खोने मत देना। यह वही चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जो जिंदगी को थकान को जो जिंदगी की थकान को मुस्कुराहट में बदल देती हैं। जी हाँ, कभी कभी आपके शौक जो होते हैं वो आपकी उस थकान को भी आपकी उस मुस्कुराहट में बदल देते हैं कि थक के हंस के कहते हैं अरे यार चलो अच्छा ही हुआ। हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, करते हैं उनसे बात। नमस्कार मुरादाबाद दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप? आपके पीछे जो एफएम चल रहा है ना उसकी आवाज थोड़ी हल्की कर लीजिए, गूंज गूंज के आ रही है। हाँ जी सर, अब बताइए आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं इस समय?
1: छत पे लेटे हुए,
0: गर्मी तो है साहब। और छत पे लेटने में हवा आ रही है नहीं आ रही है?
1: नहीं, हवा तो आ रही है।
0: बिल्कुल सही। और क्या कहते हैं मनोज जी, आपकी क्या हॉबीज हैं बताएं जरा एक बार सभी श्रोताओं को हमारे। खाना बनाना भी एक हॉबी में आता है साहब, क्या बना लेते हैं स्पेशल आप?
1: स्पेशल तो हम तो कुछ नहीं, बस तहरी बनाना जानते हैं, तहरी घर में बना लेते हैं, हमारे एक बच्चे साथ में जो बस नहीं बनाते
0: हैं। अच्छा अच्छा, और क्या
1: उल्टा खींचा आता है वो बना लेते हैं।
0: क्या बात है, तो आपने कुछ क्या कहते हैं आज तक ऐसा कुछ ऐसी कोई डिश बना के खिलाई है अपने बच्चों को भी और अपने घर पे भी कि हाँ सबने खूब तारीफ करी हो?
1: जी बनाइए।
0: कौन सी डिश बनाई है साहब, सभी को बताए ना?
1: जी बता देंगे, बनाए
0: तो ठीक है साहब, एक बार सभी को दावत दीजिएगा और एक बार आएंगे आपके हाथ का वो खाना भी खाएंगे।
1: जी बनाएंगे, अभी तो मुरादाबाद में ही, मुरादाबाद में बना के खिलाएंगे आपके।
0: चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे इस समय? क्यों नहीं क्यों नहीं, बहुत बढ़िया गाना आपने चुना है और पूरी उम्मीद है कि इस गाने को सुनने के बाद थोड़ा सा चैन मिले इतनी गर्मी में आपको। चलिए धन्यवाद मनोज जी। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे मनोज जी जो गर्मी के चक्कर में छत पे जाके बैठ गए, और लोग तो वैसे आजकल गर्मी अगर बिजली कट जाए तो बिल्कुल सही जगह जाके रात में खड़े हो जाते हैं, वहाँ से तो बिजली आनी आनी है, नहीं आनी है तो भाई साहब सबको सुनानी है। तो ये बात तो कहते हैं ना कि गर्मी क्या क्या नहीं करवा देती। सुनते हैं ये गाना और हाँ अब हो गया हमारा विदा लेने का वक्त, तो मगर आप मैसेज भेजते रहिए और हमें अपने शौक ज़रूर बताते रहिए। मैं हूँ आपका अखिल और मिलूँगा आपसे फिर कल इसी वक्त। तब तक रहें आप खुश, एकदम मुस्कुराते रहें और अपनी दिल की बात भी हमें सुनाते रहें। तो हम कल फिर मिलेंगे आपको ठीक 9 बजे, तब हम दोनों का टॉपिक और नए हंसी मजाक के साथ चलते हैं। तब तक सर की भी फरमाइश मनोज जी को थोड़ी सी ठंडक तो पहुंचा ही देते हैं।

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हैदराबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।